सुप्रभात, हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर भी आप हमें सुन सकते हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि है, तदनुसार 3 अगस्त 2026। सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9

0: कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।

निर्मल यानी पाक, साफ, स्वच्छ। बच्चे भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, तभी तो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। बच्चों का यही सच्चापन, कोरापन मन की निर्मलता कहलाती है। छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबसे रहित मन निर्मल होता है, बिल्कुल ईश्वर तुल्य। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, संसार की आपाधापी में संघर्ष शुरू होने लगता है, हमारे अंदर कामनाएं जागने लगती हैं, हम उनकी पूर्ति हेतु शीघ्रता शीघ्र प्रयास करते हैं, चाहे उचित हो या अनुचित। यहीं से विकार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और ये विकार मानव समाज के भाईचारे को कई प्रकार से तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गंदगी हमें पसंद नहीं। हम घर को भी प्रातः साफ करते हैं तथा स्नान आदि कर स्वयं को भी, क्योंकि सफाई अंततोगत्वा सुंदरता में प्रकट होती है। इसी तरह जब मन की निर्मलता हमारे संस्कार में आती है, तब मानवीय रिश्तों के व्यवहार संस्कार में सौंदर्य को प्रकट करती है। अतः मन की निर्मलता हेतु हमें हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। कोई दुर्गुण मन में प्रवेश करे, इससे पूर्व ही हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम अपने मन को एक बालक की तरह निर्मल बना सकते हैं। हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए जो हमारी कमियों को बता हमें सचेत करता रहे। तभी तो कहा जाता है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। प्रशंसा की भूख प्राय सभी में होती है, प्रशंसा कब चापलूसी में बदल जाए पता नहीं चलता। इस प्रकार की व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द होंगे तो हमारे मन की निर्मलता कब कलुषता में बदल जाए पता नहीं चलेगा। अपने आलोचकों को प्यार से संग रखना आवश्यक है। निर्मल हृदय वाले अपने आसपास के दीन दुखी जनों को सहयोगी बनाकर चलते हैं। संसार में सच्चे मन, निर्मल हृदय के व्यक्ति ही संस्कार संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी भागीदार होते हैं। हमारे हृदय को निर्मल रखने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या 139। गायक कलाकार है ए हरिहरन, उत्तरा केलकर और मिताली सिंह। संगीतकार है सतीश भाटिया।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान, कड़ी संख्या 139। गायक कलाकार थे उत्तरा केलकर, ए हरिहरन और मिताली सिंह। संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
0: कार्यक्रम रूपरेखा में आप सुनेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनके प्रसारण का समय।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कर सारी बात। आज का विषय है समस्यात्मक खरपतवारों का समन्वित प्रबंधन। सुबह 7 बजे का समय रहेगा राजस्थली का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे वार्ता राजस्थानी साहित्य माए नीति और लोक व्यवहार। वार्ताकार हैं प्रेमलता सोनी।

सुबह 9:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो जयपुर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन। आज हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुनील शर्मा, जो हमें इंसोम्निया कारण लक्षण एवं उपचार के बारे में जानकारी देंगे। साथियों, इस विषय पर आप भी अपने सवालों के साथ हमसे जुड़ पाएंगे।

सुबह 11 बजे से हेलो जयपुर कार्यक्रम के अंतर्गत ही श्रोताओं आपके लिए सजेगी फिल्म संगीत की महफिल, जिसमें आप हमसे अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ जुड़ पाएंगे।

0: ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम पणिहारी सुन सकेंगी दिन में 1:30 से। दिन में 3 राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। आज के कलाकार हैं राज प्रभा पंगड़िया। शाम के 5 युवा श्रोता सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 7 से आप सुनेंगे ग्राम भारती। इसमें आज आप सुन सकेंगे पशु प्रजनन संबंधी समस्याएं और उनका निराकरण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव। साथ ही मौसम और बाजार भाव की जानकारी भी दी जाएगी। संध्या के 7:30 का समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम खेती बाड़ी का। इसमें भी आज एक बातचीत सुनवाई जाएगी पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता। साथ ही लोक संगीत का आनंद भी आप उठा पाएंगे। रात्रि 8:30 का समय रहेगा स्पोर्ट्स कैन का, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित अनुप्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब कुछ ही देर में सुनिए कर सारी बात। आज का विषय है समस्यात्मक खरपतवारों का समन्वित प्रबंधन।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
4: करसा भाई बहना राम राम। कसार भाई बहना, आज आपा बात कराना समस्यात्मक खरपतवारों को समन्वित प्रबंधन। सबों पहली बात कर लिया मोथा की, तो ओ घास जिया दिगबाड़ो एक तीखी लंबी चिकनी चमकदार गहरी हरी धारीदार पत्तियां वालों बहुवर्षीय खरपतवार है, जो 50-60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़े। पौधा को निचलो भाग मोटो और फूलियो हुआ हुए। ई खरपतवार को फैलाव गांठा और बीज सूंघवे। फूटबा वाली गांठा 10-20 सेंटीमीटर गहराई पे हुए। गांठा द्वारा ही इको फैलाव ज़्यादा वे। पौध फूटबा के 3-8 सप्ताह बाद इमें फूल आ जावे और आ दुनिया की सबों ज़्यादा समस्यात्मक खरपतवार इन्हें मान्यो गयो है। सब्जियां और सिंचित क्षेत्र में इकी समस्या ज़्यादा दिखाई देवे। अब मोथा की रोकथाम के लिए गर्मियां में मिट्टी पलटबा वाला हल सू गहरी जुताई करबो, जिसू मोथा की जड़ और गांठ भूमि का ऊपरी सतह पर आ जावे, जो सूरज की किरणा सू सूकर 7-14 में नष्ट हो जावे। मिट्टी का बड़ा ढेला कल्टीवेटर चलार इन्हें तोड़ियो जावे, जिसू मोथा की गांठ अच्छी तरह सूकर नष्ट हो जावे। गहरी जुताई के बाद 3-4 अमाइन का 0.5 kg प्रति हेक्टर को छिड़काव भी उपयोगी है। प्रति हेक्टर ग्लाइफोसेट 1.5 kg, पेराक्वेट 0.1% या एलाक्लोर 1 kg प्लस एट्रोजिन 0.5 kg मिश्रण को भी छिड़काव कर सका। कांस एक खरपतवार है जो बड़ी समस्या करे आ लंबी सीधी उगवा वाली घास है। इको तनो सीधो ठोस चिकनो और चमकदार हुए। जड़ा 1-2 गहराई तक फैले और ये बीज और प्रकंद के माध्यम से फैले। सितंबर अक्टूबर महीना में एक फूल आवे। बीजा में 90% तक अंकुरण क्षमता हुए। अनुकूल अवस्था में भूमिगत प्रकंदा सु नया पौध विकसित हुए। कांस वाली भूमि नहर और तालाबा के किनारे दलहनी क्षेत्र में ज्यादा पनपे। इके रोकथाम के लिए गर्मिया का मौसम में मिट्टी पलटवा वाला हल सू गहरी जुताई करनू, जिससे कि जड़ा और प्रकंद भूमि की सतह के ऊपर आ जावे और सूरज की तेज किरणा में सूकर नष्ट हो जावे। जट प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है, बटे कांस ग्रसित क्षेत्र ने जलमग्न बनार ईसू नियंत्रण करियो जा सके। खेत की मेड़ा व कृषि क्षेत्र में 0.4-1% डायूरोन घोल रो छिड़काव फूल आबा की अवस्था पर सितंबर अक्टूबर सु पहली करना चाहिए। खेत में जब खरपतवार फूल आबा की अवस्था में हो, ग्लाइफोसेट का 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर सु छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय खेत में कोई फसल ना हो। ये खरपतवार है जो समस्या पैदा करे जवासा, या एक कंटीली पौधा है जो सामान्यतः पेटा कास्त में रबी के मौसम में फैले। सर्दियों में इसकी वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा हुए, जबकि गर्मियों में इसको फूल और बीज आवे। इसकी उपस्थिति सु रबी की फसल की कटाई में काफी दिक्कत पैदा हुए। रबी फसल की कटाई के उपरांत जब खरपतवार आपकी बढ़वार की चरम सीमा पर हुए भी समय ग्लाइफोसेट 0.3% को छिड़काव कर इको नियंत्रण करियो जा सके। खरपतवार की पुनरावृत्ति रोकबा के लिए छिड़काव करना चाहिए, जिसू बचा हुआ जवासा का पौधा पूरी तरह से नष्ट हो जावे। गाजर घास भी एक समस्यात्मक खरपतवार है। आ खरपतवार कृषि क्षेत्र में रेल पटरिया के किनारे, नदी नाला के किनारे, बेकार और पड़त भूमि जैसा स्थान पर उगे। आजकल इको फैलाव कृषि भूमि खेता में देखियो जा रही है। भारत में करीब 50 लाख हेक्टर खेत इसु प्रभावित है। इमें साल भरी फूल आवे और प्रति पौधा करीब 7000 बीज उत्पादित करे, जो भूमि पर गिर हर वर्षा काल में ज्यादा पौधा तैयार हो जावे या नम और छायादार ठंडा स्थान पर ज्यादा पनपे। इके कारण रबी और खरीफ फसला की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इका स्पर्श के कारण मानव में अस्थमा, त्वचा रोग, जलन जैसी चीजा सामी आई है और इके कारण परागनासारती रोग भी उत्पन्न हो जावे। इके रोकथाम के लिए फूल आवासु पेली ई खरपतवार ने हतासु दस्ताना या प्लास्टिक की थैली पेनर निरंतर जड़ सहित उखाड़ तो रहना चाहिए। फूल आवासु पेली साधारण नमक का 20% गोल को छिड़काव उपयोगी है। कृषि क्षेत्र में फूल आवासु पेली 2 से 5 किलो 2-4 डी हेक्टर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पेराक्वेट 0.1%, ग्लाइफोसेट 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के छिड़काव से नियंत्रण करियो जा सके। कृषि क्षेत्र में बुआई से पहले फसल के अनुसार एट्राजिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर के उपयोग से संबंधित फसल में इको नियंत्रण करियो जा सके। जका क्षेत्र में केसिया यूनिफ्लोरा या केसिया सेरेसिया का पौधा वे बटे गाजर घास कम दिखाई देवे, अतः समस्याग्रस्त क्षेत्र में केसिया जाति का बीजा को डालबा सु आ खरपतवार कम पनपे है। परजीवी खरपतवार नियंत्रण की बात करा तो अमरबेल की बात कर लिया। मुख्य रूप से रिजका में इकी गंभीर समस्या देखी जावे, परंतु अलसी, चुकंदर, मिर्ची, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, नाइजर, मेहंदी और कई वृक्षा पर इकी विभिन्न जातियों को प्रकोप देखियो गयो है। अमरबेल को फैलाव बीज और काई की प्रवर्धन द्वारा हुए। अमरबेल का एक पौधा पर करीब 1000 बीज हुए, जो 5 साल तक अंकुरणक्षम बनिया रहे। परपोषी मिल जावा सु 35 दिन में परिपक्व हो जावे और 5 से 10 दिन में स्वतः ही समाप्त हो जावे। इका रोकथाम के लिए फसला का बीज जो अमर बेल बीज रहित हो उपयोग में लिया जाना चाहिए। नमक का 10% घोल में बीजोपचार सु अमर बेल का बीज तेरबा लाग जावे। रिजका का बीजा ने साफ पानी में धोर काम में लेना चाहिए। अमरबेल युक्त चारों पशुओं ने नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अमरबेल पच्चे को नहीं और पशुओं में गोबर के साथ बाहर निकल जावे। यदि आ गोबर रिचका के खेत में पहुंच जावे तो अमरबेल को फैलाव ज्यादा हो जावे। समस्या गंभीर होवा पर रिचका के स्थान पर दूसरी फसल जिया गेहूं, चना, सरसों, जई बोई देनी चाहिए। अमरबेल को प्रकोप बसंत के आगमन के समय शुरू हुए और कमी भी एक साथ कौन फैले, अतः रिचका का खेत ने लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरुआत में 2-3 स्थान पर कालांतर में पूरा खेत के मायने फैल जावे। प्रारंभ में ही अमरबेल रिचका सहित काट जड़ार नष्ट कर देनी चाहिए। कटावा स्थान पर पेराक्वेट 0.1% को छिड़काव करना चाहिए, जिसु अमरबेल और संपर्क में आबा वाला रिच को नष्ट हो जावे। सिंचाई के साथ रिच को दोबारा फूट जावे। आग्या रुखड़ी स्ट्राइगा आ अर्ध परजीवी एक वर्षीय खरपतवार है, जो सामान्यतः मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना और घास कुल की अन्य फसला की जड़ा पर आक्रमण कर फसल ने कमजोर कर देवे। ई अर्ध परजीवी खरपतवार के अंकुरण और वर्धन के लिए साधारण मृदा आर्द्रता और तापमान 30-35 डिग्री तक उपयुक्त वे। इकी रोकथाम के लिए फसल चक्र में परिवर्तन करना चाहिए, कम अंतराल पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। स्ट्राइगोल के समान यौगिक रसायन GR7 GR45 को प्रति हेक्टर 0.1-0.8 किलोग्राम उपयोग सुरूखड़ी के बीज तो अंकुरित हुए पर मेजबान के अभाव में स्वतः नष्ट हो जावे। इसु आत्मगति मृत्यु भी केवे। पेंडी मिथाइलिन
0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कर्स

0: अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.1 मेगा हर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के DTH चैनल पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम राजस्थली, जिसमें आज आप सुनेंगे राजस्थानी साहित्य माये नीति और लोक व्यवहार। वार्ताकार हैं प्रेमलता सोनी।

0: राजस्थली कार्यक्रम सुन वाला सभी श्रोताओं को बहुत बहुत स्वागत है सा। आज रही कार्यक्रम में आप तानी ले आया है एक वार्ता, राजस्थानी साहित्य माय नीति और लोक व्यवहार। वार्ताकार है प्रेमलता सोनी।
1: राजस्थानी भाषा रा लेखनिया, कवि, साहित्यकार, संत लोग, साहित्री सगली भी दावा माय अपनी कलम चलाई। अठेरा लोग भाषा में कहता, डेलिया, दुहा और सोठा बोलर और लिखर अपनी बाता ने घनी मन मोवनी बनाव देता। पौराणिक काल सु आज तई राजस्थानी माए नीति परख लोक व्यवहार थापित करण खातर दोहा और सोठारो चलन चाल तो आयो है। राजा रजवाड़ा माए दरबारी कवि पैनी नजरा लोक व्यवहार पर राखता और समय समय पर साहित्यरी ई कलासु राजा महाराजाओं ने गेलो बतावता रहता। राजस्थानी ग्रंथा और इतिहास माए ऐसा कई नाव है जिका हमेशा अमर रेव सी और आपा ने सीख देता रहसी। महान स्वतंत्रता सेनानी केसर सिंह बारठ, सूर्यमल मिशन, कृपाराम खीडिया, कन्हैयालाल सेठिया और भी ऐसा कितरा ही नाव है जिका दोहा सु समाज ने सांत्रो बनावन रो भरसक प्रयास करिया। आ साची बात है, दोहा माए घणो बल जिको समाज रे दुराचरण पर घणो तीखो कटाक्ष कर अंतर आत्मा ने झकझोर राख देवे। केसरी सिंह बारठ रा चेतावनी रा चुंगटिया रा सोरठ माए ईसा कितरा ही दोहा है जिका सूरवीरो सु प्रेरित होर लिखा गया। पग पग भमिया पहाड़, धरा छांड राखियो धर्म, ईसु महाराणा मेवाड़, हृदय बासिया हिंद रे। वे कहना चाहता कि कईया घनी मुसीबता झेलर भी धर्म और भूमि री रक्षा लारे आप रो सगड़ो जीवन दाव पर लगा दिया। जद ही तो आज तानी मेवाड़ रा महाराणा लोगारे हिवड़े में वास करे। एक जगह बारट जी महाराणा सिसोदिया ने चेतावनी देता लिखिया, मान मोद सिसोद राजनित बल राखनो, फल मीठा दीडा फता। इतरो गहरो ज्ञान एक दो हासो समझावनो सगलारे बसरी बात कठे है। राजियारा सोरठ माए लोक व्यवहारी घनी बाता कृपाराम खीड़िया यू चुटकी बजावता रच दिया जिका आज तानी नीति परक व्यवहारी अलख जगा राखी है। सांतरे स्वभाव वाला कृपाराम खीड़िया ने सिकला दोहा में आपरे सेवक रो नाम रजिया घालर बिने अमर कर दिया और बीरी एक इच्छा खातिर बीरा नाम हर दोहा में डाल दिया। बे केवता साचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हर अर्जन रे हेत, रत कर हाक्यो राजियो। एक साचो भाईलो ही इसो हुए जो आपरे भाईले खातिर कोई भी कारज कर सके, जिया कृष्ण अर्जुन रे हेत में रथ भी हाँक दिया। घना चोखा दोहा रच दिया खिड़िया जी जिका लोक व्यवहार माए थापित करना आज रे समाज री खासी जरूरत है। तजमन सारी घात, इकतारी राखे इधक, बा मिनखारी बात, राम निभावे राजिया। ई दोहा सु घणी चोखी बात कह गया कि सगली

अनरारी घाता चालाकिया पसवाड़े नाग दो सगड़ा जीवासू इकसार व्यवहार राखो तो थारी बात ईश्वर भी कोनी टाल सके। आज रा समाज में ई व्यवहारी घणी जरूरत। एक जगह और घणी चोखी बात लिखी, नैनहा मिनख नजीक उमरावा आदर नहीं, ठाकर जिनने ठीक रन में पड़सी राजिया। सुयोग्य और सक्षम रा अनादन करे पाछे तो ठाकर ने भी युद्ध में हारनू ही पड़े। औरू अकल उपाय कर आछी भूंडी ना कर, जग से चालियो जाए रेड़ा की जू राजिया। कितनी चोखी बात बोल दी दोहा माए। गेलो दिखा दियो कभी कि बुद्धि लगार सत्कर्म करो, बुरो मती करो। यो सगड़ो जगत पानी रो रेड़ो है एक, जिको बेव तो रहसी। ई क्षण भंगुर जीवन री सार्थकता सत्कर्मों सु ही होनी है। घना चोखा संदेश देवता हुआ ए दोहा, सागर ने जाने गागर में समा लिया हो। ईसा दोहा रचना वाला ए साहित्यकार जीवन रो पाठ गहराई सु पढ़िया उसी, जद ही तो दोहा में आपरी ज्ञान री बाता लिख गया। दो पंक्तियां माए गेलो दिखावण वाला ए साहित्यकार समाज सारू सांतरो काम कर गया और संदेश दे गया कि पढ़ो मन भर तो लिखो कण भर। सूर्यमल मिशन एक जगह कायरता रो त्याग करने रो संदेश देवता लिखिया, खोया में घर में अवट कायर जम्बुक काम, सिंह केहा देसड़ा जेहरा रहे सुधाम। सिंगों का कौन सा घर, कौन सा देश, कौन सा प्रदेश, जठे रहवे वो ही घर बन जावे, पर जम्बुक घर माए बड़ियोरो कायरता रो ही परिचय देवे। जिया सिंह कठे भी दहाड़ आपरे बड़रो परिचय दे देवे, भी तरह ही साहित्यकार कड़वी पण साची बाता लिखर सोचण पर मजबूर कर देवे और कुरूतियों ने पछाड़ देवे। एक जगह कवि भैरव लिखिया, भैरव डर किन बात रो, जो आपने मन साच आपे प्रकट होवसी ओ कंचन ओ कांच। साच ने काई पर्दा ढाप सके

0: अच्छा पहिरे सोई, अति आछो रहनो रहे, मरे ना बूढ़ो होई। आछो खाणो, आछो पहनो और आछो विचार धारज करवासु बुढ़ापो कोनी आवे। तो ये दोहा जीवन में समझावण वाला है और ये लेखक समय समय पर आपरे दोहा सु आपोने मार्ग बताता गया। पड़ी समाज माए मति भ्रष्ट लोगारी कठे कमी, एक ढूंढो 10 मिल जावे। मति भ्रष्ट लोगा बासते ही जाने कवि ओ दोहो लिख दियो। मिश्री तो अप्रमाण, सीचे घोले घी सहित, विससो नींब बसाण, मीठो हुए न मूतियो। कितरे ही मिश्री घी माए घोलर कड़वे नीम ने सींच लेवे, पण वो आपरो स्वभाव कद बदले, कड़वे रो कड़वो ही रहवे। नीति परक ए दोहा आपाने कर्तव्य अधिकार और व्यवहार सिखा देवे। राजस्थानी साहित्य रा ओ गहरो समुन्दर है जिके माए मोती स्वरूप ए दोहा समाय ओड़ा है। ए दोहा अमल कर जीवन माए समाज रे बिगड़ता स्वरूप ने सुधार सके। राजस्थानी भाषा रा लाडा कवि शक्तिदानजी भी कहवे कि राजस्थानी लोक संस्कृति में नीति ही जीवन है और अनीति मरण। और सगलो जगत नीति री धुरी माए ही घूमे, तो ए नीति परक दोहा जीवन में थामे राखो ताकि एक सांत्रो समाज आवण वाली पीढ़ी ने सौंप सका।
1: राजस्थानी साहित्य में नीति और लोक व्यवहार। अभी आप सुन रहे वार्ता, वार्ताकार है प्रेमलता सोनी। अब आपने सुनावा एक मीठो सो लोकगीत।

फिल्म संगीत में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की इस प्यारी सी सुबह में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ताजगी से भरा हीरो फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसको संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज दी है लता मंगेशकर ने। पहुंच रहा है आपकी रेडियो सेट तक।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये खूबसूरत गीत सुना। आइए सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में। टशन फिल्म से हमने ये गीत लिया है। इसके बोल लिखे हैं पीयूष मिश्रा ने और संगीत बद्ध से किया है विशाल शेखर ने।

दोस्तों, किसी के साथ में हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो एक अच्छा सा एहसास हमारे साथ होता है। और आप भी अगर सफ़र कर रहे हैं तो रहिए हमारे साथ और सुनिए हमारे गाने और इनसे कीजिए इश्क वाला लव। जी हाँ, हमने ये ही गाना अब आपके लिए चुना है। फिल्म का नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसे गाया है शेखर और सलीम मर्चेंट ने और इनका साथ दिया है नीति मोहन ने। बोल लिखे हैं अन्विता दत्त ने और विशाल शेखर ने धुन बनाई है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हमने लिया है तारा रमपम फिल्म से। आवाज दी है शान और सुनिधि चौहान ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत बद्ध इसे किया है विशाल और शेखर ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दोस्तों, अगला गीत हमने लिया है जुबेदा फिल्म से। इसको गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने, इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और सुरों से सजाया है ए आर रहमान ने।

और हमारे चैनल से आप सुन रहे हैं इस समय फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की अगले पायदान पर हम आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत नगमा, जिसे हमने लिया है रब ने बना दी जोड़ी से। गायक कलाकार है रूप कुमार राठौड़, संगीतबद्ध किया है सलीम सुलेमान ने और गीत रचना लिखी है जयदीप साहनी ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हमने लिया है नायक फिल्म से। इसको अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और कविता सुब्रमण्यम ने, और इन्हें गीत रचना की है आनंद बख्शी ने। सुरों से सजाया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, आप सुनते हैं फिल्म संगीत की आज की आखिरी पेशकश। ये गीत हमने लिया है मैंने प्यार किया फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर ने और इसकी शब्द रचना की है असद भोपाली ने। सुरों से सजाया है राम लखन ने।

0: फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। आइए अब समाचारों के लिए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई।

0: लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और एक्सेट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गोदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साला एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मोइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है। उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए। और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समाचार तरंग।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग। श्रोताओं, आज के इस अंक में मैं माधुरी वशिष्ठ
5: और मैं रितिका गुप्ता
4: आपका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है सप्ताह भर की सुर्खियां।
5: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी का गोल्डन दाव, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
4: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
5: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में शिरकत की।
4: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया।
5: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का डीग, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद दौरा।
4: बाघों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम।
5: और जयपुर नगर निगम की अनूठी पहल, सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी।
4: कोटा की मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की चेंटल रीड को 5-0 से हराया। अरुंधति की इस जीत को न सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि पूरे प्रदेश ने खुशी और उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया है। अरुंधति प्रदेश से ऐसी पहली मुक्केबाज बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कोटा से हमारे संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि अरुंधति के जीतने के बाद शहर में जश्न का सा माहौल हो गया।
6: शहर की बेटी अरुंधति चौधरी की जीत पर शिक्षा नगरी कोटा में जश्न का माहौल है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीतकर अरुंधति ने पूरे देश के साथ साथ अपने शहर कोटा का भी सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गलियों से लेकर चौराहों तक इस समय बस एक ही नाम गूंज रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच कोटावासी अपनी इस स्वर्णिम पंच वाली गोल्डन गर्ल की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं।
5: जयपुर में कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। न्याय तक आसान और जल्द पहुंच सुनिश्चित करने में मध्यस्थता की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थता, संवाद, सहमति और विश्वास पर आधारित विवाद समाधान की प्रभावी व्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मध्यस्थता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। उन्होंने कहा कि संवाद और मध्यस्थता से वर्षों पुराने विवादों का स्थायी समाधान संभव होता है।
7: संवाद और मध्यस्थता की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हार जीत से आगे बढ़कर समाधान की बात करती है। यह केवल एक कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हमारे समाज की वह सांस्कृतिक शक्ति है जो सदियों से हमें आपस में जोड़े हुए है। आज हमारी अदालतों पर मुकदमों का भारी बोझ, न्याय में देरी से आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। ऐसे समय में मध्यस्थता एक वैकल्पिक मार्ग नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी मांग बन चुकी है।
4: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एम्स जोधपुर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उपाधियां तथा मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, शिक्षा, शोध और नवाचार से स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने युवा डॉक्टरों से सेवा, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना के साथ समाज सेवा करने का आह्वान किया।
8: एम्स जोधपुर आज हमारे देश के टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में से एक है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। यहाँ 5वें दीक्षांत समारोह में 900 बच्चों को, जो जिसमें हमारे MBBS के डॉक्टर्स हैं, PG डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं, सभी को उनके डिग्रीज और मेडल्स दिए गए हैं।
5: राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है।
9: इसी विषय में राजस्थान ने ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस, यानी कि जो राजस्थान की जनता है उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि अगर ईश्वर कभी ना करे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके मस्तिष्क की मृत्यु हो जाती है, तो उनके ऑर्गन दूसरों को लगाए जा सकें, ऐसा उन्होंने प्लेज किया है। राजस्थान ने 1,17,976 जो है प्लेजेस करके पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसमें झुंझुनू, उसके बाद हनुमानगढ़ और चूरू, ये सर्वोपरि प्लेज कराने में रहे हैं।
4: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीते सप्ताह विभिन्न जिलों के दौरे पर रहे, इनमें डीग, धौलपुर, भरतपुर, उदयपुर और राजसमंद शामिल हैं। उन्होंने प्रदेश को कई विकास कार्यों की सौगात दी। भरतपुर जिले के खेडली गुर्जर गांव से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्यमंत्री ने मिशन पढ़ो अभियान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे।
7: बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: उन्होंने धौलपुर के फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उदयपुर से राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।
5: राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इसके लिए सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। चुनाव की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
10: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो।
4: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर कराए जाएंगे। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
11: देखिए, नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के आधार पर राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जितनी तैयारियां की जानी थी वो हम सब तैयारियां मार्च 2026 में पूरी करते। अब राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग है, दो को अपनी तैयारी करनी है। राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जब भी सरकार से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी और वो अगर अनुरोध करेंगे तो हम तत्काल उन्हें जो सहायता जो हमसे अपेक्षा रखते हैं वो हम तुरंत उपलब्ध करेंगे।
5: प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए किए गए विशेष प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों की दहाड़ गूंज रही है, वहीं करौली का कैला देवी अभयारण्य रणथंभौर से छोड़े गए बाघों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गया है। रणथंभौर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को लेकर देश भर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पेश है सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट।
12: वर्ष 1973 में बाघ परियोजना घोषित होने के बाद से रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने और विश्व स्तर तक प्रसिद्धि के पीछे वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के कठिन परिश्रम मेहनत के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों की सहभागिता भी प्रमुख है। वर्तमान में यहां 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 78 बाघ, बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले देशी विदेशी सैलानियों, फोटोग्राफर, मूवी मेकर तथा रिसर्चर की पहली पसंद बन चुका है। वर्ष 2008 से राज्य के सरिस्क का मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी तथा करौली धौलपुर वनों में भी बाघों को विस्थापित कर रणथंभौर के अलावा पूरे राज्य के अन्य क्षेत्रों में बाघ संरक्षण सहित पर्यटन तथा रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावण संरक्षण केंद्र में पहली बार 3 गोडावण चूजों को नवनिर्मित रिवाइल्डिंग टनल में छोड़ा गया है। वन विभाग ने इसे गोडावन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के ACF अशोक सिंह ने बताया कि रिवाइल्डिंग टनल का उद्देश्य चूजों को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाना है ताकि उन्हें भविष्य में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा जा सके और उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ सके।
13: जो ब्रीडिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हुए हैं उनको फील्ड में रिलीज करने के लिए पहले रिवाइल्डिंग स्ट्रक्चर में ट्रांसलोड किया जाता है और ट्रांसलोड करने के बाद में लगभग उनको 4 महीने उसमें रखा जाएगा। उनको फील्ड में सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिलने के बाद में फिर

0: फील्ड में रिलीज करने का प्लान है। जीआईबी के रामदेरा में जो बेडिंग सेंटर है उसके पास में ही रिवर्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है, जिसका पैमाना 160x64x14 मीटर है।
1: जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
2: तो बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ पे लोग जा सकेंगे, जहाँ पे एक वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर के लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
1: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी से।
3: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित 5 प्रमुख शिवालयों से की जा रही है।
1: पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की नेहा सोलंकी ने सेरेब्रल पॉल्सी और अन्य न्यूरो मोटर समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए खास कुर्सी विकसित की है, जिसे उन्होंने बिग चेयर नाम दिया है। इस कुर्सी के लिए उन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ग्रास रूट्स इनोवेटर रिकॉग्निशन 2026 से सम्मानित किया गया। नेहा ने बताया कि ये बिग चेयर बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है, जिससे वे पढ़ाई, थेरेपी और दैनिक गतिविधियां बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
4: हमने एक कुर्सी बनाई है जिसका नाम बड़ी चेयर है। ये कुर्सी स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए काम आती है, जो बैठ नहीं सकते, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी और दूसरे न्यूरो मसल डिसऑर्डर्स के बच्चों के लिए काम आएगी। ये 4 साल से लेके 13 साल तक के बच्चों के लिए काम आने वाली कुर्सी है। इसमें बच्चा स्कूल जा सकता है, थेरेपी सेंटर में स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी कर सकता है, और सबसे ज्यादा ये कुर्सी बच्चों को घर में काम आ सकती है जहाँ वो सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। उनके माँ बाप उनको कुर्सी पे छोड़ के अपने दूसरे घर के काम कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से सोमवार को मुलाकात होगी। अब हमें इजाजत दीजिए। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रामनाथ मीना।

0: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल है। अब हमारे केंद्र से सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13

0: स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लोकसभा में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 और केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित कराने के लिए सदन में प्रस्तुत करेंगे। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मेडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हो गई। सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों विधि विशेषज्ञों और मध्यस्थता से जुड़े प्रतिनिधियों ने शांति मध्यस्थता और विधि के शासन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। समापन सत्र में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि मध्यस्थता केवल विवाद समाधान का माध्यम नहीं बल्कि जीवन जीने का दृष्टिकोण है जो विश्वास और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करता है। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने न्याययान द डिजिटल वे ऑफ जस्टिस सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। सम्मेलन में जयपुर घोषणा पत्र के माध्यम से न्याय तक आसान पहुंच संवाद और मध्यस्थता को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई। अगले वर्ष इस सम्मेलन का आयोजन बहामास में होगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के बाद जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं में नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्र निर्माण से जोड़ने की दिशा में ये अभियान महत्वपूर्ण साबित होगा। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जागरूक करना और स्वस्थ तथा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: देशों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवसाद और अवसाद के साथ में नशा। किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है युवा शक्ति को सहेजने संवारने और मोटिवेटेड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता। देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहें इस दृष्टिकोण से पिछले एक साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, वो नशे से मुक्त हों दूर रहें इस दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर अभियान साबित होगा।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कल उदयपुर में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए हर 2 महीने में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद की बैठक आयोजित की जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले के प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को जैविक पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसान ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। उन्हें कोटा स्थित जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है जहां वे प्रदेश के किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 कल रात संपन्न हुए। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीतने में महिला खिलाड़ी पुरुषों से आगे रहीं। 13 स्वर्ण पदकों में से 8 महिला खिलाड़ियों के खाते में गए, जबकि 5 स्वर्ण पदक पुरुष खिलाड़ियों ने हासिल किए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय मुक्केबाजों ने सबसे अधिक 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। इस बार राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पैरा स्पर्धाओं में भी भारत ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए। समापन समारोह में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद को सौंपी गई। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज सावन के पहले सोमवार पर बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। जयपुर के साथ भीलवाड़ा और जैसलमेर में भी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र के अनुसार आज दक्षिणी जिलों में बारिश की गतिविधियां कुछ कम होंगी, जबकि जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने के आसार हैं। इधर सावन के पहले सोमवार पर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। जगह जगह बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवड़ियों के दल विभिन्न पवित्र सरोवरों से जल लाकर शिव जी का विशेष अभिषेक कर रहे हैं। कई प्रमुख मंदिरों में विशेष श्रृंगार और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। अजमेर में भी शिवालयों में वातावरण शिवमय बना हुआ है। ब्यौरा दे रही है हमारी संवाददाता।
2: तीर्थराज पुष्कर सहित जिले के शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। झरनेश्वर, शांतिश्वर, पुष्कर, चित्रकूट धाम सहित विभिन्न शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, दूधाभिषेक कर श्रद्धालुगणों द्वारा धर्म लाभ उठाया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर पुष्कर क्षेत्र में कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोषों के साथ शिव भजनों पर नाचते गाते कांवड़ियों द्वारा पवित्र जल पुष्कर सरोवर से ले जाकर विभिन्न शिव मंदिरों में शिवाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भक्तों और कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलमदा हदीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: इस बीच पाली के डाक विभाग ने सावन के अवसर पर डाकघरों में न्यूनतम शुल्क पर गंगा जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि श्रद्धालु डाकघर से पूजा अर्चना के लिए आसानी से गंगा जल प्राप्त कर सकते हैं।
3: डाकघर के माध्यम से जो है गंगा जल बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस सावन में जो है शिव जी की विशेष आराधना गंगा जल के माध्यम से करें और गंगा जल जो है पवित्र गंगा जल डाकघर में बिक्री के लिए सभी जगह उपलब्ध है, इसका अधिक से अधिक उपयोग करें सावन में।
0: राजस्थान पुलिस की ओर से आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जागरूकता रैलियां और जनसंपर्क कार्यक्रम रखे गए। अभियान के माध्यम से महिला सुरक्षा और सम्मान का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। जिला पुलिस अधीक्षकों ने महिला पुलिसकर्मियों, महिला बीट अधिकारियों और कालिका पेट्रोलिंग टीम के साथ संवाद कर उनके सुझाव भी लिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होंगे, इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा संशोधन विधेयक भी शामिल। कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2026 जयपुर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 संपन्न, भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 39 पदक जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। दूरदर्शन के DTH चैनल पर भी आप हमें सुन सकते हैं। जयपुर अजमेर के अलावा हमारे कार्यक्रम आप आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप NewsOnAIR और हमारी वेबसाइट NewsOnAIR.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

0: गीत संगीत कथा साहित्य नाटक झलकी ज्ञान विज्ञान खेल स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1-800-1234 या 1-800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाए समाधान।
4: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई, अरे जल्दी सी खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
5: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाए देती हूँ।
4: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
5: फिर भी लल्लू के बापू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
4: वो भला क्यों?
5: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
4: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आ तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
5: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे और लल्लू के बापू, मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
6: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

0: गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा घणी जयपुर, कैसे हैं आप सब। आज की इस एनर्जेटिक मंडे मॉर्निंग में आपका स्वागत करती हूं मैं, आपके आज के हेलो जयपुर के सफर की साथी भावना। जी हाँ दोस्तों, सफर सुहाना हो ही जाता है अगर साथी और सेहत हमारा साथ दे। तो मैं तो बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ बने रहिए इस हेलो जयपुर के आज के सफर में। और आज है मंडे मॉर्निंग और हम आपके लिए एवरी मंडे मॉर्निंग को लेकर आते हैं हेल्थ सेगमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेगमेंट की सेहत की बात के साथ।
1: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर FM फिट एंड फाइन के प्रायोजक हैं। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
2: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आंखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
3: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल हैं।
0: दोस्तों, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो लाखों लोगों की नींदें खराब कर रही है। जरा सोचिए, ये जो रात भर की चैन और सुकून की नींद हम लेते हैं, उसमें कोई खलल पड़ जाए तो क्या हो? बिल्कुल, आप में से कुछ लोगों के मन में तुरंत आ गया होगा कि अगला दिन भी खराब हो जाएगा, यानी कि अगर हम हमारी नींद के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो अगले दिन भी भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी नींद की वजह से हम पूरे दिन एनर्जेटिक रह पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो दिन में भी कुछ मिनटों का नैप लेकर एनर्जी गेन कर लेते हैं। नींद की कमी हमारे चेहरे पे भी साफ दिखाई देने लगती है, यहाँ तक कि हमारी स्किन भी इससे इफेक्ट होती है। जी हाँ, ये सच बात है, बिल्कुल आपने सही सुना है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ब्यूटी स्लीप लेनी जरूरी है, अच्छी नींद हमें ब्यूटीफुल भी बनाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर हम देखें तो हमारे इस शरीर रूपी मशीनरी को भी रिपेयर होने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए। आप भी तो अभी सैटरडे संडे एनर्जी लेने के लिए रेस्ट किया है ना, वैसे ही इस हमारे शरीर को भी मशीनरी को थोड़ा सा समय चाहिए होता है, क्योंकि कई जो हार्मोन्स है वो नींद लेते समय ही अच्छे से काम करते हैं। तो अब हम ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि नींद, और वो भी प्रॉपर नींद लेना कितनी ज़रूरी है। इसी विषय पर आज हम बात करते हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, सीनियर साइकेट्रिस्ट जो कि SMS मेडिकल कॉलेज से हैं और मनोचिकित्सा केंद्र में आप हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि नींद जो है वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि स्लीपिंग डिसऑर्डर जो होता है वो क्या होता है?
4: देखिए, जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं उनको हम 6 मुख्य जो प्रकार हैं उनमें बांट सकते हैं। पहला जो है वो इंसोमनिया डिसऑर्डर, जिसे हम आम भाषा में अनिद्रा कहते हैं
0: जी।
4: दूसरा जो है वो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, यानी नींद के समय जो सांस लेने की समस्याएं आती हैं, आपने बहुत आम तौर पर हम सुनते हैं कि खर्राटे लोग लेते हैं
0: जी।
4: जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, या सेंट्रल स्लीप एपनिया हो सकता है, या स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, या स्लीप रिलेटेड हाइपोक्सीमिया डिसऑर्डर्स, जो कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स में आते हैं
0: जी।
4: उसके बाद आता है कि कई बार नींद कम होना ही नहीं बल्कि ज़्यादा सोना भी एक बीमारी हो सकती है
0: जी।
4: जिसे सेंट्रल डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपरसोमनालेंस कहते हैं। तो दिन में कई बार व्यक्ति सोता है और एक जो उसकी मेन स्लीप, जो मुख्य नींद के जो घंटे हैं, वो एक बार में 9 से ज़्यादा घंटों तक अगर व्यक्ति लगातार सोता है तो वो हाइपरसोमनालेंस में आता है। इसमें हम 2 टर्म और समझते हैं। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है दिन में एक्सेसिवली और इररेजिस्टिबली सो जाता है या झपकी ले लेता है, चाहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बैठा हो या कोई और काम कर रहा हो, लेकिन उसे अचानक से नींद आती है, जिसे हम नार्कोलेप्सी कहते हैं। और उस दौरान हम ये भी देखते हैं कि उनका जो मसल टोन है वो साधारण तौर पर कम हो जाता है, एकदम सडन लॉस हो जाता है, जिसे हम कैटा

0: प्लेक्सी कहते हैं, और उस दौरान व्यक्ति या तो अर्धचेतन या पूर्ण चेतन अवस्था में होते हुए भी मसल कंट्रोल खो देता है, तो उसे हम कैटाप्लेक्सी कहते हैं। चौथा जो है वो है सर्कैडियन रिदम, या जो एक हमारा चक्र है 24 घंटे का, जैसा आपने शुरुआत में बताया कि कुछ हार्मोन्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो समय चक्र के हिसाब से भी हमारी बॉडी में आते हैं, जैसे मेलाटोनिन है जो रात के समय में सिक्रेट होता है, या कॉर्टिसोल है जो सुबह के समय में सिक्रेट होता है। तो उससे रिलेटेड स्लीप वेक जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी सोना और जगना, इसका एक चक्र है, तो उससे संबंधित जो फेजेस होती हैं उसमें स्लीप वेक फेज या तो डिलेड हो सकती है या एडवांस्ड हो सकती है या इररेगुलर हो सकती है। जैसे अपन ये भी जानते हैं कि कुछ शिफ्ट वर्कर्स होते हैं जो एक्चुअली दिन में सोते हैं और रात को जगते हैं, तो उनका सर्कैडियन रिदम चेंज हो जाता है। हम जेट लैग्स हम सुनते हैं कि कोई विदेश में या जो जोन है हमारे उन जोन से अलग जब यात्रा करते हैं, तो यहाँ से जब वो जाते हैं तो जो समय है लगभग उसके ऑपोजिट समय या उसी समय में वो पहुँचते हैं, यानी यहाँ पे दिन है और वहाँ पे रात है, तो ये एक ऑपोजिशन हो जाता है। बॉडी उसको अडेप्ट करती है और उस दौरान जो डिस्टर्बेंसेज होते हैं उनको जेट लैग डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसके अलावा एक पैरासोमनियाज हम कहते हैं, तो हमारा जो नींद का चक्र है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें स्लीप साइकिल जो होती है NREM स्लीप बोलते हैं, और एक REM स्लीप जिसको डिवाइड करने का जो वो है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट और रैपिड आई मूवमेंट के आधार पर दो अलग अलग, एक स्लीप की साइकिल के अंदर दो फेजेज होती हैं। तो जो NREM के जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कई बार हम सुनते हैं और बहुत बार मूवीज़ में भी हम एक डिपिक्शन देखते हैं कि सोमनाम्बुलिज्म या स्लीप वॉकिंग जिसे हम कहते हैं कि नींद में व्यक्ति चलने लगता है। दूसरा, कई बार हम स्लीप टेरर्स के नाम से भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति रोते हुए चीख के अचानक से डर के साथ उठता है और उस वक्त ओरिएंटेशन नहीं रहता है, कंफ्यूजन रहता है, उसे हम स्लीप टेरर्स कहते हैं। कई बार ये भी देखने में आता है कि स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कि व्यक्ति नींदों में उठता है और खा लेता है जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पे थोड़े रिस्क हैं कि वो क्या चीज़ खा रहा है, कहाँ से ले रहा है, तो वो कई बार उसको पता नहीं चलता है कि वो क्या खा रहा है, और सुबह वो चीज़ें याद भी नहीं रहती, तो हम ये पूछते हैं कि अच्छा ऐसा किया था मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमको सिक्योरिटी जो है व्यक्ति की रात के अंदर दरवाजे खिड़की जो है वो बंद रखने चाहिए। REM स्लीप से रिलेटेड जो पैरासोमनियास हैं उसमें स्लीप पैरालिसिस एक है, दूसरा नाइटमेयर हैं जो डरावने सपने आते हैं, और जो दूसरी तरह के हैं उसमें बेड वेटिंग अपन कहते हैं, एन्यूरेसिस हम कहते हैं। साधारणतः 6 साल की उम्र में बच्चा जो है अपने इनको कंट्रोल करना सीख लेता है और स्लीप रिलेटेड हैल्यूसिनेशंस हैं। उसके बाद में जो अंतिम प्रकार है वो स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर में हम जानते हैं कि कई बार पाँव पटकते हैं जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, स्लीप रिलेटेड क्रैम्प्स भी आते हैं। कई बार हमें ये पता चलता है कि व्यक्ति नींदों में दांत पीसता है या टीथ ग्राइंडिंग जिसे हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, ये भी स्लीप रिलेटेड जो
1: डिसऑर्डर्स जी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, हम तो सिर्फ एक इंसोम्निया की ही बात करने वाले थे और आपने इतने सारे हमारे पास ऑप्शन दिए कि ये भी सब स्लीप डिसऑर्डर में आते हैं। अब हम इंसोम्निया पर बात करना चाहेंगे कि ये भी एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है, और इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर आगे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुनील शर्मा, जो कि SMS मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से, आप मनोचिकित्सक विभाग से हैं, और अभी हम एक बार रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए।
2: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है अब जयपुर में संभव।
6: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर टॉक फाटक टॉक रोड गांधीनगर जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
1: आपने ट्यून इन किया है जयपुर का 101.2 FM और हम जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। हेलो जयपुर कार्यक्रम में आज डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फिट एंड फाइन सेगमेंट में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा और स्लीप डिसऑर्डर के बारे में, इंसोम्निया के बारे में आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अपन ने पहले बात की कि ये कितने प्रकार के होते हैं, अब अगर हम बात करें इंसोम्निया की यानी अनिद्रा की, तो इसके पीछे मेडिकल कारण क्या है और ये इंसोम्निया क्या होता है ये बताइए।
0: देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनिद्रा होता क्या है, कब हम इसे कहते हैं कि व्यक्ति अनिद्रा रोग या इंसोम्निया डिसऑर्डर से ग्रसित है
1: जी।
0: तो व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई होती है या नींद आने के बाद बार बार नींद टूटती है या व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाता है
1: जी।
0: जल्दी खुल जाता है जबकि उसके पास पर्याप्त समय और मौका होता है सोने का
1: जी।
0: और जब व्यक्ति उठता है तब उसे उसकी जो नींद की गुणवत्ता है उससे संतुष्टि नहीं मिलती है, यानी डिससेटिस्फैक्शन विद क्वालिटी ऑफ स्लीप, और इसकी वजह से उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है। इसकी वजह से दिन में थकान, चिड़चिड़ापन और काम पर असर पड़ता है, जिसे हम इंसोम्निया डिसऑर्डर तब कहते हैं जब हफ्ते में कम से कम 3 रातें इस तरह की हों और ये लगभग 3 महीने तक इस तरह की स्थिति बनी रहे, तब हम जाके कहते हैं कि हाँ ये इंसोम्निया डिसऑर्डर हो गया है। बीच बीच में 1 दिन के लिए हुआ, 2 दिन के लिए हुआ, तो इसे रोग नहीं माना जाता, ये साधारण जो जीवन शैली है उसका एक कारण हो सकता है
1: जी।
0: आपका सवाल था कि आप इसके पीछे क्या कारण होते हैं
1: जी।
0: तो बहुत सारे कारण हैं जिसको हम अगर मानसिक कारण या साइकैट्रिक रीजंस की बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, इसके अलावा एंजाइटी है, उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम कहते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, वो एक रीज़न हो सकते हैं। कुछ शारीरिक बीमारियाँ जैसे अगर हार्ट डिजीज़ है कोई, या किसी को क्रोनिक पेन है, बहुत लंबे समय से दर्द है, कई बार सांस की तकलीफ होती है, अस्थमा या COPD, वो भी कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एसिडिटी, आम भाषा में जिसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। न्यूरोलॉजिकल रीजंस के अंदर आपका पार्किंसंस या अल्जाइमर्स
1: जी।
0: कुछ नशे या कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, नशे में शराब है, कैफीन है, निकोटीन है और कुछ मेडिसिंस के साइड इफ़ेक्ट। कई बार हमें कोई रीज़न नहीं मिलता है कि इस व्यक्ति को अनिद्रा का रोग क्यों हो गया है, उस स्थिति में हम इसे प्राइमरी इंसोम्निया कहते हैं कि कोई स्पष्ट अंतर्निहित कारण नहीं है लेकिन फिर भी नींद की समस्या बनी हुई है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया बहुत सारे इसमें कारण होते हैं, तो कारणों के पीछे कुछ लक्षण भी हमें दिखते होंगे, तभी तो हमें पता चलता है कि भाई हमें ये बीमारी हो गई है। तो अगर लक्षणों की बात करें तो वो जो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये लक्षण है और इनको ये इंसोम्निया हो गया है, तो वो क्या होंगे?
0: देखिए, जैसे हमने बात करा कि ये जो कारण है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, यानी अनिद्रा एक जो है हमारा सिम्टम है, एक लक्षण है जिसके अंडरलाइंग कॉजेस बहुत सारे अलग अलग हैं। तो अगर हम व्यक्ति से बात करते हैं, उनको असेसमेंट करते हैं और अगर हम उसके कारण तक जा सकते हैं तो पहले हम उस कारण को ट्रीट करते हैं और केवल अनिद्रा और उससे जो प्रभाव, यानी हम कैसे पहचानें कि व्यक्ति को अनिद्रा की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें बच्चों में अगर हम देखें तो चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा
1: जी।
0: और पढ़ाई या स्कूल में ध्यान नहीं लगता है, बार बार बुरे सपने आते हैं, बिस्तर गीला करता है, बुजुर्गों में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, दिन में बार बार झपकी लेते हैं
1: जी।
0: हल्की टुकड़ों में नींद आती है, थोड़ा दिन में जो है स्मृति भ्रम रहता है या दिन भर थकान जैसे वो महसूस करते हैं। लेकिन जानने के लिए कि इलाज कैसे हो और इसके पीछे क्या कारण है, जैसे जो हमने अभी डिस्कस किए उनमें से अगर कोई रोग पकड़ में आता है तो उसका इलाज किया जाना मेन फोकस होता है
1: जी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें डायग्नोस हो जाए कि किस कारण से ये बीमारी हो रही है, फिर उसका हम इलाज करते हैं तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं
0: जी। बिल्कुल
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब हमें ये सोचना चाहिए कि एक चिकित्सक की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि चलो आज रात को नींद नहीं आई, चलो एक दिन और नहीं आई, या बीच बीच में टूटी टूटी नींद आ रही है, तो हम इतना गौर नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि भाई अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: देखिए, एक तो हमारा जो ये देखने की आवश्यकता है कि हम अगर लगातार 3 हफ्ते से ये प्रॉब्लम हो रही है और 3 महीने से प्रॉब्लम हो रही है और हफ्ते में दिन में 3 बार से ज़्यादा बार हो रही है, उसकी वजह से हमारा दैनिक जीवन या हमारा सोशल या ऑक्यूपेशनल जो जीवन है उस पर असर पड़ने लगा है, साथ में कोई डिप्रेशन, चिंता या आत्महत्या जैसे विचार दिखते हैं, या तेज खर्राटे या सांस फूलती है, और स्लीप हाइजीन को फॉलो करने के बाद में भी हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं
1: जी।
0: तो ये वो समय है जब हमें डॉक्टर के पास जाके हेल्प लेनी चाहिए
1: जी। तो अभी आपने कहा स्लीप हाइजीन, तो स्लीप हाइजीन से आपका क्या मतलब है और इससे हम क्या समझें?
0: देखिए, जिस तरह से हम बाकी एरियाज में हाइजीन का बड़ा महत्व रखते हैं, चाहे खाने पीने में या रहने में, साफ सफाई में, तो उसी प्रकार से ये एक ऐसी स्लीप हाइजीन का मतलब एक हैबिट या अच्छी हैबिट है जिससे कि हम जो आवश्यक हमारी नींद है, जो 7 से 8 घंटे की हमारी क्वालिटी स्लीप है, उसको प्राप्त करने का या उसे अचीव करने का एक तरीका है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये कि हमारा सोने और उठने का समय
1: जी,
0: वो एकदम निश्चित होना चाहिए, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, यानी सप्ताह में प्रतिदिन हमारा सोने का फिक्स टाइम और उठने का फिक्स टाइम, जिससे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिवेट होता है और हम निश्चित और निर्धारित समय तक क्वालिटी स्लीप ले पाते हैं। दूसरा, जो सोने का माहौल है वो बहुत सही रहना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि अंधेरा जो है वो हमारी स्लीप को, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अंधेरे में मेलेटोनिन सिक्रीशन अच्छा होता है। शांत माहौल हो, आरामदायक तापमान वाला कमरा हो
1: जी।
0: फिर हमें कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए, जिसमें कैफीन, निकोटीन, शराब या अन्य कोई नशे हैं वो लगभग 1.5-2 घंटे, मतलब ऐसा है कि ये तो लेना ही नहीं है
1: जी।
0: साथ में हमारा स्क्रीन टाइम है उसको भी लिमिटेड करना चाहिए। सोने के 1 से 2 घंटे पहले सभी तरह की स्क्रीन, टीवी, मोबाइल जो है वो बंद होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस बिस्तर पे हम सोते हैं उस बिस्तर पर दूसरे रोज़मर्रा के काम, जैसा हम देखते हैं आम घरों में लोग उसी बिस्तर पे बैठ के टीवी देखते हैं या खाना खाते हैं या पढ़ाई करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो जो ये सारे जो दूसरे काम हैं ये माइंड को डिफरेंट सिग्नल देते हैं कि भाई ये अब सोएगा या पढ़ेगा, माइंड मेकअप नहीं कर पाता है। तो अगर सोने का ही काम करेंगे,
1: दिमाग भी कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल
0: जी, अगर दिमाग का सिर्फ आप उस जगह पे आ गए और सिर्फ सोने के लिए ही आए तो दिमाग को मैसेज जाता है कि भाई अब सोने का टाइम आ गया है, तो वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो इन सभी बिंदुओं पे ध्यान रखकर हम स्लीप हाइजीन को फॉलो कर सकते हैं
1: जी। तो कार्यक्रम चल रहा है हेलो जयपुर, हम आपसे फिर मिलते हैं डॉक्टर साहब के साथ एक छोटे से अंतराल के बाद।
7: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां यूएसए एफडीए अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
8: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की जानकारी बारीकी से ले, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल है।
2: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
3: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
4: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।
1: आपने ट्यून इन किया है 101.2 FM और आज के इस कार्यक्रम में वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन में हम डॉक्टर सुनील शर्मा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, और इनसे हम आज बात कर रहे हैं अनिद्रा यानी इंसोमनिया पे। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई कि इतने डिफरेंट वेज होते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर के और इंसोमनिया होता क्या है, ये भी हमने बात की। लेकिन अब अगर हम बात करें इसके इलाज की, तो इसके इलाज का सही तरीका क्या है, दवाई या कुछ और?
0: देखिए, जैसा हमने पहले बात की कि स्लीप या इंसोमनिया एक लक्षण है, और इंसोमनिया को आइडेंटिफाई करने के बाद जो निहित कारण है जिसकी वजह से इंसोमनिया हो रहा है, पहले उसका ट्रीटमेंट, साथ में हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोमनिया, इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या फर्स्ट पहली पसंद अगर हम कहें तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोमनिया है, जिसमें जो कंडीशनिंग कई बार हो जाती है, व्यक्ति जब सोने का समय आता है या शाम का समय आता है तो व्यक्ति के मन में ख्याल आने लगते हैं कि अब मुझे नींद नहीं आएगी, अब मुझे रात पिछली रात की जैसे ही जगना पड़ेगा, अब मुझे अगले दिन फिर वही दिक्कत आएगी, तो ये कंडीशनिंग होती है। इस कंडीशनिंग में जो आपके विचार हैं, उन विचारों को आइडेंटिफाई करना, उनको कॉग्नाइज करना और उसके आधार पर अपने बिहेवियर और आदत को बदलने को हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। तो ये पहली पसंद है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमको साथ में दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, तो डॉक्टर की निगरानी में हम दवाइयाँ भी देते हैं, स्पेशली तब जब हमें बहुत समस्या गंभीर लगती है और तुरंत राहत चाहिए होती है, तब हम दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन लंबे समय तक सिर्फ नींद की गोलियों पर निर्भर रहना सही नहीं माना जाता है,
1: और
0: अंडरलाइन कॉज है, उसका सही ट्रीटमेंट और उपचार लेना आवश्यक है।
1: तो लंबे समय तक हमें ये जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, जब भी आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं या नींद के लिए दवाई लेते हैं, अंडर सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में जो साइकेट्रिस्ट हैं
1: जी,
0: या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनकी देखरेख में ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, सुपरविजन में हम इन दवाइयों का एक नियमित या निश्चित समय तक ही प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आगे ये भी जानना चाहेंगे कि एक टर्म होती है स्लीप स्टडी, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे सभी श्रोताओं को बताइए कि ये क्या होती है।
0: देखिए, स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी एक प्रकार की जांच होती है
1: जी,
0: जिसमें रात के समय जब व्यक्ति सो रहा होता है उस वक्त उसके मस्तिष्क में तरंगें जो जाती हैं या क्या एक्टिविटी उसके दिमाग में हो रही हैं, साथ ही उसके आई के मूवमेंट कैसे होते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क से आँख बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और उससे हमारी जो उस वक्त हमारी नींद के दौरान हमारी हार्ट रेट कैसी है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कैसा है और ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनकी गतिविधियां कैसी हैं। तो अगर हम ये देखें कि शुरू में जब हमने स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात की थी तो लगभग हमने रेस्पिरेशन की बात की थी, मूवमेंट की बात की थी और बाकी बात की थी, तो उनके जो कंपोनेंट हैं उनकी नींद के दौरान स्टडी होती है, उसको हम स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं, और ये एडवाइस किए जाने पर की जानी चाहिए, व्यक्ति को अपने आप से नहीं ये करना चाहिए
1: जी।
0: और स्पेशली हम जब बहुत तेज खर्राटे आते हैं या नींद में सांस रुकती है जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं
1: जी।
0: उसका जब डाउट होता है या नींद में कोई असामान्य हरकतें, जैसे हमने देखा कि बहुत तेज चीखता है, चिल्लाता है, नींद में चलने लग जाते हैं, या कई बार हम ट्रीटमेंट दे देते हैं उसके बावजूद भी जो इंसोमनिया के ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं आ रहा है, या नार्कोलेप्सी का डाउट है, इन कंडीशंस के दौरान स्लीप स्टडी करवाई जानी चाहिए
1: जी। तो ये उपयोगी रहती है, इसकी स्टडीज से हमें पता चलता है कि भाई क्या बीमारी है और हमें किस डायरेक्शन में इलाज को लेके जाना है
0: जी।
1: जी बहुत खूब साहब, अब हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी सी बात इस विषय पर करें कि ये जो स्लीप पैरालिसिस, अभी आपने कुछ एक टर्म यूज़ की थी, तो वो क्या होता है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि ये भी क्या एक चीज़ है, ये भी बताइए।
0: स्लीप पैरालिसिस
1: जी,
0: यह एक स्थिति है जब नींद से जागते या सोते समय के लिए कुछ समय यानी कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक व्यक्ति चाहकर भी उस शरीर अपने शरीर को हिला नहीं पाता है
1: जी।
0: तो एक तरह से उस वक्त टेम्पररी पैरालिसिस जैसा फील होता है, जबकि वो पूरी तरह से होश में होता है, नींदों में नहीं होता
1: जी।
0: यानी जागती हुई कंडीशन में, लेकिन जागते हुए यानी अब सोने जा रहा है या उठ रहा है
1: जी।
0: उस दौरान की स्थिति है, लेकिन कॉन्शियस वो रहता है, और ये एक REM स्लीप का हिस्सा है, उसमें ये होता है, और मसल्स के अंदर एटोनिया या उनकी जो टोन है वो बिल्कुल कम हो जाती है, उसकी वजह से स्लीप पैरालिसिस होते हैं। कई बार इसके साथ साथ डरावने एक्सपीरियंसेस भी मान सकते हैं होते हैं। साधारणतः ये हानि रहित होता है, यानी इसमें विशेष चिंता की बात नहीं होती है
1: जी।
0: लेकिन अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब हमें चिंता करनी चाहिए। और अगर नींद की बहुत कमी हो रही है या कोई तनाव हो रहा है, उस स्थिति में अगर स्लीप पैरालिसिस होती है तो अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट, उसका असेसमेंट आवश्यक है
1: जी। तो घबराने की बात नहीं है, अपने डॉक्टर से मिलिए, और
0: यदि कभी कभी होता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कई लोग कभी भी सो जाते हैं, जैसा आपने बताया एक नींद का फिक्स पैटर्न होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, तो वो भी बताइए, क्योंकि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी होगी कि कैसे उन्हें एक पैटर्न में सोना चाहिए
0: जी। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि नियमित हमारे जीवन के अंदर रेगुलरिटी या नियमितता का बड़ा महत्व है
1: जी।
0: चाहे हम आहार की बात करें, चाहे हम नींद की बात करें, चाहे हम व्यायाम की बात करें, तो एक नियमितता या रेगुलरिटी बहुत आवश्यक है। उसी तरीके से जैसा आपने शुरू में कहा कि हमारे माइंड को चीज़ों को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए
1: जी।
0: है ना, ये जो नींद का समय है ये बैक ऑफिस टाइम है, यानी कि मस्तिष्क अपने आप को आगे के लिए तैयार करता है, उसमें वो जिन जगहों पे आराम करना चाहिए उन कामों को थोड़ा रोकता है और दूसरे काम करता है, जिसमें याददाश्त या रेगुलर आगे के सिस्टम्स को रेगुलराइज करना। तो इसका जो पैटर्न है 24 आवर्स बायोलॉजिकल क्लॉक, हम जिसको कहते हैं, सिरकेडियन रिदम से नियंत्रित होती है, और ये सोने और जागने के जो समय हैं उनको निर्धारित करती है। और हमारा जो एक साइकिल है, नींद का एक साइकिल, वो लगभग 90 मिनट का होता है, और उसमें NREM स्लीप यानी हम हल्की नींद से गहरी नींद की तरफ जा रहे होते हैं, और एक REM स्लीप या जिसे हम आम भाषा में नींद वाली सपनों वाली नींद है उसे भी कहते हैं। तो NREM और REM स्लीप दोनों मिला के लगभग 90 मिनट का एक चक्र होता है, और ऐसे चक्र चलते रहते हैं 7 से 8 घंटे तक। तो ये सिरकेडियन रिदम रात के समय सोने का, दिन को समय जागने का। और कई बार ऐसा होता है कि दिन में लोग बहुत लंबा सोते हैं, जो ज़्यादा देर तक सोते हैं उसकी वजह से रात की जो नींद है वो प्रभावित होती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम हमारे श्रोताओं से भी जुड़ेंगे, उनके लिए हमने दो लाइंस भी खोल रखी है श्रोताओं, 2200600 और 2366477 ये हमारे स्टूडियो नंबर है। हमारा एसटीटी जयपुर का एसटीटी कोड है 0141। आप इन नंबरों पर जो हमारे डॉक्टर साहब जिस विषय पर आपसे बात कर रहे हैं, इस विषय पर आपको अगर कोई समस्या है या हमने अभी जो बातें की हैं उनमें से भी आपको कुछ समझना है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, हमारे बीच है। एक अंतराल के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, राज्य का एकमात्र स्थान जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, अब जयपुर में संभव।
6: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम।
5: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
1: स्वागत है आपका डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्विस सर्जरी फिट एंड फाइन कार्यक्रम में। हमारे साथ है डॉक्टर सुनील शर्मा जो कि मनोचिकित्सक विभाग से जुड़े हुए हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं और आज अनिद्रा पर हम इनसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जयपुर।
9: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
9: जी नमस्ते डॉक्टर।
0: जी नमस्ते
9: डॉक्टर, मेरी एज 55 है और मेरा नाम मनोज शर्मा है। मेरा सर ये ऑनलाइन करता हूँ, रात को मैं ऑनलाइन करता हूँ। पिछले 6 महीने से मैं 2 बार ऐसा हुआ है कि मुझको वो काम करते करते कंप्यूटर पे नींद आ गई, फिर 5 मिनट बाद पता चला कि मैं अपने यहाँ पर गिर गया और मेरे बहुत पसीना आ गया, जबकि मेरे पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि और मैं बिल्कुल एकदम भगवान की दया से सब कुछ हेल्दी हूँ। तो ये कैसे है, मतलब फिर घर वाले मेरे पास आए और मुझको उठाया और मैं पूरा पसीना पसीना था, जबकि ऐसा और बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं थे, केवल पसीना था और चीख निकल गई थी। 2 बार ऐसा हो चुका है पिछले 6 महीने में, तो थोड़ा इसका बता सकते हैं क्या रीजन हो सकते हैं?
0: जी देखिए, जैसे आपने बताया कि आप काम करते करते गिर गए या नींद आ गई, तो आपको
9: नींद आ गई थी सर, नींद आ गई थी और नींद के बाद मैं 5 मिनट बाद ही पता चला कि मैं नीचे फर्श पे गिरा हुआ था और मेरी चीख निकली थी और पसीना पसीना हो गया था, बाकी और कोई सिम्टम नहीं था।
0: जी आपको, आपने फिर जांचें करवाई हैं? आपने रेगुलर ट्रीटमेंट, जब भी आप इस तरह की होने के बाद में मेनली आपको एक तो ईईजी करानी आवश्यक रहती है कि आप ईईजी कराएं और देखें कि कई बार जो सीजर्स या एपिलेप्टिक डिसऑर्डर है वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। तो एक बार आप ईईजी और अपने न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें कि क्यों इस तरह से हुआ। बाकी जैसा आपने बताया कि डायबिटीज़ और बीपी अगर आपका कंट्रोल है तो भी एक बार आप रूटीन चेकअप कराएं, जिससे कि हम जान पाएं कि ये दोनों चीज़ें आप ठीक हैं या आप सेफ जोन में हैं। तो एक बार आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके असेसमेंट लें।
9: सर, सर एपिलेप्सी का तो कोई दिक्कत नहीं है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और कोई हिस्ट्री भी नहीं है हमारे पारिवारिक कोई एपिलेप्सी हो
0: जी आपने कोई... जी बिल्कुल सही है कि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार इवेल्युएट, कोई कारण तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। आम तौर पर सामान्य नींद के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, तो उसके पीछे ये जानने के लिए कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है उसके लिए हमें इवेल्युएट करना चाहिए।
1: सर, ये अभी जो हमने बात की इसमें शिफ्ट ड्यूटी का ही अगला हमारा प्रश्न आपके पास आने वाला था कि शिफ्ट ड्यूटी पे जो काम करते हैं उनकी तो नींद जो है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह का शाम को और शाम को सुबह वो अपनी नींद पूरी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसा हमने पहले बात की थी कि हमारे को एक निरंतरता या रेगुलरिटी रहनी चाहिए
1: जी,
0: कि अगर वो शिफ्ट में काम करते हैं लगातार तो लगातार उनके सोने का समय भी निश्चित हो, जिससे कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को उस उनके जो काम के समय है उसके हिसाब से निर्धारित कर सकें और सोने के टाइम जो स्लीप हाइजीन के नियम हैं, यानी कमरा जो है वो बिल्कुल
1: शांत
0: हो, अंधेरा हो, और छुट्टी के दिन भी अगर वो इसी पैटर्न को अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा होता है कि छुट्टी है तो फिर अब आज रात को सो लेते हैं, दिन को जग लेते हैं, तो हम उसको अगर दोबारा से हमारे स्लीप पैटर्न को रीसेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक ही दिन बाद वापस से हमको पुराने उसके ऊपर आना पड़ता है, तो कोशिश ये करें कि इसको रेगुलराइज करें और शिफ्ट ख़त्म होने के बाद में जब आपको सोने का समय आ रहा है तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा लिमिटेड रखें और तेज़ धूप से बचें उस दौरान
1: जी।
0: कि आप अंधेरे से जाएं तो उस वक्त क्या है कि जब आप सोने का समय हो रहा है तो माइंड अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जैसे ही आप तेज रोशनी में जाते हैं तो माइंड फिर से एक्टिवेट हो सकता है
1: जी।
0: और छुट्टी के दिनों में भी पैटर्न को सेम रखें।
1: तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप दिन में सो रहे हैं तो भी, और अगर रात में सो रहे हैं तो भी, आपका जो नींद का टाइम है उसको आपको फिक्स रखना है और जो गोल्डन रूल्स आपने बताए हैं हाइजीन के उनको भी फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जयपुर।
10: नहीं जी, आपको डॉक्टर साहब को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जंगड़ बोल रहा हूँ जयपुर से।
1: नमस्कार
0: जी। नमस्कार
10: डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था कि मेरी उम्र ना 55 साल है और पिछले 2-3 महीने से डॉक्टर साहब मेरे को रात को ना 1-1.5-2 बज जाते हैं, नींद नहीं आती है, जबकि पहले मैं कम से कम नॉर्मली 7-8 घंटे की आराम से नींद लेता था, कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई बीपी शुगर कुछ नहीं है, कोई मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, बस इतना सा है कि ये रात को नींद नहीं आती है, और दिन में अगर 5 मिनट भी सो लेता हूँ तो फिर मेरे को रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आती, इसलिए मैं दिन में भी नहीं सोता हूँ।
0: देखिए, जैसा आपने बताया कि आपको कोई और बीमारी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, तो आप जैसा हमने पहले बात की थी कि स्लीप हाइजीन को एक बार फॉलो करके देखिए। स्लीप हाइजीन के अंदर आपका सोने का समय निश्चित रखें और उठने का समय निश्चित रखिए, और दिन में आप बिल्कुल ना सोएं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो विचार हैं, यही विचार और ये चिंता हमें अपने आप में कंडीशन कर देती है कि अब शायद नींद नहीं आएगी। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप
10: सोने के टाइम, सर रात को मैं ना 10:15-10:30 बजे बिस्तर पे जाता हूँ, और सुबह तो हमारा टाइम ना जल्दी उठने का है, वही 6-6:15 बजे ऐसे।
0: तो सर आप एक बार स्लीप हाइजीन को फॉलो करके देखिए, और अगर उसके बाद भी नींद नहीं आती है तो एक बार आप अपने नियरेस्ट जो भी क्वालिफाइड फिजिशियन हैं या साइकियाट्रिस्ट
10: हैं, एसएमएस में भेजते हैं
0: सर, हमारे एसएमएस पे आपका मनोचिकित्सा विभाग में आप किसी भी दिन आप पधारें और आपकी पूरी हेल्प की जाएगी।
1: जी जी सर, आप अभी इस कार्यक्रम का
10: ठीक है, थैंक यू।
1: तो सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि नींद नहीं आती, ये जो इनका प्रश्न था कॉमन मैन का बहुत ज्यादा प्रश्न होता है, क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद ये परेशानी सभी में आती है, तो क्या उम्र का भी नींद से कुछ लेना देना है सर?
0: लेकिन उम्र के दौरान हाँ, आवश्यकता और आपकी जो एक्टिविटी है उसके आधार पे फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ थोड़ी नींद की आवश्यकता उम्र होने पे कम हो जाती है, तो हम जहाँ 7-8 घंटे नॉर्मल वयस्क की आवश्यकता मानते हैं, वहाँ पे 6-7 घंटे हम बुज़ुर्गों में इसको कंसिडर कर सकते हैं, और बच्चों में तो ये बहुत प्रथम एक साल 5 साल और 10 साल तक थोड़ा ज्यादा वेरी करता है, उनकी आवश्यकता थोड़ी ज्यादा होती है
1: जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जयपुर।
11: नमस्कार सर। मैडम, डॉक्टर को नमस्कार।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका।
11: मैं जयपुर से शिवी से बोल रहा हूँ। डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी एज है 76
1: जी। रेडियो सेट से थोड़ी सी दूरी बनाकर बात कीजिए।
11: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
11: और तो फिर मेरे क्या है, मैं 9:45 राइट टाइम बिल्कुल सोता हूँ, सुबह 4 बजे जगता हूँ, लेकिन सोते समय बड़ी गहरी नींद में और स्वप्न देखता हूँ, कभी जो डेथ हो चुकी है उन लोगों से मिलने के लिए, कभी कहीं पहुँच जाता हूँ, ये क्या रीजन होता है डॉक्टर से?
0: देखिए, अगर ये कभी
11: नींद बहुत अच्छी आती है मेरे को, और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे राइट टाइम जगता हूँ, मैं अपना योगा वगैरह फिर करता हूँ।
0: देखिए, कभी कभी हम जो REM स्लीप के दौरान जो सपने आते हैं वो हमें याद रह जाते हैं, और साधारण तौर पे इनका कोई रीज़न नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आने लगे हैं और आपको परेशान करते हैं तो हमें इवेलुएट करने की आवश्यकता है कि आपके जो दैनिक जीवन में जो आपकी दिनचर्या है उसमें आप किस तरह से, आपकी जो सोच विचार में कोई परिवर्तन हुआ है, किसी तरह की कोई चिंता है या बैक ऑफ द माइंड कुछ आपकी चीज़ें चल रही हैं, उसको एक बार इवेलुएट करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे सब चीज़ें ठीक हैं तो आप निश्चिंत रहें, कोई सपनों की कोई विशेष व्याख्या आवश्यकता नहीं है उसके लिए।
11: बस डॉक्टर, और कुछ नहीं, बस खाली यही कि बिल्कुल बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन रात को जैसे 1-2 बार बाथरूम के लिए जगनाल, फिर सो गया तो फिर भी कहीं ना कहीं घूमने अच्छे सपने आते हैं, वैसे नहीं आते।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी नींद आती है। डॉक्टर साहब, सपनों वाली नींद की अभी आपने बात की, इस विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए।
6: उत्तम तकनीक और अनुभवी सर्जन मिलकर देते हैं सफल परिणाम। डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर,
5: जहां मोतियाबिंद का इलाज फेंटो लेजर सर्जरी द्वारा किया जाता है, राज्य का एकमात्र स्थान।
6: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टॉक फाटक, टॉक रोड, गांधीनगर, जयपुर। कॉल 2707580 और 9829017147।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है और 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हम सभी से एफएम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में विराजे हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, और आप एक सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी हम लेते हैं। सर, एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो जयपुर।
12: नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है।
1: मैम मैं अजय बोल रहा हूँ जयपुर से। अभी जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा था मैम रिगार्डिंग शिफ्ट ड्यूटीज, तो मेरा काम एविएशन का है और उसमें शिफ्ट हर दिन चेंज होती है, जैसे एक दिन मॉर्निंग, एक दिन आफ्टरनून, एक दिन नाइट। तो मैम स्लीपिंग साइकिल जैसे सर कह रहे हैं, तो जैसे नाइट ड्यूटी रहती है उस दिन दिन में सोना पड़ता है और पूरी रात ड्यूटी करनी पड़ती है, तो मैम इस नाइट ड्यूटी के जो इफेक्ट है उनको कम करने के लिए हम किस तरह अपने नींद स्लीपिंग साइकिल को मैनेज कर सकते हैं?
2: देखिए सर, जहाँ तक संभव हो आप देखिए, हमारा जो हम बात करते हैं वो आइडियल बात करते हैं, आदर्श बात करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत बार प्रैक्टिकल चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि आपका अगर बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट चेंज होती हैं, आपका कार्य इस तरह का है, तो भी हमें एक जैसे आप डे और इवनिंग ड्यूटी हैं उस दौरान एक लंबा समय जो मिलता है आपको, उस वक्त आप अपना जो शेड्यूल है उसको फिक्स रख सकते हैं, और नाइट ड्यूटी वाले दिन भी आप थोड़ा दिन की नैप लेके और रात को या जल्दी जो है उस चक्र को पूरा कर सकते हैं। और बाकी जो स्लीप हाइजीन के जो पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट एक छोड़ के कि आप सोने का कमरा है ना, निर्धारित जो कमरा है उसका वातावरण, खाने सोने से पहले बहुत स्क्रीन अवॉइड करना या स्टिमुलेंट पदार्थ हैं उनका कंजम्पशन नहीं करें, इस तरह से हम उसको मैनेज कर पाएंगे। जी सर,
1: सर इसमें जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 आवर्स नाइट का रूल फॉलो होता है सर, तो सर ये जैसे स्लीपिंग अब मैं अपने मतलब शिफ्ट चेंज नहीं कर सकता, बट ये सर हमें फिर बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो सर कई बार क्या होता है, हम ड्यूटी करके आते हैं सुबह, नींद नहीं आती है जो आप कह रहे हैं उस चक्कर में, मतलब वो जो सारा जो रूम का वगैरह कह रहे हैं आप, वो करने के बाद भी सर कई बार होता है कि सोने की कोशिश करते हैं बट नींद नहीं आ रही है, बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं करती है।
2: देखिए जो आपकी शिफ्ट पैटर्न्स हैं उनको एक बार अगर आप अपने सुपरवाइज़र से बात करें और उनको आप अपनी समस्या बताएं तो शायद वो हो सकता है, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आप एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से पर्सनली मिलके डिटेल में इसके बारे में चर्चा करके, और आपके लिए कोई इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम अगर कुछ हम सजेस्ट कर पाएंगे तो आप पधारें।
0: जी, तो डॉक्टर साहब इसमें योग, प्राणायाम ये भी कुछ सहायता करते हैं, मदद करते हैं?
2: जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है कि जो हमारा डे टू डे एक्टिविटी है और किस तरह से हम जीवन को लेते हैं
0: जी,
2: वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम और योग बिल्कुल मददगार साबित होते हैं, या डीप ब्रीदिंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी बहुत कारगर होती हैं, कि ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो सक्रिय करती हैं, और इससे जो तनाव से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं उनको कम करते हैं, शरीर को आराम की स्थिति में ले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये अकेला इलाज नहीं है, ये सहायक थेरेपी या एडजंक्ट थेरेपी हो सकती है, साथ में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोमनिया आदि, और जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली साथ में लें।
0: जी, तो डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम का समय, इस सेगमेंट का समय यहीं समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए लाए आप और सभी को लाभान्वित किया, स्टूडियो तक आए और सभी लिसनर्स को सारी बातें अनिद्रा के बारे में विस्तार पूर्वक समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर, और आज का हमारा मंडे स्पेशल सेगमेंट है वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर फिट एंड फाइन, जिसमें आज हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील शर्मा, सीनियर साइकेट्रिस्ट SMS हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा केंद्र में आप जुड़े हुए हैं, और आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र मीणा। अब हेलो जयपुर के इस सेगमेंट से मुझे यानी कि भावना शर्मा को भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
3: डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर FM फिट एंड फाइन के प्रायोजक थे डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
4: क्या आप चश्मा हटवाना चाहते हैं? क्या आप बिना टांके, बिना पट्टी के सूक्ष्मतम चीरे द्वारा मोतियाबिंद का सफल इलाज करवाना चाहते हैं और आँखों से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं? तो आइए डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर पर, जहां USA FDA अप्रूव्ड विजुमैक्स फेमेटो सेकंड लेजर द्वारा 5 मिनट में सफलतापूर्वक चश्मा हटाया जाता है।
5: डॉक्टर वीरेंद्र दिल्ली एम्स के प्रख्यात गोल्ड मेडलिस्ट हैं। संपर्क करें डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर। कॉल करें 9829017147। तकनीक की

0: जानकारी बारीकी से लें, तभी इलाज करवाएं, क्योंकि आपकी आंखें हमारे लिए अनमोल है।
1: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

और आज एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं 101.2 FM पर जयपुर के आमेर चैनल पर आप सुन रहे हैं हेलो जयपुर। आज के इस सेगमेंट में अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के दिन की शुरुआत से, यानी कि खुशनुमा सुबह की शुरुआत दोबारा से एक एनर्जी के साथ। पहले हमने हेल्थ की बातें की, अब हम गीत संगीत और आज के विशेष दिन की भी बातें करेंगे, लेकिन इस एक म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

और इस चैनल से आप जुड़े हैं मेरे यानी कि भावना के साथ 101.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं। और श्रोताओं, आज हम आपको बता दें कि ये जो आज की सुबह है बहुत ही सुहानी सुबह है। सुबह सुबह तो थोड़ी झिरमिर झिरमिर बारिश भी हो रही थी और आप सभी ने उसका चाय की चुस्कियों के साथ आनंद भी लिया होगा। बिल्कुल ये ही तो मौसम है जब हमें चाय पकौड़े सब अच्छा लगता है, तब हम थोड़ा सा अपना जो डाइट कॉन्शियसनेस है उसको भी साइड में रख देते हैं। सेहत का ध्यान हम रखते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ी सी चीटिंग तो चलती है, क्योंकि देखो मौसम की डिमांड यही होती है कि हम इस तरह की सुबह का मजा इसी तरह से लें। तो जब आप ये सब करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सेहत है उससे कोई खिलवाड़ ना हो। जैसे कि अगर आपने दिन के टाइम कुछ इस तरह की चीज़ों को खा लिया है जो कि आपके हेल्दी रहने में कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकती है, तो आपको बाद में थोड़ी सी अपन ये चीज़ करनी चाहिए कि अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, जो गलती या जो चीटिंग हमने सुबह की थी उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि हम उससे फ्री हो जाएंगे। और अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो अच्छे अच्छे गाने अच्छी अच्छी बातें मैं आप तक लेके आती रहूंगी, लेकिन पहले अभी हम रुकेंगे विश्व दर्पण के लिए जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आज के दिन की यानी कि 3 अगस्त की। आज कई लोगों का जन्मदिन भी है और उसके अलावा एक बहुत बड़ा दिन भी आज के दिन में ही हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ देर के लिए हम रुकते हैं। विश्व दर्पण के बाद फिर से आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मन देश षड्यंत्र करके भारत के युवाओं को नशे की लत में खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसीलिए हमें प्रत्येक युवा को नशे के चंगुल से फंसने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत होना और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।
3: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये भी संकेत है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन के बारे में भी समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता किया जाएगा। कूटनीति की ओर ये अचानक झुकाव ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय ढांचे को फिर से शुरू करने करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते को फिर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक जलमार्ग 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के खुला रहे। उधर समुद्री गलियारे के संचालन के लिए संयुक्त कार्यप्रणाली पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए।
4: ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। स्थानीय जनजातीय परिषद ने क्षेत्र में शांति की मांग करते हुए स्वात शांति रैली आयोजित की थी। परिषद ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बदतर हो गई है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो वॉर कार्रवाई को तैयार है। जापान के वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीकी वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के खिलाड़ियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: मुख्य कोच सत्यनारायणन ने आशा व्यक्त की कि भारत 2030 के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
2: ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आगे आने वाला हम अच्छा करेगा। मेरा एथलीट बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है, हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है। इवन गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है।
0: राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

स्वागत है आपका हेलो जयपुर में मेरे साथ। जी हाँ, ये 101.2 मेगाहर्ट्ज जयपुर का एफएम चैनल है और आपने ट्यून किया है हेलो जयपुर। इस सफर में 12 बजे तक हम आपके साथ हैं और आपके मनपसंद गीतों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, यानी आपकी जो फरमाइशें हैं उसे भी हम पूरा करेंगे, लेकिन वो होगा सेगमेंट 11 से 12 में। अभी हाल फिलहाल हम बात करते हैं हमारे आज के दिन की, यानी कि आज है सोमवार। दोस्तों, सोमवार वो भी सावन का, और ऐसी खुशनुमा सुबह लेकर जो आया है तो हमारा खुद का शहर ही हमें इतना खूबसूरत लगा। तो जब हमें ये शहर खूबसूरत लग रहा है तो एक खूबसूरत सा गीत भी आप तक पहुंचाना हमारा काम है, हम जरूर पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस गीत के साथ।

दोस्तों, आज का दिन हृदय प्रत्यारोपण दिन के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट डे। 3 अगस्त को इस दिन हम मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था, सफल हार्ट ट्रांसप्लांट। 1994 से पहले इस काम के लिए हमें विदेश जाना पड़ता था, तो जब यहीं ये काम होने लगा और ये दिन जो है एक विशेषता लिए बन गया, क्योंकि ये वही दिन था जब हमें, हमारे जो टीम्स है सर्जन एम्स की, उन्हें इस काम में सफलता मिली थी। दिल का मामला भी बहुत अजीब है दोस्तों, लग जाए तो बुरा और जब दिल ना लगे तो और भी बुरा। दिल की बातों को दिल तक पहुंचाने का बेहतरीन तरीका है म्यूजिक। तो दिल से जुड़ा ये गीत पहुंच रहा है आपकी रेडियो सेट तक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भाई, मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
2: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1-800-1234 या 1-800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
3: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1-800-1234 या फिर 1-800-2100 पर और पाए समाधान।

दोस्तों, आज यानी 3 अगस्त को ही जन्मे थे दो ऐसे सितारे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को रोशन किया। संगीतकार जयदेव, जिनके सुर आत्मा तक जाते थे, और गीतकार शकील बदायूनी, जिनके लफ्ज दिल को छू जाते थे। जयदेव जी एक राग को परफेक्ट करने में महीनों लगा देते थे, इसीलिए उनके गाने आज भी ताजा लगते हैं। वो कहते थे, जिस राग पर मेहनत ना की जाए उस राग को गाने में उन्हें मज़ा नहीं आता। और अगर बात करें शकील साहब की, तो वो उर्दू के शायर थे जो दर्द को भी इतनी खूबसूरती से लिखते थे कि दर्द भी मीठा लगने लगता था। इन दोनों कलाकारों ने हिंदी गानों को अमर कर दिया। एक ने सुर दिए, दूसरे ने लफ्ज, और साथ में बना जादू। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने एक साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया, 1961 में आई हम दोनों, जिसके हीरो थे देवानंद साहब, और ये फिल्म एक क्लासिक बन गई। इसी फिल्म से हमने ये गाना लिया है, जैसे उन्होंने जिंदगी का साथ निभाया, हम भी आपके साथ बने हुए हैं, आप भी हमारा साथ निभाइए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, आ रहा है ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट तक।

हेलो जयपुर, आप जुड़े हैं जयपुर में मेरे साथ यानी भावना के साथ। तो हम बात कर रहे हैं आज शकील बदायूनी जी साहब की और जयदेव जी की। दोस्तों, ये दोनों जो फ़नकार थे, इन्होंने ऐसे अमर गीत हमें दिए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना अच्छा, इतना प्यारा और इतना मीठा कोई कैसे लिख सकता है, कोई कैसे इतना अच्छा राग बना सकता है। इसके पीछे साफ पता चलता था कि उनकी महीनों की मेहनत थी। वो शब्दों को बारीकी से चुनते थे और फिर बुनते थे एक अच्छा सा, प्यारा सा गीत और संगीत का गुलदस्ता। तो जब हम उनकी बात करते हैं तो हमारा मन यही कहता है।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जयदेव जी की भी। आज उनका भी जन्मदिन है और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म में गाने लिखे। उनका एक बहुत खूबसूरत सा गाना आप तक मैं पहुंचा रही हूं। गाइड फिल्म से ये गाना है, लता जी की खूबसूरत आवाज़ में।

और हेलो जयपुर में आप जुड़े हैं मेरे यानी भावना के साथ। आज हम बात कर रहे हैं जयदेव जी वर्मा की और शकील बदायूनी जी की, उन्हीं से जुड़े हम बहुत सारे गीत आपको सुना रहे हैं। अब एक और प्यारा सा गीत मैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में चुन के लाई हूँ, पहुँचा रही हूँ आपके रेडियो सेट तक।

दोस्तों, इस सेगमेंट में हमने बात की शकील बदायूनी और जयदेव जी की, और इस सेगमेंट में लास्ट जो हम आपके लिए गाना लेकर आए हैं वो है फिल्म मुगले आजम का, क्योंकि शकील बदायूनी जी ने इस ऐतिहासिक फिल्म के सारे प्रसिद्ध गाने लिखे थे जिन्हें संगीतकार नौशाद ने संगीतबद्ध किया था, और आज का ये कार्यक्रम इस एक क्लासिकल हिट यानी गोल्डन सॉन्ग के बिना अधूरा है। जुड़े रहिएगा हमसे। इस गाने के बाद हम हमारा हेलो फरमाइशी कार्यक्रम, जो आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम भी है, आपके लिए लेकर आएंगे। उसकी दोनों फोन लाइंस भी हम आपको बताएंगे और आप हमसे जुड़िए और जुड़कर अपनी फरमाइश हमें बताइए। तो बातें अभी और भी हैं, पहले सुनते हैं ये ऐतिहासिक गाना।

और जयपुर के आमिर चैनल से अब समय आ गया है आप लोगों की फरमाइशों को जानने का, उन्हें पूरा करने का। करना क्या है आपको, बस हमें कॉल लगाना है। स्टूडियो के दोनों नंबर हमने आपके लिए ओपन कर रखे हैं, 2200600 2366477। ये हमारे दोनों लाइंस हैं जो आपके लिए खुली हैं। 0141 जयपुर का एसटीडी कोड है। आप हमें फ़ोन मिलाइए, अब जब आपकी हमसे बात हो जाए तब आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। यकीन मानिए, एक बार बात होने के बाद ज़रूर आपका फोन, आपकी आपका जो सॉन्ग है वो हम प्ले करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और अभी इसी धैर्य के साथ हमारी पसंद का एक मधुर सा गीत आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल एक मंदिर है फिल्म का गीत, जिसके बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। दोस्तों, हमारे पास हेलो फरमाइश की पहली फरमाइश आई है भूपेंद्र जी की कोटा राजस्थान से। ये सुनना चाहते हैं जिंदगी और मौत फिल्म का गाना, जिसे कि आशा भोसले जी ने गाया है। पहुँच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक।

हमारे चैनल पर अगली फरमाइश की है मोहम्मद रफीक जी ने, ये सुनना चाहते हैं त्रिशूल पिक्चर का गाना। ये बोल रहे थे मुंगड़ा बालोतरा से, पहुंच रहा है आप सभी की रेडियो सेट तक।

अभिजीत की आवाज़ में ये गाना पसंद किया था मालवी नगर से कविता जी ने, और इस गीत को गाया था अभिजीत जी ने, और ये दिल्लगी फिल्म का ये गीत था। इसके गीतकार थे समीर और संगीतकार थे दिलीप सेन, समीर सेन। आप भी अपनी पसंद का गाना हमसे सुन सकते हैं, आप अपनी फरमाइश हमारे चैनल पे बता सकते हैं। हमारी दोनों फ़ोन लाइंस आपके लिए खुली है। जयपुर का एसटीडी कोड है 0141 और हमारे नंबर हैं 2200600236647। इन दोनों लाइंस पर आप अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं आपके गाने का। फिलहाल हमारे पास फरमाइश आई है मोहम्मद रिजवान जी की, जिन्होंने कसूर फिल्म का गाना सुनना चाहा है। ये जयपुर से बोल रहे थे, इन्हीं की फरमाइश पर ये गाना आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है।

और इस चैनल पर अभी हमें फरमाइश भेजी है सचिन जी ने संभल से। ये सुनना चाहते हैं 1942 अ लव स्टोरी का सॉन्ग, जिसे गाया है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। आप सभी की रेडियो सेट तक पहुंच रहा है ये खूबसूरत सॉन्ग।

और हमारे चैनल से अभी आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश पर जुड़े गीत। आप हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमारे स्टूडियो के दोनों नंबर हम आपको बता चुके हैं, अब दोबारा एक बार नए लिसनर्स को बता देते हैं, 2200600, 2200700। ये हमारे दोनों नंबर आपके लिए हमने अभी खोल रखे हैं, और 0141 जयपुर का STD कोड है। इस नंबर पर फ़ोन कर अभी हमें बशीर जी ने अपनी फरमाइश बताई है, जो कि बाड़मेर से बोल रहे थे और ये एक बहुत ही सुंदर सा गाना सुनना चाहते हैं, पहुंच रहा है आपकी रेडियो सेट तक।

और हमारे चैनल से आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश। इसमें अब अगली कॉल हमारे पास आई है कैलाश चंद्र सैनी जी की। ये सुनना चाहते हैं सनम बेवफा फिल्म का गाना, और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आप सभी की रेडियो सेट तक पहुंच रहा है ये ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाएं समाधान।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है प्रकाश जांगीर जी की मुरलीपुरा जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं लैला फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में ये गाना अभी आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंचा। अब अगली फरमाइश हमें आई है मोहम्मद सिकंदर जी की। डीडवाना हुडास से इन्होंने फ़ोन किया और कर्मा फिल्म का गाना ये सुनना चाहते हैं, और ये आज के हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश है जिसे हम पूरी कर पा रहे हैं। अगर आपने फ़ोन लगाया है और आपका फ़ोन हम नहीं ले पा रहे हैं तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन लगाने का जज्बा भी काबिले तारीफ़ है। इसी तरह प्रयास करते रहिए, कल फिर एक नया सूरज निकलेगा और कल फिर हेलो फरमाइश में आप अपना जो फरमाइश है बता सकते हैं और अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। फिलहाल आपकी रेडियो सेट तक पहुंच रहा है मोहम्मद सिकंदर जी का पसंद किया हुआ ये गीत।

आज के इस हेलो फरमाइशी कार्यक्रम से अब मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी भावना को दो इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेलो जयपुर। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, इन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
2: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कार्यक्रमों की रूपरेखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद आदिवासी लोक संगीत सुनिएगा। कलाकार होंगे सुरजन मीणा और उनके साथी। दिन में 2:30 पर भी आप राजस्थानी लोक संगीत सुन पाएंगे। कलाकार होंगी राजप्रभा पनगड़िया। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 3:30 पर। और हमारे युवा श्रोताओं के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:00, जिसमें आप सुनेंगे सेगमेंट स्टेज शतायु, किन्हीं खास विषयों पर चर्चा, रोजगार सूचनाएं और फिल्म संगीत।

श्रोताओं, शाम 7 बजे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम भारती। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा बातचीत, पशु प्रजनन संबंधी समस्याएं और निराकरण। ये बातचीत होगी डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव से। इसी कार्यक्रम में आप मौसम की जानकारी, बाजार भाव की जानकारी, साथ ही लोकगीत भी सुन पाएंगे। शाम 7:30 पर किसान भाइयों के लिए ही कार्यक्रम होता है खेतीबाड़ी। आज सुनिएगा डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता से की गई बातचीत, उद्यानिकी फसलों में पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग। श्रोताओं, हम दिल्ली से रिले करेंगे संसद समीक्षा रात 8:30 पर प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक प्रोग्राम और रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश हम आपको सुनवाएंगे। इन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आप फिल्म संगीत सुन पाएंगे रात 10:30 पर, रात 8:15 पर, शाम 6:05 पर, शाम 5:30 पर। श्रोताओं, दिन में 1:05 पर और 12:40 पर भी आप फिल्म संगीत सुन पाएंगे। ये थी रूपरेखा हमारे आज के मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब समय है आदिवासी संगीत का। आइए सुनते हैं सुरजन मीणा और साथियों की आवाज़ में लोक संगीत।

0: तत्वादि राजा हरि चंद्र धनि अम नाम कुमाया परतो भी परोपकारी भूप हरि चंदता रूप गुण तप तेज विक मानिंदता सत्यवादि विद्वान न्याय कलवंदता तारावती नार सत्य में लोमे आनंदता।
1: अरे
0: था पूर्ण मास का चंद्र रोहितास प्रचंड अवधरज दानी
1: दानी
0: अवनितल कर

0: पूर्ण मासगा चंद रोहिताज प्रचंड उदरज दानी अवनीतल कर तार नहीं वी ख्यात भूप दा दानी रे भूप दा दानी।
1: अरे
0: बंदी जन करे असमान बढ़ावे नत करो द्वारे बजरे नोबत ब्राह्मण भेद उचारे।
1: अरे
0: हो नार हो के हो गया विदाता दाम विश्वामित्र मुनि कहे भूप सौरो मेरो काम खजाने की ताली देव घोड़े के लगाम।
1: अरे
0: साठ शस्त्र समरण करो रे।

0: पार्वती वो खाई फचाड़ मारती दाड़ कुकती जावे गोदी में लेकर लाश को यूं रुदन मचावे। तू जाग जाग सुत जाग फूटगा बागरे नाग था जेरी
1: अरे
0: पूछोगा से दागो लाल नींद ले गेरी नींद ले गेरी
1: अरे
0: गोदी तो लिया।

0: तब पार्वती खाए फचाड़ मारती दाढ़ कूकती जावे गोदी में लेकर लाश को यूं रुदन मचावे।
1: अरे
0: तू जागरे जागे सुत जागे फूटगा भाग नागता जेरी भूसोगा सदा को लाल नींद ले गहरी नींद ले गहरी।
1: अरे
0: धीरे धीरे रानी रोवे माली ने बताई है फाड़ा दा चीर लाश कमर की छिपाई है केले में लपेटे शमशान तक आई है। भू पेरी चंदा के पेरे में सिपाही रानी ने कुरुणा रुदन किया राजा को हाल सुनाया।
1: अरे
0: हर सतवादी राजा हरी

0: भाग आए रूट गया करे तार लाल रोई तास आज भाग गया भरे तार तारावते हाथ जोड़े रो रही जार जार आप खड़े बाप स्वामी करो दाग संस्कार।
1: अरे
0: तब भूप कहे दर दीर फाड़ दे चीर नारे तारा दे
1: अरे
0: अर मरगट का कर।

0: पर पार है फाड़ राजा चीर झूठी बातों में ना सारे।
1: अरे
0: लगता था सत्य स्वरूप अटलता भूपरे एक ने मानी नज तन का खींचे चीर नार तारा उतर रानी
1: रानी।
0: तब करने लागी नार हाइला चार हुगाड़ी काया।
1: अरे
0: हिल गया सकल ब्रह्मांड विष्णु के।

0: गया सकल भर मांड विष्णु के भर आया रोहिता जिंदावा प्रकट गोविंद हर्ष क्यों मंगे सारा काटा दुखे दंद देवर से फूल भर से फैलती सुगंध
1: अरे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत, कलाकार हैं सुरजन मीणा और उनके साथी। आइए सुनते हैं उनकी अगली और अंतिम प्रस्तुति।

0: स्वामी इंद्र ने सावा निकाला कर्म रेख दुख देने वो दशरथ का राम ने री रटता रहने दिन शेषर वो कारण कुण सोयो प्यारी आई हमारे देश
1: देश
0: एक लंक तुम्हारी लंका दहन छूटन को ते तीसर तो इरंडा पो देने को प्यारी काटन को बुझ बीस
1: अरे
0: सुन करे राण।

कुण बैकायो रानी मनोदर कुण को सुनियाई ज्ञान मोसमान को जोदा नहीं तू कर शंकर को ध्यान। रामचंद्र जग जोदा जाने जान।

0: राम चंद्र में बड़गणो जय लक्ष्मण जी ती कोर मोजू डाबो कोन पिया बन सब छणगारी फीको।
1: अरे
0: बरमा सुबर ले लियो मैं शो सदा शो शिव जीर मेघनाथ सुता शो बली चई पकड़ में गाऊ दो तपसी।
1: अरे
0: बर्मा शंकर जाप जप जव का पार शेष नहीं पाया
1: पाया
0: हर बाल बांका कर सकता हूँ पूर्ण।

0: चंद्र में बड़गण हो चेरे लक्ष्मण जी ती कोर मोजू डाबो को पियावन सब छण गारी फीको।
1: अरे
0: बरमा सुबर ले लियो मैं श्यो सदा श्यो शिव जी मेघनाथ सुत शोभली से पकड़ मंगाऊ दो तपसी
1: तपसी।
0: बरमा शंकर जाप जप जो का पार शेष नहीं पाया बालन बांका कर सकता रे भू पूर्ण ब्रह्म को आया।
1: अरे

0: वर्मा शंकर जाप जपचों का पार शेष नहीं पाया, तो बालन बांका कर सकता हूँ पूर्ण ब्रह्म कुहाया।
1: अरे
0: मैं ही वर्मा, मैं ही शंकर, मैं ही जगदीश कुआं, मारी बुजा का बड़सुराणी मैं गिरी कैलाश उठाऊं
1: उठाऊं।
0: हाथ जोड़ पिया अर्ज करूं, मत करो गमंडी की बात।
1: अरे
0: और सपना में मुन संकट भयो जद मुश्किल।

0: महाबली संग रीच बांध रहा, लंका ने तोड़ गिराया।
1: अरे
0: बक बक ज्यादा मत कर रानी, चुप बैठी रे मोहन
1: मोहन।
0: सर्प सोवनी लंका ने ये तोड़ने वालों कौन।
1: अरे
0: भूमि को तो भार उतार, सिर प्रभु कर सी काम तमाम। सर्प सोवनी लंका।

0: भूमि को तो बार उतार सी प्रभु कर सी काम तमाम, सर्प सोवनी लंका ने तोड़े गो लक्ष्मण राम।
1: अरे
0: पहली तो ने मार दियो रण कर दियो काम तमाम, ठीडो मोई बथाई दे कदे आशी लक्ष्मण राम।
1: अरे

0: डो मोई बथाई दे कदे आसी लक्ष्मण राम।
1: अरे
0: राक्षस सेना मार सिर खून ना को मचासी कींच।
1: अरे
0: सपनों सांसो है जालो मर।

कद आसी लक्ष्मण राम राक्षस सेना मारसी खूना को मचासी कीच सपनो सासो है जालो मारो दस पानन गए बीच अलबत तो बन का भिखारी दूजी वहां की प्राण प्यारी तीजा पार न सके लंका में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आदिवासी लोक संगीत, कलाकार थे सुरजन मीणा और उनके साथी।
1: अरे ज्ञानचंद, तुम बोतल हाथ में लेकर कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी इस वक्त?
2: अब क्या बताऊं हरी भाई, 3 दिन से पेट में गड़बड़ हो रहा है, एकदम से प्रेशर बनता है। इस वक्त भी प्रेशर बहुत जोर से बना हुआ है, इसीलिए भागकर जंगल जा रहा हूँ।
1: तो क्या तुमने अपने घर में शौचालय नहीं बनवाया?
2: कैसी बात करते हो हरी भाई, घर में और शौचालय? शिव शिव शिव शिव शिव, घर में शौचालय बना लिया तो घर की रिद्धि सिद्धि चली नहीं जाएगी।
1: ये भी कोई बात हुई ज्ञानचंद? अरे अपने सेठ धनालाल को ही ले लो, उनके घर में एक नहीं 4-4 शौचालय बने हुए हैं, और आज उनके घर में किस चीज की कमी है बताओ?
2: लेकिन हरी भाई।
1: अरे देखो ज्ञानचंद, अब लेकिन वेकिन छोड़ो और अपने घर में शौचालय बनवाओ। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने घर की औरतों के बारे में सोचो। और अब तो घर में शौचालय बनवाने के लिए सभी ग्राम पंचायतें अनुदान भी देती हैं।
2: ठीक है हरी भाई, मुझे आपकी बात सही लगती है, मैं आज ही सरपंच जी के पास जाता हूँ और इसकी सारी जानकारी लेता हूँ, लेकिन अभी तो मैं चलता हूँ।
1: अरे लेकिन
2: पेट में जोरों से गुड़गुड़ हो रही है।
1: अरे शौचालय जरूर बनवा लेना।
2: हाँ हाँ जरूर बनवा लूंगा।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन पा रहे हैं। और अब समय है फिल्म संगीत का।

आप सुन रहे थे दामिनी फिल्म का ये गीत। इस गीत में आवाज़ें थीं साधना सरगम और कुमार सानू की। श्रोताओं, प्रोग्राम का अगला गीत हम सुनवा रहे हैं डर फिल्म से। इस गीत को गाया है ए हरिहरन और लता मंगेशकर ने।

0: आप सुन रहे थे अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों का गाया हुआ गीत दीवाना फिल्म से। श्रोताओं, फिल्मी गीत आप पुनः सुन पाएंगे दिन में 1:05 से। इस दरमियान सुन लेते हैं देश दुनिया की खबरें प्रादेशिक समाचारों के तहत। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। दिन का 1 बजने वाला है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने पर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय एथलीट्स की प्रशंसा की। इसके बाद श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर लौटने और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने के कारण सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने खासाकोटी में प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। अब पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी भावनाओं को समझती है। श्री अठावले ने कहा कि राजस्थान में 3,84,00,000 जनधन खाते खोले गए हैं और 2,51,00,000 लोगों को मुद्रा योजना का लाभ मिला है। उन्होंने राजस्थान सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सभी वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए समिति गठित कर सर्वे कराने का सुझाव दिया और कहा कि इस संबंध में वे मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि समाज में अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंगदान मानवता के लिए अपने आप को समर्पण करने से जुड़ा महादान है। राज्यपाल आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान की सबसे बड़ी बाधा मनुष्य के भीतर का डर है। इसे भगाने और इस संबंध में लोगों को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने अंगदान के साथ स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी अभियान चलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में श्री बागड़े ने अंगदान जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाले चिकित्सकों और अंगदान जागरूकता प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों

0: विद्यार्थियों को सम्मानित किया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आगामी पर्यटन सत्र के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पर्यटन सत्र के तहत 31 दिसंबर तक की सफारी बुकिंग 1 अगस्त से की जा रही है। अग्रिम बुकिंग को लेकर देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह है। नए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पर्यटक आसानी से अपनी सफारी बुक कर रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: एडवांस ऑनलाइन बुकिंग के पहले 2 घंटे में ही 40,000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग की, जिसमें 14,000 विदेशी पर्यटकों के टिकट बुक हुए। प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर करीब 20 लाख संदिग्ध अटैक प्रयासों, 150 से अधिक संदिग्ध आईपी और 2 करोड़ से अधिक फर्जी अनुरोधों को सुरक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक रोका। 200 से अधिक विदेशी पर्यटकों ने स्वयं की ही आधिकारिक पोर्टल पर अपनी सफारी बुक की है। इसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड सहित कई देशों के पर्यटक शामिल हैं। भारी डिजिटल ट्रैफिक के बीच पोर्टल का सुचारू संचालन इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: सावन के पहले सोमवार पर आज प्रदेश के प्रमुख शिवालयों सहित अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे के साथ शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं। आज भगवान शिव का जल, दूध, बिल्व पत्र और गंगा जल से विशेष अभिषेक किया जा रहा है। कई मंदिरों में भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। जयपुर के प्रमुख ताड़केश्वर महादेव और झारखंड महादेव सहित झुंझुनू के प्रसिद्ध बावलिया के बगीचे स्थित शिव मंदिर, अलवर के त्रिपोलिया मंदिर, बालोतरा के हल्देश्वर महादेव, सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर महादेव और बारा के मनिहारा महादेव मंदिर में कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं,
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से एक बार फिर से सुनते हैं फिल्म संगीत। लीजिए गीत सुनिए गुलाम फिल्म से, आवाजें हैं आमिर खान और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे थे गुलाम फिल्म का गीत, और अब फिल्म संगीत की अगली पेशकश अभिजीत और सौम्या राव की आवाज़ें धूम फिल्म के लिए।

ये जवानी है दीवानी, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान का गाया हुआ। और अगली आवाज़ें अरिजीत सिंह के साथ हैं निकिता गांधी, फिल्म का नाम है तू झूठी मैं मक्कार।

तू झूठी मैं मक्कार, आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी का गाया हुआ। और अब प्रोग्राम के आखिर में सुनिए अलका याग्निक और साथियों को धड़कन फिल्म के लिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे अलका याग्निक और साथियों को धड़कन फिल्म के लिए। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब खत्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कुछ पलों में आप सुनेंगे ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम पणिहारी।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।

0: કાણીહારી કાર્યક્રમ સુણવાવાલા સગલા શ્રોતાઓને આપ કી સકી તમારા ડાકો ઘણો ઘણો રામ રામ સા ખમા ગણી. માં કી મમતા, માં કો પ્યાર, શિશુ જીવન કો પહેલો આધાર, સ્તનપાન છે અમૃત સમાન, ઈસુ ખીલે છે હર નન્ના કા પ્રાણ, પહેલો પીલો ગાઢો દૂધ બનાવે જીવન ને મજબૂત, રોગા સે રક્ષા કરે છે, સ્વસ્થ ભવિષ્ય ગળે છે. જી હા શ્રોતાઓ, આજ આપા વાત કરેલા વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ કી, જીને 1 અગસ્ત સે 7 અગસ્ત તક મનાવે જાવે છે. આર ઇકો ઉદ્દેશ છે માવાને સ્તનપાન કા મહત્વ કા બારામાં જાગરૂક કરનો, આર નવજાત શિશુ કે બહેતર સ્વાસ્થ્ય ને બઢાવણો. સ્તનપાન શિશુ કો પહેલો આર સબસે મહત્વપૂર્ણ આહાર છે. શિશુ કે જન્મ કે બાદ નિકલવા વાલો ગાઢો પીલો દૂધ જેને કોલેસ્ટ્રોમ ભી કહો જાવે છે, શિશુ કે લીએ અમૃત કે સમાન હોવે છે. યુ બચ્ચા કી રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતાને બઢાવે છે, આર કઈ બીમારિયા સે બચાવે છે. જન્મ કે 6 મહિના તક કેવલ માં કો દૂધ હી દેણી ચાહીજે, આર ઈ કે દોરાન પાણી યા અન્ય કોઈ ભી આહાર ને દેણી ચાહીજે. જન્મ કે પહેલા 1 ઘંટા કે ભીતર સ્તનપાન શરૂ કરા દેણી ચાહીજે, આર 6 મહિના કે બાદ પૂરક આહાર શરૂ કરના, ઈ કે સાથે હી 2 વર્ષ યા ઈસુ ભી અધિક સમય તક આપ સ્તનપાન જારી રાખ શકો છો, જો આપણા લી ભી લાભકારી હોય છે આર ટાબર કે લી ભી લાભકારી હોય છે. શિશુને સ્તનપાન કરાવવા શું ઘણા ફાયદા હોય છે, જેસા કે શિશુ કો શારીરિક આર માનસિક વિકાસ બહેતર હોય છે, સંક્રમણ, દસ્ત, ન્યુમોનિયા જેસી બીમારિયા કો ખતરો કમ હોય છે, આર માં આર બચ્ચા કે બીચ ભાવનાત્મક સંબંધ મજબૂત હોય છે. માં કે સ્વાસ્થ્ય કે લી ભી સ્તનપાન લાભદાયક હોય છે. વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ આપણને સંદેશ દેવે છે કે હર નવજાત શિશુ કા જીવન કી અચ્છી શરૂઆત દેવા કે લીએ સ્તનપાન ને બઢાવા દેવા આપણ સભી કી જિમ્મેદારી હોય છે, કે પરિવાર આર સમાજ મે મિલકર માતાઓ કો સહયોગ કરની ચાહવે, તાકી પ્રત્યેક બચ્ચા કો સ્વસ્થ આર સુરક્ષિત ભવિષ્ય બન સકે. તો શ્રોતાઓ, સ્તનપાન સપ્તાહ રી અપણ વાત કરી રહ્યા હા, ઓર અબ સ્ટુડિયો મે આ ચુકી હૈ અભિલાષા બેન, ઓર યે જાણકારી દિલારી હૈ આપણે સ્તનપાન સપ્તાહ પે. તો આવો સા સુના યા મહત્વપૂર્ણ જાણકારી.
1: તો બેનો, કાર્યક્રમ મે જાણકારી દેવા ખાતિર આપણે સાથે હૈ ડોક્ટર સોનાલી શર્મા, જો હૈ મહિલા રોગ વિશેષજ્ઞ, એક નિજી અસ્પતાલ મે કાર્યરત હૈ, ઓર યહાં સે અપની બાતચીત કો વિષય રહેલો વિશ્વ સ્તનપાન દિવસ કા માથે. તો ડોક્ટર સાહેબ, આપકો કાર્યક્રમ મે ઘણો ઘણો સ્વાગત. રામ રામ સા.
2: આકાશવાણી કે સભી શ્રોતાઓ કો મેરા નમસ્કાર.
1: જી તો સા, દેખો સ્તનપાન સપ્તાહ કા બારામે આપા બાત કરી રહ્યા છે, ઓર દેખો સબ આપા જાણા છા કે ઈશ્વર કી બનાઈ ઈ સંરચના મે જો સબસે સુંદર દેન છે વા યાઈ છે કે આપની બેના માં બન સકે છે. માં બનવો અપને આપ મે એક ગૌરવ કી વાત છે. માં બનર આપણા બચ્ચાને સ્તનપાન કરવાવો ઉસે ભી બડા ગર્વ કી વાત છે. તો આપણ સબ સ્તનપાન સપ્તાહ મના રહ્યા છો, ઓર સ્તનપાન કા મહત્વ ને દેખતા હુયા આપસે યુહી જાણવું ચાહવા કે સ્તનપાન સપ્તાહ ને મનાવા કો ઉદ્દેશ્ય કઈ છે.
2: સબસે પહેલા જૈસા કે આપને કહા, એકદમ મેં ઉસી વાત સે શરૂઆત કરના ચાહુંગી કે ભગવાન ઓર પ્રકૃતિ દ્વારા માતાઓ કો મહિલાઓ કો દિયા હુઆ યે એક એસા આશીર્વાદ હૈ જિસમે પ્રસવ કે બાદ મે માં ઓર શિશુ કે બીચ કા એક એસા જોડાવ હો જાતા હૈ ભાવાત્મક, જો આગે તક ઉસકે પૂરે જીવન મે બચ્ચે કે લિયે એક ઉર્જા ઓર શક્તિ કા સ્ત્રોત હોતા હૈ. તો હર વર્ષ 1 સે 7 અગસ્ત કો હમ વિશ્વ સ્તનપાન દિવસ કે રૂપ મે મનાતે હૈ. इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पहली चीज इसके बारे में जागरूकता फैलाना कि स्तनपान का महत्व क्या है, इसके क्या फायदे हैं, कितने समय तक हमें कराना ही चाहिए और इसको मिलने वाले कितने लाखों इसके फायदे हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करें और क्या समस्याएं आ रही हैं उनको कैसे ठीक करा जा सकता है, और क्योंकि अब कामकाजी महिलाएं बढ़ गई हैं तो कैसे वो भी इस स्तनपान को एक सामान्य तरीके से लेकर अपने काम और स्तनपान दोनों को ही एक बैलेंस बना के और फिर अपने काम को आगे बढ़ा सकें.
1: जी सर.
2: तो सबसे पहले बात करते हैं शिशु की, जन्म जिसने लिया है, तो प्रसव के बाद निकलने वाला जो पहला दूध होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम के नाम से कहते हैं, अक्सर वही है जो कि उसके हम अमृत कहना, अगर मैं कहूंगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो एक गोल्ड की तरह है जिसे हम लिक्विड गोल्ड कह सकते हैं. वो बच्चे के लिए पहला टीके के जैसा है क्योंकि उसमें अनगिनत ऐसे तत्व हैं, रासायनिक तत्व हैं जो कि बच्चे को एक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, उसको संक्रमण से बचाते हैं, उसके अंदर आने वाले समय में एलर्जी, सांस की बीमारी, निमोनिया, फेफड़ों का इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों से उसकी रक्षा करते हैं. साथ ही जो दूध होता है माँ का वो बच्चे की आंतों के विकास के लिए भी बहुत लाभदायक है। पुराना मल धीरे धीरे आंतों से निकलता है जैसे जैसे बच्चा दूध पीता है। साथ ही आप देखेंगे कि दिन बच्चों ने अपनी माँ का दूध लिया होता है वे पूर्ण शारीरिक और मानसिक जो है उनका विकास संपूर्ण तरीके से होता है, और जो आगे बढ़ के भी आगे जाके भी जब वो अडल्ट होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तब उनके अंदर होने वाली दूसरी तरीके की बीमारियां जैसे मधुमेह या उक्त रक्तचाप या फिर मोटापा, ये सब भी उनमें कम देखा गया है जिन्होंने माँ का दूध लिया है। साथ ही जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं जिन्हें हम प्रीटर्म बेबीज कहते हैं, उन शिशुओं में ये देखा गया है कि माँ का दूध जो है वह औषधि का काम करता है। यदि वह माँ का दूध लेते हैं तो धीरे धीरे देखा गया है उनका वजन बढ़ता है, उनमें होने वाली सांस की तकलीफ जो है वो कम होती है। इसी संक्षेप में एक हम करते हैं जैसे जिसे कहते हैं कि कंगारू मदर केयर, कि जब जो भी नवजात शिशु होते हैं जो कि समय से पहले पैदा हुए हैं उनको हम इतना माँ और बच्चे को दोनों को स्पर्श, एक दूसरे को एक साथ स्पर्श में रख के, शरीर से स्पर्श से रख के, और फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ दिया जाता है जिससे कि बच्चे के शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध मिल सके और उसकी गर्माहट से उसका जो है विकास हो सके। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी इसके अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो जैसे जैसे एक माँ कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ है परंतु एक बच्चे के साथ में एक माँ का भी जन्म होता है, तो जो ज़्यादातर जो पहली बार माएँ बन रही हैं वो अक्सर देखेंगी कि कई बार समस्या होती है दूध पिलाने में, तो जैसे जैसे वो दूध पिलाती हैं वैसे वैसे उनकी जो बच्चेदानी है वो सिकुड़ती है और नीचे यूनि मार्ग से होने वाला जो रक्त स्त्राव है वो कम होता है। दूसरी चीज़ कि जैसे स्तनपान करते हैं तो उसमें आने वाले समय में देखा गया है कि अंडाशय का और स्तन के कैंसर का रिस्क भी जो है उसका खतरा कम होता है। तीसरी बात ये कि ये स्तनपान करने से हमारी हड्डियों को भी मजबूती मिलती है, और डिलीवरी जो होती है, जो गर्भावस्था होती है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के अंदर काफ़ी जगह जो है चर्बी जमा हो जाती है, वो चर्बी जो है बच्चे को पोषण देने में काम आती है, लेकिन प्रसव के बाद में यही चर्बी जैसे जैसे स्तनपान करती हैं महिलाएं वैसे वैसे ये चर्बी को कम करने में भी मदद करता है। और चर्बी यदि कम होती है तो आगे जाकर वही समस्याएं जैसे मोटापा, मधुमेह, उक्त रक्तचाप, ये सब की समस्याएं माताओं में भी कम हो जाती हैं। तो काफ़ी ही सारे फायदे हैं स्तनपान करने का, और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बच्चे के साथ में एक जुड़ाव महसूस करती हैं, उनका मन करता है कि हम अपने शिशु को दूध पिलाएं बार बार। इससे प्रसव के बाद होने वाले अवसाद में भी फायदा मिलता है कि उस महिलाओं में अवसाद और डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं वो कम देखने।
1: तो देखो आपने देखा था ना कि जो स्तनपान है वो माँ और बच्चा के बीच में एक ऐसी कड़ी है जिसे वे दोनों आपस में एक जो कहवे छे ना कि मानसिक भी कह सका छा और भावनात्मक रूप से भी एक दूसरा से जुड़ा हो जाओ छे। तो सब बात करा आपा कि स्तनपान से संबंधित जो चुनौतियां छे वे कौन कौन सी अपने लिए देखने आओ छे।
2: जी, ये बहुत ही ज़रूरत है कि हम इस बारे में बात करें क्योंकि सभी जगह पे इसके बारे में जागरूकता नहीं है। कई महिलाएं सोचती हैं कि हमने पहली बार जब दूध पिलाया था तब नहीं आया था तो दूसरी बार भी नहीं आएगा, तो इस तरह की कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि नहीं आपको दोबारा आप जब माँ बनती हैं तो भी दूध उतने ही आने की संभावना है जितनी की पहले समय में थी। अगर पहले समय में किसी कारणवश नहीं आया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार भी नहीं आए, तो जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। जन्म के पहले एक घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। दूसरी बार ये कि हम इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि महिला को अपने परिवार के समर्थन की भी बहुत ज़रूरत है। ये बहुत नाजुक समय होता है, वह भी एक प्रसव की पीड़ा से गुजरी है और साथ में एक नए बच्चे की, नए शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी है, तो इसमें घर का माहौल जैसा पॉजिटिव रहेगा व्यवहार और जैसा उसके प्रति ममता और उसके प्रति उसको हर चीज़ में समर्थन देंगे तो इससे महिला को भी ऐसा लगता है कि हाँ सब मेरी देखभाल अच्छी कर रहे हैं तो मुझे अपने शिशु की और अच्छी देखभाल करनी है।
1: मतलब आपा देखा जाना कि कई बार की जो बहन अपनी नई नई माँ बने छे तो वहाँ में कई तरीका का बदलाव आपने खुद में भी देखभाल में आया छे,
2: क्योंकि जैसे जी मैंने कहा कि बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से एक माँ का भी जन्म होता है, तो उसके लिए ये होने वाले बदलाव में अब जैसे ज़्यादातर ये देखा गया है कि नींद की कमी,
1: जी
2: या फिर कोई उन्हें दर्द है जिसके बारे में वो बता नहीं पा रही है। शरीर भी हमारा जो है वापस गर्भावस्था से पहले वाली स्थिति में आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लेता है। तो महिला इन सब चीजों से गुजर रही है, वो अपने आप को भी ठीक रखना चाह रही है और अपने शिशु के लिए भी सर्वोच्च करना चाह रही है। ऐसे में चिड़चिड़ापन और ये जो है ये शुरुआत के दिनों में आना स्वाभाविक है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा उसको अच्छा समर्थन दें, उसका अच्छे से उसकी भी देखभाल करें, उसको सपोर्ट अच्छा सा करें। यदि बच्चा सो रहा है तो कोशिश करें कि माँ भी उसी टाइम पे अपनी नींद पूरी कर ले। अक्सर ये होता है तो शिशु सोया उसी के तुरंत बाद माँ जो है काम में लग जाती है, तो इस कारण नींद नहीं पूरा होना भी एक चिड़चिड़ापन का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिला का नई नई माँ का जो है उसका नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है।
1: स्तनपान करवाता समय कौन कौन सी ऐसी समस्याएं छे जो अपनी बहना ने सामनो करनो पड़े छे?
2: तो हम अपनी ओपीडी में जब देखते हैं महिलाओं को तो कई बार वो आती हैं कि सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल प्रसव हुआ है, तो उन्हें लगता है कि अभी शुरुआत में तो दूध आ नहीं रहा है। जो पहला जो जितनी भी पर्याप्त मात्रा में दूध आ रहा है पहले में वो बच्चे के लिए पर्याप्त है, वह कम नहीं है। शुरुआत में बच्चे की भी क्षमता कम ही होती है, तो इसलिए जो निकलने वाला जो अमृत है, जो लिक्विड गोल्ड है, वो अपने आप में पूरा पौष्टिक आहार है बच्चे का। कई बार महिला ऐसे कहती हैं क्योंकि जो निप्पल जो है वहाँ पे सपाट है या फिर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है तो बच्चा जो है स्तन से चिपक नहीं पाता, तो इस उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको समझाते हैं कि कुछ साधन के प्रयोग से हम उनको समझाते हैं कैसे वो अपने निप्पल को बाहर की तरफ खींच सकती हैं। उसमें एक हेल्प करते हैं उनको काउंसलर के साथ में और नर्सों की मदद से उनको समझाते हैं कि किस तरीके से वो ये स्वयं कर सकती हैं, और ऐसी कुछ मशीन भी आने लग गई हैं जिससे कि वो निप्पल को बाहर की तरफ खींच सकते हैं। कई बार महिलाएं इस समस्या से भी आती हैं कि सूजन आ गई है स्तन में और लाल हो गया है और हाथ लगाने से एकदम दर्द हो रहा है, उसको हम मेडिकल भाषा में एंगॉर्जमेंट कहते हैं। तो इसलिए उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसका मुख्य कारण तो ये है कि या तो दूध पूरा बच्चा खींच नहीं पा रहा है और अंदर दूध रह गया है, इसीलिए जो है सूजन आ जाती है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप हर एक स्तन को खाली करें और पूर्ण रूप से खाली करें। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट एक दाएं साइड पिलाया और फिर 10 मिनट आपने बाएं साइड पिलाया, ऐसा ना करें। एक बार में पूरा एक साइड का स्तन से दूध पिलाएं और पिलाने के बाद में पहले तो उसमें जैसे गर्म पानी के अंदर तौलिया डुबोकर और फिर उससे सेक कर लें, फिर पूरा दूध पिला दें। चाहे वो आप स्तनपान के दौरान पहलाएं या आपको ऐसा दर्द लग रहा है तो आप खींच के अपने बाहर हाथ से मल के या किसी पंप की मदद से बाहर निकाल के भी पिला सकते हैं, और बाद में आप फिर एक बर्फ के से सेक कर लीजिए उसके ऊपर। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि वो सूजन जो है वो कम हो जाएगी और दूध का जो फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये जरूर करें अगर आपके सूजन आती है तो। कई बार महिला ऐसे कहती है कि दूध कम आता है और बच्चा लेता नहीं है, तो आप इस चीज की चिंता मत करिए। सब बच्चों की जो है वो अलग अलग होती है भूख। अगर बच्चा 15 से 45 मिनट के बीच का समय नॉर्मल माना जाता है, अगर कई बच्चे 15 मिनट दूध लेके भी सो जाते हैं, कई 40 मिनट या आधा घंटे तक भी दूध लेते हैं, तो आप उसकी चिंता न करें और समय समय पर बस ये ध्यान रखें कि आपके दोनों स्तन बराबर खाली किए जा रहे हैं। प्रसव के बाद में जो आहार होता है, तो पहले के ज़माने में हम ऐसे सुनते हुए आए हैं कि जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि सिर्फ ये खाना है और ये नहीं खाना है। हम चाहते हैं कि महिला को पूरा पौष्टिक आहार मिला जाए, रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही छाछ फल हरी पत्तेदार सब्जी, वो हर चीज़ खा सकती है। एक पौष्टिक आहार का मतलब है जिसमें आपका फैट भी अच्छा है, जिसमें आपका प्रोटीन भी अच्छा है, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा है, तो हर चीज़ जो है बराबर मात्रा में महिला को मिलती रहे, उससे अच्छा दूध बनेगा। और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन भी बहुत ज़रूरी है कि दूध में जो है 90% पानी ही है। तो इसीलिए कई बार महिलाएं ऐसे कहती हैं कि हमारी सास ने या मम्मी ने मना किया है कि पानी थोड़ा कम पियो, ये एक भ्रांति है और इसका बिल्कुल ही हम इसे नहीं मानते हैं। आप कोशिश करिए कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और पौष्टिक आहार पूरा लें।
1: तो अपना जो छोटा टाबर हुए चाहे कहवे ना कि भाई 6 महीना की उम्र तक माने पानी न पिलाना है, तो यह कहीं चीज सही है या गलत है?
2: जी बिल्कुल, जो हमारी विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो WHO है वो यही कहता है कि हमें बच्चे को शिशु को नवजात शिशु को 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही देना है, क्योंकि आप जो भी खाना देना चाह रहे हैं उसको, वो सब उस दूध के अंदर है। आप पानी है उसमें, उसमें हार्मोन है, उसमें ग्रोथ के तत्व हैं, बच्चे के विकास के तत्व हैं, बच्चे के लिए पूरक है, वो अपने आप में एक पौष्टिक बच्चे का आहार है। तो यदि हम 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ दूध ही पिला रहे हैं तो और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने के बाद में आप स्तनपान चालू रखें, 2 साल तक की आप स्तनपान चालू रखें, और इसी बीच 6 महीने बाद धीरे धीरे धीरे बच्चों को ऊपर से देना शुरू कर सकते हैं, पर स्तनपान को आप चालू ही रखें।
1: जी
2: जी देखिए, वैसे तो अधिकतम टाइम लिमिट कोई है नहीं कि कब तक पिलाना चाहिए, पर ये कहते हैं कि 2 साल के बाद में धीरे धीरे, हम जिसको कहते हैं वीन ऑफ करना, कि धीरे धीरे बच्चे को माँ के दूध से कम करके और पूरे बड़े के जो आहार होता है उस पे ले आना से।
1: जी।
2: अगर बच्चे दूध पीते ही रहेंगे तो माँ मेंटेन नहीं कर पाती है इतने
1: जी,
2: समय तक दूध
1: जी।
2: पिलाना, उसमें फिर कमजोरी आने लग जाती है, उसके साथ में उसका कैल्शियम भी कम होने लग जाता है। तो इस भी बात का ध्यान रहे कि आप पिलाइए, पर उसी टाइम पे माँ के कैल्शियम का भी ध्यान रखिए, माँ को कैल्शियम मिलता रहना चाहिए, पौष्टिक तत्व की कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो शुरुआत के दिनों में, पहले 2-3 दिनों में जो आता है, वो कोलोस्ट्रम जिसे हम कहते हैं, वो एक बच्चे के लिए सबसे बढ़िया, अगर मैं कहूँ तो वही है जो कि उसके पूरे जिंदगी का जो है सार है उस दूध के अंदर ही है। तो वो दूध कभी ना फेंकें, वो दूध कभी ना निकालें, वो बच्चे को देना ही देना है। और जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर ही बच्चे को माँ की छाती के लगा के उस दूध का सेवन कराना चाहिए। देखिए, माँ को यदि दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है जबकि वो स्तनपान कराती है, पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि उसको कोई तकलीफ है तभी वो दवाई ले रही है। दूसरी बात ये कि दवाई लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तो ही बच्चा स्वस्थ होगा, अगर माँ स्वस्थ नहीं होगी तो दूध नहीं पिला पाएगी और बच्चा स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो आप जब भी बीमार हो तो एक डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, आपके जो डॉक्टर होंगे वो आपको ज़रूर बताएंगे कि कौन सी दवा हम स्तनपान के दौरान दे सकते हैं। और आजकल बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि स्तनपान के टाइम पर देनी सही है और सेफ है, उससे नुकसान नहीं होता है। स्तनपान के टाइम पे माँ ज़रूर दवाई ले सकती है, यदि ज़रूरत है तो वो दवाई कम समय के लिए दी जाती है और वो बच्चे को नुकसान नहीं करती है।
1: जी। और साथ देखो, कई जगह ऐसा भी मानना चाहिए कि यदि स्तन को आकार कम छे तो महिला वहाँ ये मानना चाहिए कि दूध की मात्रा भी वहीं से कम होली, तो यू मानबू सही है या ई में भी कोई भ्रांति है?
2: ये भी एक तरह की भ्रांति ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जो स्तन होता है, स्तन के अंदर 2 तरह की टिश्यू होती है, एक वो होती है जो कि फैट है जिसे हम चर्बी कहते हैं, और एक वो होती है जो दूध बनाती है। तो दूध बनाने वाली जो आकार होता है, वो आकार कम या छोटा या बड़ा जो है वो उस चर्बी के वजह से होता है। जो दूध बनाने वाली टिश्यू है वो सभी समान है, सभी में छोटा स्तन भी उतना ही दूध बना सकता है जितना कि बड़े आकार का स्तन। तो ये एक भ्रांति ही है
1: कि बड़ा जो बुजुर्ग हो बेचे अपने घर में वे यह कह बेचे कि अगर बच्चा ने उल्टी दस्त हो रहा है तो माँ को दूध न पिलानो चाहिए, कहीं ई में भी कोई भ्रांति है या चीज सही है?
2: उसके विपरीत मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बच्चे को दस्त है तब उसे ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाते रहें, क्योंकि नहीं तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, और क्योंकि वो नवजात शिशु है उसका 90% पानी जो है आपके दूध से ही आ रहा है, इसलिए दूध पिलाना बिल्कुल बंद नहीं करें। बच्चों में होने वाले दस्त कुछ तो सामान्य होते हैं और कुछ जो है जिसके लिए कई बार दवाई की जरूरत पड़ती है। तो अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे पूछें और वो आपको एकदम सही राय देंगे, आप अपने से निर्णय न लें और बच्चे को दूध पिलाना बंद न करें।
1: और सर देखो, कई बार देखभाल में आवचे कि यदि ऑपरेशन से अपने प्रसव हो रही हो तो उस समय में कहवे छे कि भी जो टाबर की माँ छे बीके दूध कम उतरे छे, तो इको भी कोई कारण हो सके छे?
2: देखिए, दूध कम और ज्यादा होना जो है वो बच्चे के दूध पीने की क्षमता पे है। दूध बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को छाती के लगा के जितना बच्चा दूध पिएगा उतना ही नया दूध बनेगा। ये बहुत ही सरल सी भाषा में मैं कह सकती हूँ। सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल प्रसव हो, 2 से 3 दिन का टाइम लगता है पूरी हमारी जो स्तन को पूरी तरीके से दूध बना के, और जैसे जैसे बच्चा पीता जाता है वैसे वैसे नया दूध बन के स्तन के अंदर आता जाता है।
1: जी।
2: क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि कामकाजी महिलाएं एक बार जब प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो उसके बाद में एक ब्रेक ले लेते हैं अपने काम से, और दोबारा काम शुरू करने से पहले वो ये सोचते हैं कि हमें बच्चे को दूध पिलाना बंद करना पड़ेगा नहीं तो बच्चे को असर होगा। इसके विपरीत हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जहाँ पे भी आप काम करें, चाहे वो स्कूल हो, आप स्कूल टीचर हैं, या आप किसी ऑफिस में जाती हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, या फिर आप कहीं पे भी, तो वहाँ पे स्तन पान के लिए एक उपयुक्त स्थान निश्चित होना ही होना चाहिए। और आजकल काफ़ी जगह आपको ये मिलेगा भी। हम रेलवे स्टेशन पे भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम, एक स्तनपान कक्ष होता है। तो ये आजकल की व्यवस्था में आप जहाँ पे भी काम कर रही हैं आपको वहाँ पे एक ऐसा कक्ष, ऐसा कमरा ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं है तो आप इसकी डिमांड करें, आप इसके बारे में बोलें। पर स्तनपान करना बंद न करें, अपने शिशु को दूध पिलाना बंद न करें, और कामकाजी महिलाएं इस तरीके से इससे बच सकती हैं। पणिहारी सुनने वाले सभी महिलाओं को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि ये हमें भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, एक वरदान दिया है। आपके मातृत्व के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप अपने बच्चे को दूध पिला पा रहे हैं। तो बस ये चीज़ों का ध्यान रखें कि शिशु के होते ही 1 घंटे के अंदर अंदर उसे दूध, माँ का दूध मिलना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में आप अपने बच्चे को दूध पिलाते रहें। दूध पिलाने से पहले हर बार आपको अपने स्तन को साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पसीना है, चिपचिपाहट हो गई है और बदबू आ रही है, तो आप अपने स्तन को सामान्य पानी से साफ करके बच्चे को दूध पिलाइए। बीमार होने की स्थिति में दूध पिलाना बंद न करें। बच्चे को दस्त हो रहे हैं उस स्थिति में दूध पिलाना बंद न करें। कोशिश करें कि केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाएं पहले 6 महीने तक। जब आप दूध पिलाएं तो उसमें उस टाइम पे बच्चे की पोजीशन का भी अच्छे से ध्यान रखें कि दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर, कंधा और जो जांघ है वो एक सीधी लाइन में हो और नाक बंद ना रहे, क्योंकि बच्चे को बीच में सांस भी लेता है जब बच्चा दूध पीते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि नाक बंद ना हो। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो अपने आंगनवाड़ी जाकर अपने डॉक्टरी से सलाह ज़रूर लें, वो 100% आपकी मदद ज़रूर करेंगे और कैसे आप अपने स्तनपान को बढ़ा सकते हैं उसकी राय आपको ज़रूर देंगे।
1: तो बेटा कार्यक्रम में जानकारी देबा खातिर अपने साथ चीफ डॉक्टर सोनाली शर्मा, महिला रोग विशेषज्ञ और ये एक निजी अस्पताल में कार्यरत है। और यहाँ से अपनी बातचीत को विषय रहे हो स्तनपान सप्ताह, विषय माते स्तनपान को महत्व। तो डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में पधारिया और इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी आपका माध्यम से माँ की बहना तक पूगी। इनके तानी आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से घना मानसु धन्यवाद साहब।
3: श्रोताओं बार आपने अभिलाषा बहन ने इतनी अच्छी जानकारी दिलाई डॉक्टर साहब से, तो यानी देवा धन्यवाद और धन्यवाद सर। सुनावा एक लोकगीत।

ये लोकगीत सुने जो जरूर पसंद आए होगो। और अब बात करना चहलुम की। चहलुम एक महत्वपूर्ण स्मृति दिवस है। यो इमाम हुसैन और माका सात्या की शहादत के 40वें दिन मनायो जावे छे। इमाम हुसैन की शहादत मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में हुई थी। चहलुम को उद्देश्य सत्य न्याय साहस मानवता और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की भावना ने याद करनो छे। ये दिन श्रद्धालु मस्जिद और इमाम बाड़ा में विशेष मजलिसा को आयोजन करे छे। इमाम हुसैन के बलिदान ने याद करे छे। कई स्थान पे जुलूस भी निकाले जावे छे और गरीब और जरूरतमंदा ने भोजन और पानी दियो जावे छे। चहलुम आपाने सच्चाई इंसाफ धैर्य त्याग और मानवता के मार्ग पे चालबा की प्रेरणा देवे छे। और श्रोताओं एक साथ ही आज छे 3 अगस्त और 3 अगस्त के दिन ही आज मैथिली शरण गुप्त जी की आज जयंती भी छे। ये भारत का महान कवि और साहित्यकार छा। यारो जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी जिला चीर गाँव में हुयो हो तो और याने हिंदी साहित्य में विशेष स्थान बनायो और ये देश प्रेमी भी था। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी करा शत शत नमन। और इनके साथ ही अब पणिहारी कार्यक्रम को टेम भी पूर्व बजा रही है। तो आपकी सखी तमरहड़ा ने दो आ गया राम राम सा।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम पणिहारी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में। इन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: के पैराथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ा

0: करने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
3: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं।
4: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
5: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
6: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। कलाकार हैं राजप्रभा पनगड़िया।

आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का ये दो गाना मुकेश और लता मंगेशकर के स्वर में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है ससुराल और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत सावन की घटा फिल्म से। और अब अगला गीत सुनिए सहरा फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

सागर का गाया हुआ ये गीत शबनम फिल्म से। अगला गीत श्रोताओं सुनिए, फिल्म का नाम है शागिर्द, आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत शहनाई फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुंचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे?
2: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार
0: जी। और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है?
2: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
2: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओं, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
2: एक और ज़रूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800-44-0559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
2: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी...

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।
3: उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
0: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
3: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था। वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
0: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
3: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
0: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थीं, उनमें जो शिक्षित थीं, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
3: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
0: मां तो मां होती है बस। वैसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग ना होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
0: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
3: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की, और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माता जी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
3: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। 8वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
1: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
3: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
1: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
0: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी उज्जवल अक्षरों में लिखा जाएगा।
3: काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।
4: कहते हैं अलविदा हम अब इस

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

राग शंकरा। राग शंकरा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है। परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व शाड़व है। इसका वादी स्वर गंधार यानी ग है और संवादी स्वर निषाद अर्थात नी है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग शंकरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए

अब प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सिर्फ तुम फिल्म का ये दो गाना।

बापी लहरी का गाया हुआ ये गीत आप सुन रहे थे सत्यमेव जयते फिल्म से। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से सुन रहे हैं। आइए अगला गीत सुनते हैं सुहाग फिल्म से। आवाज़ें हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा की।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के स्वर में सिंदूर फिल्म का एक गीत। फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से सुन रहे हैं। लीजिए अगला गीत सुनिए। ये गीत है सोल्जर फिल्म से सोनू निगम का गाया हुआ।

साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी।

अभी आपने सुना फिल्म जैकपॉट का गीत, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत को लिखा था तुरजार ने और गाने को कंपोज किया है तोशी ने। चलिए अगला गीत सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म यारियाँ का गीत। गीत को गाया है मोहम्मद इरफान ने और गजेंद्र वर्मा ने। गाने के बोल लिखे हैं मिथुन ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अभी थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 101.2 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल। शाम के बज गए हैं 5 और 5 बजते ही मैं खुशबू लेकर आती हूँ हमारे युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और जब बात युववाणी की करी जाए तो एक बात हमें देखने को मिलती है, हम युवाओं को ना बारिश बहुत अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से सिर्फ युवाओं को ही नहीं बल्कि सभी को बारिश अच्छी लगती है। और फाइनली ये जो बार बार हमारे यहाँ एक बार बारिश होके वापस से धूप, फिर बारिश, फिर वापस से धूप, ये जो ट्रांजिशन चल रहा था ना, अब ये थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फाइनली हमारा ये जो पिंक सिटी है इसमें बारिश आना शुरू हो चुकी है, जो कि फाइनली हमारे लिए गर्मी से तो एक राहत है ही, लेकिन घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। साथ ही में लोगों को एक राहत भी मिलती है इस सीज़न में। और जब बात आज की करी जाए तो आज एक और ख़ास बात है जो लोग मनाते हैं, यानी कि जो सावन का सोमवार होता है वो लोग मनाते हैं और उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है। और उसी पे ही अगर बारिश हो जाए तो माहौल और भी ख़ास हो जाता है। और देखा जाए तो इसकी एक इम्पॉर्टेंस भी है। मानते तो लोग यही हैं कि अगर हम सावन के सोमवार में पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की तो प्रसन्न भी होते हैं, हमारी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि ये जो एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन होता है ना भक्ति का, बारिश का, वो हमारे जो खासकर ये जो हमारा शहर है, जो हमारी शहर की गलियां हैं उस पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ बारिश की, तो बारिश से ना एक और बात मुझे याद आती है जो हम सभी जिससे काफ़ी परेशान भी होते हैं, और वो होता है ट्रैफिक। अब इसमें यही देखा जाता है कि बारिश का जो ट्रैफिक होता है ना, बिना किसी खास वजह के इतनी सारी गाड़ियों के बीच में एक लाइन सी लग जाती है और हम हो जाते हैं इसमें परेशान। तो अगर आप भी ऐसे कोई हैं कि ट्रैफिक में भी फंसे हुए हैं और सुनना चाहते हैं कोई अच्छा सा गाना, तो मैं अपने रेडियो स्टेशन के थ्रू आपके लिए लेकर आ रही हूं फिल्म बागी से एक बहुत ही अच्छा गाना जो बारिश पर बेस्ड है, और उस गाने का नाम है छम छम।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इस सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: तो दोस्तों युववाणी पर हम बातें करते हैं युवाओं से जुड़ी हुई खास बातों की, और जब युवाओं की एक पसंद देखी जाती है ना, तो आज के टाइम में एक गेम है, एक स्पोर्ट है जो युवाओं को काफ़ी पसंद है, और वो स्पोर्ट है फुटबॉल। और फुटबॉल की जब बात करी जाती है तो एक ये बात देखी जाती है कि शायद इंडिया में वो गेम इतना फेमस नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने करियर को आगे नहीं बढ़ाते बल्कि एक पूरे के पूरे जॉनर को, एक पूरे के पूरे स्पोर्ट को इतना आगे बढ़ा देते हैं कि लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और ऐसे ही एक स्टार फुटबॉल प्लेयर जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, उनका आज बर्थडे है और उनका नाम है सुनील छेत्री। जब इनके नाम की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसे फुटबॉलर हैं जिनको इंडिया में बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और एक तरीके से ये भी माना जाता है कि फुटबॉल को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत करी है उनमें से एक सबसे खास इंसान अगर कोई निकल कर आते हैं तो वो सुनील छेत्री हैं। और जब इनके बर्थडे की बात करी जाती है तो इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, खेल रत्न अवार्ड, ये सारे अवार्ड से नवाजा गया है। और साथ ही में उनकी जर्नी से एक ये चीज़ भी दिखती है कि जब भी वो आगे बढ़ना चाहते थे तो उनका मतलब यही था कि वो एक जो फुटबॉल है उसको इतना आगे लेकर जाना चाहते थे कि इसमें लोग जुड़ सकें। जिस वक्त उन्होंने ये गेम ज्वाइन किया था तब बात ये थी कि फुटबॉल पे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी इंडिया के अंदर, लेकिन उनका कहना सिर्फ यही था कि वो इस गेम को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज भी जो उनका बर्थडे है जो हम सभी सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, तो उनके बारे में जब बात करते हैं तो वो खुद भी यही कहते हैं कि जो मेहनत है ना फुटबॉल से जुड़ी हुई, उसके लिए उनका एक कोट है जो जाना जाता है, और वो कोट है कि ये जो मेहनत है वो तो है ही, लेकिन अगर लीडिंग पोजीशन पर बने रहना है तो इस मेहनत को बार बार करते रहना होता है, तब जाकर के आप लीडिंग पोजीशन को सस्टेन कर पाते हैं, और ना कि सिर्फ एक अच्छे प्लेयर बनकर उसको एक लीडिंग पोजीशन जीत कर बस अपना काम पूरा नहीं होता, बल्कि उस गेम को आगे बढ़ाने के लिए वो मेहनत जारी रहती है। और इसी तरीके से आपने ये भी एक चीज़, मैं एक फैक्ट उनके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो फैक्ट यही है कि आपने मेसी का नाम सुना होगा, रोनाल्डो का नाम सुना होगा, लेकिन उनके अलावा इनका जो नाम है सुनील छेत्री का, वो इंटरनेशनली फुटबॉल में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब इंटरनेशनल गोल्स की बात करी जाती है फुटबॉल में तो इन ये ग्लोबली फोर्थ नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा गोल स्कोर्स के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ये जो हमारा फुटबॉल है उसके लिए भी बहुत बड़ा नाम है सुनील छेत्री। तो आज उनके बर्थडे पर हम भी उन्हें विश करते हैं, आप भी अगर उनके सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो तो उन्हें ज़रूर बताएं कि आपके लिए वो कितने खास हैं, इंडिया के लिए कितने खास हैं। और जैसा कि अभी हम देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ बारिश चल रही है, तो बिना किसी देरी किए मैं एक और गाना आपके लिए प्ले कर देती हूँ जो जुड़ा हुआ है बारिश से और रेट्रो सॉन्ग है, यानी कि सभी लोगों की पसंद का एक खास गाना आपके लिए।

तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारे युववाणी की कुछ खास रोजगार सूचनाओं की ओर, जिसके अंदर से जो पहली रोजगार सूचना है वो आ रही है इंडियन रेलवे से, जहां पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 4,000 पोस्ट पर आवेदन निकाले हैं और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 सितंबर, और ये पोस्ट जुड़ी है जूनियर इंजीनियर, डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से rrbapply.gov.in। और हमारी जो आज की दूसरी रोजगार सूचना है वो जुड़ी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जहां पर 389 पोस्ट पर आवेदन निकाले गए हैं, और ये जो आवेदन है ये जुड़े हैं मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, और मैनेजर की पोस्ट जो है वो जुड़ी हुई है ग्रुप ए और E3 के लिए, और साथ ही में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट हैं वो जुड़ी हुई हैं ग्रुप बी और E1 के लिए। अगर आप इसमें अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है aai.aero। वेबसाइट एक बार फिर से aai.aero। तो इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ हमारे कार्यक्रम के एक और खास गाने की ओर, और इस गाने का नाम है भागे रे मन।

तो दोस्तों बढ़ते हैं युववाणी में आगे, और आगे हैं हमारे साथ कुछ और रोजगार सूचनाएं, जिसके अंदर पहली जो रोजगार सूचना है अभी के लिए वो आ रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए आवेदन निकाले गए हैं और इसके अंदर 39 पोस्ट शामिल हैं और ये पोस्ट जुड़ी हैं साइंटिस्ट, ऑफिसर, फैकल्टी और इन्हीं की तरह कुछ और पोस्ट के लिए। अगर आप इनके बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है upscionline.nic.in। वेबसाइट एक बार फिर से upscionline.nic.in।

कुछ चुनिंदा पोस्ट में जो एज लिमिट है वो बढ़ाई भी गई है, और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in। वेबसाइट एक बार फिर से joinindianarmy.nic.in। तो बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के एक और खास गाने की ओर, जो जुड़ा हुआ है बारिश से ही, लेकिन इसका जो गाने का जो हमारे जो सिंगर हैं वो हमारे यूथ के काफ़ी फेवरेट हैं, और वो है आयुष्मान खुराना।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये जो घड़ी है हमारे स्टूडियो की, ये इशारा कर रही है कि युववाणी कार्यक्रम का समय पूरा हो चला है। लेकिन जाते जाते ना, क्योंकि हमारा जो मौसम है अच्छा, वो काफ़ी ख़ास है और हमें ये जो मौसम है वो काफ़ी पसंद भी आता है, तो इसी मौसम से जुड़ा हुआ एक और गाना मैं आपके लिए छोड़कर जाऊंगी। खासकर ये जो गाना है, ये एक यूथ फेवरेट फिल्म से माना जाता है, और वो फिल्म है वेक अप सिड। यानी ये जो हमारे जो डेली लाइफ के यूथ जो स्ट्रगल करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और जिस तरीके कैसे उनमें एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए उससे जुड़ी हुई इस फिल्म का गाना युववाणी में बारिश के मौसम में आपके लिए।

तो दोस्तों, इसी के साथ ही मुझ खुशबू को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार कार्यक्रम युववाणी मर। तब तक आप सुनते रहिए ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म राजनीति का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म मंजिल का गीत। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं योगेश जी ने और कंपोज किया है आर डी बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मंजिल का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म क्रिएचर से एक प्यारा सा गीत। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है टोनी कक्कर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्रिएचर का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म कॉकटेल से एक प्यारा सा गीत, जिसे गाया है नीरज श्रीधर ने और कविता ने। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म वॉकअप सिड का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म बर्फी का गीत, जिसे गाया है रेखा भारद्वाज ने। आइए सुनते हैं।

0: स्टेटमेंट एंड टीडीएस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा में। कार्यक्रम रूपरेखा में सबसे पहले 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:43 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, 6:48 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, 7 बजे आप सुनेंगे ग्राम भारती, 7:30 पर आप सुनेंगे खेतीबाड़ी, रात को 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, इसके बाद फिर 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज एट 9, 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे पब्लिक स्पीकिंग, 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग, रात को 10:30 पर आप पुनः सुनेंगे फिल्म संगीत, इसके पश्चात रात को 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जो कि हमारे दिल्ली के केंद्र रिले होंगे। आइए

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

अभी कुछ ही देर में 6:30 होने को हैं, 6 बजे बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी।

0: समाचार अहमदाबाद।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत में पहला गीत हम सुन रहे हैं फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। गीत को गाया है किशोर कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने और गीत को कंपोज किया है SD बर्मन ने। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना गीत फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। अब प्रस्तुत है फिल्म शोर का ये गीत, जिसे गाया है लते मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना फिल्म शोर से ये गीत, अब प्रस्तुत है फिल्म जोधा अकबर से गीत जश्न ए बहारा। इस गीत को गाया है जावेद अली ने, गीत की लिरिक्स लिखी है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसके पश्चात आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। प्रतीक्षा कीजिए।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: अरे लल्लू की अम्मा, अरे कहाँ हो भाई? अरे जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लगी है।
6: खाना तो एकदम तैयार है, बस तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी लगाई देती हूँ।
5: अरे भगवान, खेत में पानी देते देते हाथ तो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल गए, ये देखो बिल्कुल साफ है मेरे हाथ।
6: फिर भी लल्लू के बापू, खाना खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
5: वो भला क्यों?
6: साबुन से हाथ धोने पर हाथों पर चिपके सारे कीटाणु धुल जाते हैं और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं।
5: अरे वाह लल्लू की माँ, अरे आज तो तू बड़े ज्ञान की बातें कर रही भाई, कहाँ से सीख कर आई ये सब बातें?
6: कल ग्राम सभा में डॉक्टर साहब भी सब बता रहे थे, और लल्लू के बापू मुझे भी ये बात ठीक लगती है कि हमें खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए।
7: देखिए, सही तरीके से हाथ धोना जरूरी है। कई लोग हाथ धोने के नाम पर केवल उंगलियों के पोर धो लेते हैं और सोचते हैं कि हाथ धुल गया। हाथ तभी साफ होते हैं जब उन्हें साबुन से अच्छी तरह मल मल कर साफ पानी से धोया जाए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे हाथ धोने के बाद अपनी शर्ट या पैंट से हाथ पोंछ लेते हैं, और घर की महिलाएं साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछ लेती हैं। यदि ऐसे हाथ पोंछा जाए तो हाथ धोने का कोई फायदा ही नहीं है। धोने के बाद हाथ साफ कपड़े से पोंछे जाने चाहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान अंगदान जागरूकता में देश में पहले स्थान पर, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। RUIDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार। और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल, समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर अंगदान जागरूकता के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। आज नई दिल्ली में 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान को अंगदान संकल्प अभियान में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह सम्मान चिकित्सा शिक्षा विभाग की निदेशक डॉ रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान की निदेशक डॉ चित्रा सिंह को प्रदान किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यह सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रभावी जनसंपर्क अभियान चलाने से ये उपलब्धि मिली है। देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया है। साल 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुरू होने के बाद ये उपलब्धि हासिल की गई है। आज नई दिल्ली में 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या बढ़कर सालाना 20,000 से ज्यादा हो गई है। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने अंगदान के लिए जागरूकता बढ़ाने वाले एक साल के जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे। और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा। और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
0: राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। RUIDP परियोजना निदेशक हरिमोहन मीणा ने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम 5 से 11 अगस्त तक 84 शहरों में होगा, जिसमें RUIDP 5वें चरण में होने वाले कामों की जानकारी देगी। साथ ही प्रतिभागियों से सुझाव और फीडबैक लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इन शहरों के विकास के लिए 9,500 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करेगी। इस चरण में अपशिष्ट जल और ठोस प्रबंधन के लिए शहरी यातायात सुधार और विरासत संरक्षण सहित अन्य कामों के जरिए इन शहरों को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाया जाएगा। श्री मीणा ने बताया कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से अपशिष्ट जल प्रबंधन किया जाएगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर तथा 28 शहरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शामिल किया गया है। प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा वंचित और पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये कुल खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23% है। राज्य के 4,35,00,000 लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। श्री गोदारा ने बताया कि 26 जनवरी 2025 से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल से 88 लाख से ज्यादा पात्र व्यक्तियों को NFSA में शामिल किया गया है। इससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मॉनसून को देखते हुए लाभार्थियों को 3 महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया है, इससे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। श्री अठावले ने युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को गाँवों के गरीब और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का प्रावधान करना चाहिए, इससे रोजगार के लिए गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गांवों में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा ना रहे, ये हमारी सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि उसी तरह हम काम कर रहे हैं।
0: श्री अठावले ने लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भी मुलाकात की। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 में विभिन्न कार्य समूहों की बैठक हो रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक कल हैदराबाद में शुरू होगी। वहीं जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक 21 और 22 अगस्त को होगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में खास तौर पर पर्यटन क्षेत्र में AI के उपयोग और सस्टेनेबल टूरिज्म पर चर्चा की जाएगी।

0: 20 की अपार सफलता, सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इन्वाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है, भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में इस बार मॉनसून की अधिक सक्रियता नहीं रही है। जल संसाधन विभाग के अनुसार इस सीजन में अब तक सिर्फ फलौदी जिले में ही असामान्य बारिश हुई है। वहीं बाड़मेर और बीकानेर सहित 5 जिलों में अत्यधिक पानी बरसा है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर सहित 16 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और उदयपुर सहित 19 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। इस बीच आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के साथ सूरत गढ़, सादुल शहर और श्रीकरणपुर में अच्छी बरसात हुई। भरतपुर में भी दोपहर बाद घनघोर घटाएं छा गई और देखते ही देखते झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। नदबई, उज्जैन, भुसावर, बयाना और रूपवास इलाकों में जोरदार बारिश हुई। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज कम दबाव का परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। मानसून टर्फ लाइन बीकानेर से होकर गुजर रही है। आज भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में आज से ही कमी आने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत अगले साल फरवरी महीने से होगी। इसके लिए प्रशासनिक और लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला जनगणना पुस्तिका और प्रशासनिक एटलस को जल्द अपडेट करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिलों, तहसीलों और कस्बों की तादाद में बढ़ोतरी को देखते हुए विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में ये दस्तावेज काफी अहम हैं। मुख्य सचिव ने जनगणना के पहले चरण के तहत हुई मकान सूचीकरण और गणना पर संतोष जताया। उन्होंने 17 अगस्त से पहले भूस्थानिक और डिजिटल टूल्स के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। चूरू जिले में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 13 श्रद्धालु घायल हो गए। दुर्घटना सुजानगढ़ क्षेत्र में बोबासर पुलिया पर टेम्पो ट्रैवलर और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर से हुई। पुलिस के अनुसार हादसे के शिकार ये लोग कोलकाता के एक ही परिवार से हैं और राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा पर आए थे। सालासर बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद पुष्कर धाम के लिए रवाना हुए थे। घायलों को सुजानगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर आज समूचे प्रदेश में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। व्रत, उपवास और जप तप से लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। शिवालयों में अल सुबह पट खुलते ही अभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ और समूचे वातावरण में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। जयपुर, कोटा, उदयपुर, दौसा, भरतपुर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू सहित सभी जिलों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर में उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती हुई। इसी तरह रंगीला महादेव, रोजगारेश्वर, चमत्कारेश्वर मंदिरों में लोगों का सैलाब उमड़ा। उदयपुर के प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ यात्राओं और भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग तथा प्रवेश, निकास और पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए दोपहिया रोड एम्बुलेंस शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दुर्घटना और आपात स्थिति में पीड़ितों तक जल्द पहुंचना आसान होगा, खासकर दूर दराज और संकरी जगहों में लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा। मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल संचार प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान अंगदान जागरूकता ने देश में पहले स्थान पर नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। RUIDP एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से प्रदेश के 84 शहरों में 9,500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करेगी। राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में अगले दो दिनों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात के आसार और सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार पर भक्तिमय माहौल, समूचे प्रदेश में महादेव के जयकारों की गूंज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को केंद्र सरकार की डेवलपमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड साइट्स एंड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स योजना में शामिल किया गया है। इसके तहत लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। योजना के तहत पद्मिनी महल में नई हिस्ट्री गैलरी, आधुनिक संग्रहालय, वॉकवे, इंटरप्रिटेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। रेल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी जिले के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। सांसद CP जोशी ने बताया कि नई रेल लाइन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के प्रारंभिक सर्वे में चित्तौड़गढ़ और देवारी में स्टेशन बनने की संभावना है। वहीं चित्तौड़गढ़ अजमेर रेलखंड पर कार्य प्रगति पर है और चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन की स्वीकृति प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से जिले की रेल संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। रावतभाटा स्थित राणा प्रताप सागर विद्युत गृह में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए ATS कोटा और इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास के दौरान आतंकवादी हमले का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आतंकियों को निष्क्रिय किया और बंधक बनाए गए कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों निम्बाहेड़ा में लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिजली, सड़क, पीने के पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सांसद CP जोशी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। बैठक में जल जीवन मिशन, विद्युत अवसंरचना, सड़क परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, TB मुक्त अभियान और जन औषधि केंद्रों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रदेश के बालोतरा जिले के पचपदा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण चित्तौड़गढ़ जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर आयोजित रोजगार उत्सव में 527 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी, यमुना जल परियोजना और जयपुर मेट्रो सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मॉनसून की सक्रियता के साथ ही जिले में खरीफ फसलों की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल किसानों ने सबसे अधिक क्षेत्र में मक्का की खेती की है। इसके अलावा सोयाबीन, उड़द

0: तथा अन्य खरीफ फसलों की भी बुआई की गई है। कृषि विभाग किसानों को उन्नत खेती और फसल प्रबंधन के संबंध में तकनीकी सलाह उपलब्ध करा रहा है। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिले में इस साल 32.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में विभिन्न विभागों, ग्राम पंचायतों, विद्यालयों, उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वन विभाग ने बस्सी अभयारण्य में ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव कर पौधरोपण का नवाचार किया है। इसके तहत स्थानीय प्रजातियों के बीज का छिड़काव किया गया है। विभाग आगामी सितंबर और फरवरी में सर्वे कर इस प्रयोग के परिणामों का आकलन करेगा। प्रशासन ने लगाए गए पौधों की नियमित देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि अभियान का स्थायी लाभ मिल सके और जिले का हरित क्षेत्र बढ़ सके। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला में देश में अव्वल, नई दिल्ली में उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवासी जियो, RUIDP री ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद, प्रदेश में 84.5 करोड़ रुपये रा खर्च विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराद और उगनी हल्का में आवता 2 दिन हल्क्यों मझला दर्जारी बरसात रा आसार, और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माय महादेव रा जयकारा री गूंज। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरबे समाचार विगतवार। राजस्थान ने अंगदान जागरूकता रा हल्का माय बेहतरीन काम सारू राष्ट्रीय स्तर माथे उत्कृष्टता पुरस्कार नवाजी चियो है। आज नई दिल्ली में 16वां इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे समारोह में राजस्थान ने अंगदान संकल्प अभियान में अव्वल रहवण पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. रश्मि गुप्ता और सोटो राजस्थान के निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने ओ इनाम देर नवाजा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ओ मान मिलन पर खुशी जाहिर कीनी। वे कहो कि अंगदान सारू जागरूकता बधावण सागे असरदार जनसंपर्क अभियान चलावण आ उपलब्धि हासिल वे सकी। ए बीच देश में आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञा री तादाद में 5 लाख न पार कर की है। आज नई दिल्ली में राखी जिया 16वां भारतीय अंगदान दिवस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 10 साल में देश में हर साल 20,000 बत्ता उपतु अंग लकैचिया। ई मौके मंत्री अंगदान बारा में जाग जगावन रा मकसद 1 साल ताई चलाए जावन वाला जुग जुग जियो अभियान री शुरुआत कीनी।
2: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा। हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा, और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
1: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो कि अंगदान इंसानियत सारो खुद न समर्पित कर देवण जुड़ियो महादान है। वह राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में राखी जिया अंगदान जागरूकता कार्यक्रम में बोल रहा है। श्री बागड़े कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने अंगदान री शपथ दिराई। भारतीय अंगदान दिवस रे मौके जनता में जाग जगावण रा मकसद प्रदेश में आई कई कार्यक्रम राखी जिया। पाली में चिकित्सा विभाग और सामाजिक संस्थाओं की ओर अंगदान महादान जागरूकता रैली निकाली जी चिणमाई शामिल फेवन वाला अंगदान करण री सोगन लीनी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP प्रदेश री ओर राज्य में संवाद कार्यक्रम राख्यो चावेला। RUIDP रा परियोजना निदेशक हरिमोहन मीना बतायो कि वो कार्यक्रम 5 और 11 अगस्त ताई 84 ठोड़ा राख्यो जावेला। इन तहत RUIDP 5वां दौर में कराया जावन वाला कामारी जानकारी देवन सागे राई लेवेला। वे बतायो कि राज्य सरकार आठौड़ा रा विकास सारू 9,500 करोड़ रुपया रा खर्च न्यारा न्यारा काम करावेला। ई दौर में गंदा पानी और ठोस कचरा रा प्रबंधन, शहरी यातायात सुधार और विरासत न सहेज राखण समेत न्यारा न्यारा काम रे जरिए आठौड़ा ने स्मार्ट और आगेरी पीढ़ी रा रहवास लायक बनाया जावेला। श्री मीना बतायो कि 67 शहरों में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद गंदा पानी रो प्रबंधन करियो जावेला, जबकि जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर समेत 28 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन रा काम कराया जावेला। प्रदेश रा 1 करोड़ बत्ता वंचित और पात्र लोगों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं जोड़ी चिया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा बतायो कि आ तादाद खाद्य सुरक्षा योजना रो फायदो लेवन वाला री कुल तादाद रो करीब 23% है। मंत्री बतायो कि राज्य में 4,35,00,000 जना ने खाद्य सुरक्षा दी जा रही है। श्री गोदारा बतायो कि 26 जनवरी 2025 में शुरू करी गया खाद्य सुरक्षा पोर्टल रे जरिए 88,00,000 उम्बत्ता पात्र लोगों ने NFSA में शामिल करी गया है। वह कहो कि चौमासा ने ध्यान रखता थका लोगों ने 3 महीना रो राशन एक सागत दियो चारियो है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। वह कहो कि सरकार पेपर लीक री घटनावां माथे लगाम लगावन सारू करडो कानून बनायो है। इणु आवण वाला भगत में एड़ी घटनावां माथे रोक लागेला। श्री अठावले नौजवानों शांति सागे वारी बात राखण री अपील कीनी। वह कहो कि राज्य सरकार ने गांवारा गरीब और भूमिहीन परिवारों ने जमीन देवन रो प्रावधान करनो चाहिए। इणु रोजगार सारू गांव रा लोगों ने शहरा ओड़ी नहीं जावनो वेला। PM आवास योजना रा तहत पात्र परिवारों ने पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मिला है शहरों में और गाँव में, और अभी 3 करोड़ लोगों को मकान देने के लिए बजट मंजूर किया है। एक भी मकान देश में कच्चा ना रहे, ये हमारी सरकार की भूमिका है और मुझे लगता है कि उसी तरह हम काम कर रहे हैं।
1: श्री अठावले लोकभवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े सागे मुलाकात की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कहो कि सरकार पेपर लीक रा वाक्या रोकण सारू करडो कानून लाई है। अरब पेपर लीक करण रा दोषियां ने 10 साल ताई रे कैद री सजा रो प्रावधान करी चियो है। भारत री सदारत में ब्रिक्स 2026 में न्यारा न्यारा कार्य समूह री मीटिंग रखी जा रही है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली रा बारा में विशेषज्ञ नेटवर्क री दूजी बैठक काल हैदराबाद में शुरू हैला। दूजी कानी जयपुर ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह री बैठक री मेजबानी करेला। आ मीटिंग 21 और 22 अगस्त ने फैला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि इणु ब्रिक्स सदस्य देशों बीच पर्यटन सहयोग ने बधावो मिलेला। वे बतायो कि मीटिंग में खास तौर पर्यटन हलका में AI काम लेवन और सस्टेनेबल टूरिज्म रे बारा में चर्चा करी जावेला।
4: G20 की अपार सफलता, सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त इनवाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है, भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है, ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने वाला
1: है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। अरब मौसम प्रदेश में ई दफा हालताएं चौमासा री बिरखा मंदी वेवणु किसाना री चिंता पतकी है। जल संसाधन विभाग रे मुजब हालताएं केवल फलौदी जिला में घनी जोरदार बिरखा हुई है, जबकि बाड़मेर और बीकानेर समेत 5 जिला में बत्तो पानी बचियो है। अजमेर, जोधपुर और भरतपुर समेत 16 जिला में सामान्य बारिश हुई। जयपुर, कोटा और उदयपुर समेत 19 जिला में सामान्य कम पानी बरसियो है। आज श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सागे सूरतगढ़ सादुल शहर और श्री करणपुर माए चोखो में बरसियो। भरतपुर माए दोपहर पाछे झमाझम बारिश हुई। नदबई उच्चैन भुसावर बयाना और रूपवास हल्का माए जोरदार बिरखा हुई। आज भरतपुर जयपुर और बीकानेर संभागरा कुछ हल्का माए मझलाऊँ तेज दर्जारी बारिश की संभावना है। हालांकि जोधपुर उदयपुर और कोटा संभागरा कुछ हल्का माए बारिश माए आज हुई कमी आवन रा आसार है। सावन रा पहला सोमवार रे मौके आज पूरा राज्य माए भांत भांत रा कार्यक्रम रखी जिया। शिवालय माए तड़के पट खुलताई अभिषेक रो सिलसिलो शुरू हो गयो और पूरा वातावरण माए हर हर महादेव रा जयकारा गूंज उठ्या। जयपुर रा ताड़केश्वर महादेव मंदिर माए उज्जैन रा महाकाल मंदिर रिभांत भस्म आरती भी। उदयपुर रा नीलकंठ महादेव मंदिर माए मोटी तादाद माए जात्रु पूग रिया है। कावड़ यात्रावां और भक्तां नी मोटी तादाद न ध्यान राखता थका प्रशासन री ओर उन हिफाजत रा खास इंतजामात करी चिया है। ड्रोन और CCTV कैमरा रे जरिए निगरानी राखी जा रही है। भरतपुर माए नागपंचमी रे मौके किला रा बांके बिहारी परिक्रमा गिला माए जात्रु नाग देवतारी पूजा अर्चना कर और खुशहाली और बरकत री कामना कीनी। सवाई माधोपुर जिला माए शिवाड़ रा घुष्मेश्वर महादेव और भगवतगढ़ रा अरणेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए भक्त जल दूध दही और पंचामृत शिवलिंग रो अभिषेक कर और पूजा अर्चना कीनी। कावड़ियाई पवित्र सरोवरों जल्लार भोलेनाथ रो अभिषेक कीनो। सवाई माधोपुर रा जूना शहर माए कावड़ यात्रा निकाली जी वठ सिंजानी पोर भजन संध्या रोई कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ रा शिव मिंद्रा माए जात्रु भगवान शिव रे दूध जल और बेल रा पत्ता चढ़ार सुख समृद्धि री कामना कर रिया है। झुंझुनू माए ADM डॉक्टर अजय आर्य बतायो कि देवस्थान विभाग री ओर लावरेश्वर महादेव मंदिर माए सवार 9-10 बजे ताई रुद्राभिषेक महोत्सव राखी चियो। बाड़मेर जिला रा न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए मोटी तादाद माए जात्रु भगवान शिव री पूजा अर्चना कर रिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। राजस्थान अंगदान जागरूकता रा मामला माए देश माए अव्वल। नई दिल्ली माए उत्कृष्टता पुरस्कार उन नवाजी जियो। RUIDP री ओर एशियन डेवलपमेंट बैंक री मदद प्रदेश माए 84 ठोड़ा 9,500 करोड़ रुपया रा खर्च विकास रा काम कराया जावेला। राज्य रा उत्तराद और उगनी हल्का माए आवता 2 दिन हल्की मझला दर्जा री बरसात रा आसार। और सावन रा पहला सोमवार रे मौके राज्य माए महादेव रा जयकारा री गूंज। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम री बाड उड़ीकता सगला श्रोतावा ने ग्रामीण भाई बहना ने चंचलरो ने भरियो मीठो मीठो राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची ताऊ ताई मामा मौसी बहन भाईली बुआ सब ने ढोगर जैसा और नरपत भाई आपने भी घने मानू राम राम सा
1: सारा ग्रामवासिया ने नरपत सिंह रो राम राम और साथ ही चंचल बहन आपने भी राम राम
0: और रामा श्यामा तो करी रहा हाँ सावन को यो पहलो सोमवार और झमाझम बरसात मैं ही जानू की तरीका हूँ श्रोतावा सु बात कर बताई स्टूडियो तक पुगी हूँ भाई।
1: नहीं बिल्कुल बरसात का मौसम तो आज खतरनाक ही बरसात हो रही है और बरसात को मौसम एक राहत भी दे अपन आनंद भी दे
0: बिल्कुल साहब
1: क्योंकि इससे अपन हरियाली मिले ठंडी हवा है वर्षा को जो सुहावनो वातावरण है लोगों ने बहुत ही आनंदित करे
0: और जो धरती की तिस मिट्टी है जो पानी को जल स्तर है वो जो संतुलित हो है वो बरसात के बिना कोनी हो सके। लेकिन बरसात में एक बड़ी समस्या हो है पानी भराव तो है ही मैं जानू हूँ लेकिन अगर चर्म रोगा की बात करा तो बहुत तरीका की बीमारियां चमड़ी से जुड़ी हो जावे है अगर कोई ने पानी सू एलर्जी है बरसात का पानी सू या फिर कहवा जो छोटा छोटा माच्छर माखी टेम में हो जावे भांत भांत का माँ के काटवा सू भी कई बार जलन खुजली और फोड़ा फुंसी बहुत हो जावे है तो चर्म रोग जो है वह भी बहुत ई मौसम में यानी बरसात का मौसम है क्योंकि सीलन रहवे धूप बत्ती आवे कोनी नमी मणी रहवे तो बहुत सिर उठावे साहब।
1: बिल्कुल लगातार नमी बने के कारण आपने जो पसीना हो चाहे गंदगी दूषित पानी या फफूंद और या बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाओ जवार संक्रमण की तो बहुत ज्यादा समस्या रहे हो चाहे
0: और ऐसी स्थिति में अगर आप देखा तो आपने आंगन में खड़ोड़ो जो जो दादा भाई नीम है ना यो औषधीय गुणा को भरपूर ई को लाभ आप ले सका हाँ क्योंकि ई की छाल ने अगर घिसर आप लगा ले वहाँ जड़े फोड़ा फुंसी हो रहा है दाद हो रहा है तो बठे आपा ने फायदो करे। ई की पत्तिया ने उबाल अगर आपा वही पानी सु नहा लिया तो आपा ने फायदो होवे। अगर ई की जो तीतियाँ होवे हैं यानी कोमल पत्तियाँ होवे बाने आपा चबा लिया तो आपा ने फायदो मिले है। तो एक नीम की ही अगर बात करा तो भी बहुत सारा फायदा आपा ने मिले है। ई टेम में जो सेमल होवे है बी की छाल भी फूल जावे पानी सू सेमल का काटा आपा निकाल लिया वहाँ तो जी आप कह रहे हो कि जो जो नमी रहवे है और जी सू आपने जो गंदगी भी शरीर पर धूल माटी आपा बारे जावा हाँ बहुत सारा फोड़ा फुंसी निकल आवे तो बी सेमल का काटा ने अगर आपा घिसड़ लगा लिया तो भी आपा ने बहुत फायदो मिले है साहब।
1: बिल्कुल बरसात के मौसम में जब आपसे बताया था कि दवाई नीम और यो सेमल बहुत ही काम आ जाए आपने दाद हो जाए जे तो भी दाद के लिए भी जी मान लो आपने लक्षण देखा तो आपने बरसात का मौसम से कड़े लाल चकता हो जाला तेज खुजली हो जाए जे और आपने त्वचा भी छिल जाए जे तो बी का कारण भी है बरसात में फैल वाली जो दाद है बी से भी आपने इससे बताया जिससे फायदो मिल सके।
0: बिल्कुल और अब फायदो जद है कि जद आप बाता चीता के साथ संगीत की जो स्वर लहरें हैं बाने भी पिरो दिया
1: बिल्कुल सुनाओ सा
0: तो सावन है तो सावन को गीत सुन सा
2: सावन सुरंगो आई अजी को

0: तो मेहो झड़ तो लाग्यो रहे सा। और सावण की जो रुत है इमें अई बिरखा होती रहे, और जो काश्तकार भाई बहन है बाकी जरूरत मुजब जो पानी है बाने मिलतो रहे, और जो धरती की ते सेवा मिटती रहे और जल स्तर बहुत ऊंचो आ जावे, यो तो आपा कामना करा ही करा। और गीत के सागे सागे ही बीसवर लहरी पर ही चालती चालती जैवे कुंभैण पावना ने ले आ गई है साहब।
1: तो दिलाओ जानकारी।
0: फिर लेवा जानकारी।
2: करसा भायर भैणा राम राम सा। आज आपा के सागे है डॉक्टर सुमित प्रकाश यादव, सहायक आचार्य पशु प्रसूति एवं मादा रोग विभाग PGIVER जयपुर के मायने कार्यरत छे। सबों पहली डॉक्टर साहब ताको घणो घणो स्वागत छे। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: तो सबों पहली मैं ये जानवो चावला कि पशु प्रजनन संबंधी समस्यावां और बाकू निराकरण की तरीका से हो सके है।
1: सबसे पहले पशुपालक भाई और बहनों, प्रजनन संबंधी समस्याओं का निराकरण या पहचान क्यों जरूरी है? प्रजनन संबंधी समस्याएं हमारे सीधे ही पशुओं के उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। एक पशु जब अपने मद या ईस्ट्रस की अवस्था में आता है, तब वो उसको हम दीर्णे या गाभिन कराते हैं। जब वो गाभिन रहता है, बच्चा देता है, अपनी संतति बढ़ाता है, और उसके बाद में हमें अपने बच्चे के लिए दूध देता है, और जिस दूध का हम अपने घर में काम में लेते हैं, बाजार में उसको बेचकर अपना मुनाफा या अपनी कमाई करते हैं। तो जब पशु का प्रजनन सिस्टम या प्रजनन अंग जो है सही रहेंगे, समय पे बच्चा वो देगा, तभी हमें समय पे दूध का उत्पादन दे पाएगा और हमें मुनाफा होगा। इसलिए पशुओं के प्रजनन से संबंधित समस्याओं को हमें समझदारी पूर्वक, ध्यान पूर्वक उनको देखना है, और समय रहते खुद या पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार हमें उसका निवारण करवाना है।
2: जी साहब, डॉक्टर साहब, जो वहाँ के पशुओं के जो प्रजनन संबंधी समस्या वहाँ हुआ करे है, तो बाको काई प्रभाव पड़े है, दुष्प्रभाव पड़े है पशुपालन पे, ई के बारे में बताओ साहब।
1: सामान्यतः ये समझते हैं कि एक साल में गाय या भैंस हमें एक बछड़ा या बछड़ी, पाड़ा या पाड़ी दे दे, तो इसका मतलब है कि एक सामान्य पशु की प्रजनन चक्र चल रहा है और हमारे लिए वो फायदे का सौदा है या फायदे की बात है। लेकिन पशु प्रजनन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं, तो ये जो एक साल में एक बच्चा देने की प्रक्रिया है, इसमें विघ्न या दुष्परिणाम पड़ता है और ये नहीं हो पाता है। और ये नहीं हो पाता है तो अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से हमारे मुनाफे में या हमारे पशुपालन से कमाई में प्रभाव पड़ता है।
2: अब मैं अठे ये जानबो चावला कि जो वहाँ का पशु है वहाँ की मुख्य जो प्रजनन संबंधी समस्यावां छे वह कौन सी छे, ई के बारे में बताओ सा।
1: पशुपालक भाई और बहनों, पशुओं में प्रजनन से संबंधित मुख्य समस्या है एक तो फुराव की समस्या, जिसको अंग्रेजी में रिपीट ब्रीडिंग भी कहते हैं। दूसरा, पशुओं में मद में नहीं आने की समस्या, जिसको अंग्रेजी में

0: निस्ट्रस भी कहते हैं। ये दो मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण हमारा पशुपालक भाई और बहन जो है परेशान रहते हैं। अब बात आती है कि फुराव की समस्या। फुराव की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें पशु को हम तीन या तीन से ज़्यादा बार धीणे कराते हैं जब वो सही मद की अवस्था में होता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है उसमें नहीं लग पाता है और बार बार जो है पशु वो मद में या ताव में हीट में आता रहता है और इसके कारण हमें बहुत सारा नुकसान होता है। क्योंकि अगला चक्र जो पशु का, जिसको मद चक्र या ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, वो 21 दिन बाद में आता है और इस 21 दिन में जितना भी पशु खाएगा उतना उसको वापस अगले 21 दिनों में खिलाना पड़ेगा यदि वो गर्भधारण नहीं करता है। तो इस तरह से एक दिन का हम 200 रुपये जोड़ें, 100 रुपये जोड़ें तो भी हमें 2000 4000 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो जाता है। तो पशुपालक भाई और बहनों, ये गंभीर बीमारी भी बनी हुई है और इस समस्या का निराकरण करने के लिए, चूँकि इसके कई सारे जो है कारक हैं, तो उन कारकों को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम पशु जब भी कोई हीट में आए, ताव में आए, तो उसके लक्षणों को ज़रूर पहचानें। उनके लक्षणों को पहचान कर समय पर पशु चिकित्सक को आप बुलाएं। जैसे मान लो पशु अपना सुबह हीट में आता है तो हम सामान्यतया शाम को AI या कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक जो वीर्यदान करवाते हैं, तो पशु के जो मद के लक्षण हैं वो हम सही तरह से पहचानें। दूसरा, पशु की जो बच्चेदानी है उसमें कोई संक्रमण हो तो उस पर ध्यान रखें। हालांकि इस बीमारी में संक्रमण का जल्दी से पता पशुपालक भाई को नहीं चल पाता है, लेकिन दो से ज़्यादा बार ये घटना हो चुकी है, तीन बार हो चुकी है, तो इस तरफ भी ध्यान देवें। तीसरा है प्रबंधन की समस्या। प्रबंधन में है पशु को जो है खुराक वो अच्छी देवें और एक बैलेंस राशन जिसको बोलते हैं, जिसमें हरा चारा, सूखा चारा, बांटा, वो सभी तरह का हम देवें जिससे उसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं वो सही मात्रा में और सही तरीके से बने और उसकी वजह से कोई कमजोरी या उसकी वजह से कोई इस तरह की जो तकलीफ है वो पशु को ना हो। तीसरी और जो बात है इसके बारे में वो ये है कि पशु को कभी भी ठंड का टीका, जो एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसको बोलते हैं, वो पशु के मद की अवस्था पे नहीं लगवाएं। सामान्यतः पशुपालक भाई और बहनों के बीच में बात बहुत सामान्य है कि ठंड का टीका यानी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब पशु बोलता है उसी समय लगवा लेते हैं, तो उसी समय ना लगवाएं। यदि ज़रूरत हो, पशु चिकित्सक महसूस करे, तो उसको 5वें 6वें दिन बाद लगवा सकते हैं। दूसरी मुख्य समस्या है वो है पशुओं में मद या ताव का नहीं आना। एक तो पशु में मद या ताव तब नहीं आता है जब पशु गाभिन होता है। एक पशु में मद या ताव जब नहीं आता है जब पशु जो है उसमें कोई अंदर विकार उत्पन्न हो। तो इस समस्या का समाधान भी बड़ा ज़रूरी है और इस समस्या का सीधा सीधा समाधान है कि पशु को सबसे पहले तो कृमिनाशक दवा नियमित अंतराल पे 4-5 महीने पे जरूर पिलाएं। जब पशु वयस्क हो जाए, जब एक मादा पशु वयस्क होकर अपने ऋतु चक्र में या ईस्ट्रस साइकिल या मद चक्र में आता है, तब उसको जो है मिनरल मिक्सचर है वो आप ज़रूर खिलाएं। एक वयस्क पशु को 50 ग्राम प्रतिदिन ज़रूर देवें, उसको हरा चारा देवें। हरे चारे में विटामिन ए होता है, ई होता है और कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पशु को चाहिए, लेकिन कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। तो इन चीज़ों से हम ध्यान रख के अपने पशु को पशु प्रजनन संबंधी विकारों से बचा सकते हैं। फिर भी यदि ऐसा लगे, इसके बारे में भी दिक्कत है, तो हम पास के निकटवर्ती पशु चिकित्सक से संपर्क करें।
1: जी सर, तो अब माँ के सामने यह समस्या आवे है कि माँ का जो पशु छे बाने कोई प्रजनन संबंधी समस्या छे, तो बीका काई लक्षण से
0: पशु में, पशुपालक भाई और बहनों, मद चक्र गाय और भैंसों में 21 दिन के अंतराल पे आता है। यदि पशु गाभिन रह जाता है तो वो मद में वापस नहीं आता। तो इसके लिए मेरा पशुपालक भाइयों आपसे ये सुझाव है कि आप पशु का 2-2.5 महीने के उपरांत जब आपने कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक वीर्यदान करवा लिया है पशु में, तो आप उसका पशु चिकित्सक से चेकअप, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस या गर्भधारण के लिए जरूर करवाएं। उसमें हमें तुरंत पता चल सकता है कि हमारा पशु गर्भित हुआ या नहीं। यदि पशु गर्भित है तो हमें उसी के अनुसार उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन पशु प्रजनन संबंधित कोई बीमारी है जिससे गर्भित नहीं हुआ तो हमें तुरंत उसका पता चल जाएगा और हम उसका इलाज करवा पाएंगे जिससे हमें आर्थिक नुकसान जो है कम से कम होगा। अब पशु जब, यदि मान लो

0: कई बार गाभिन भी हो जाता है, फिर भी पशु के अंदर कई प्रकार की जो प्रजनन संबंधी व्याधियां या बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पशु में गर्भपात का हो जाना यानी बच्चे का गिर जाना। तो ये बीमारी एक ऐसी है जो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया व अन्य, जैसे पशु का एक दूसरे को मार देना, सींग से मार देना, चोट पहुंचा देना, फिसल के गिर जाना, इस वजह से हो सकती है। तो इस अवस्था में यदि बार बार ऐसा होता है कि पशु में गर्भपात की समस्या है, तो आप सीधा ही पशु चिकित्सक को दिखाइए। और लेकिन यदि ऐसा लगता है कि प्रथम बार ही है या फिर शुरुआती लक्षण ऐसे हैं कि पशु बच्चे गिराने वाला है, जैसे उसका बच्चेदानी का मुंह खुलना, थोड़ा बहुत स्राव होना, तब आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। दूसरा जो है वो बीमारी है, वो है बच्चे का सूख जाना, जिसको बोलते हैं फीटल ममीफिकेशन। बच्चा बच्चेदानी के अंदर झिल्लियों के बीच में पानी से भरे हुए स्राव के अंदर रहता है और घूमता रहता है, फिरता रहता है अंदर ही अंदर। लेकिन कई बार किसी कारणवश ये जो द्रव या जो स्राव है ये सूख जाता है और बच्चा 4 से 5 महीने के बाद में वैसे के वैसे पड़ा रहता है जैसा 4-5 महीने की अवस्था में है। और हमें पता तब चलता है जब हम हमारे 9 या 10 महीने कंप्लीट हो गए, पशु को गर्भित हुए और बच्चा नहीं हो रहा होता है, तब हमें जाके समस्या का पता चलता है कि क्या बात हुई। तो इस तरह की दिक्कत हमारे साथ ना हो, इसके लिए सुझाव यही है कि आप हर 2-2.5-3 महीने बाद में गर्भ की जांच करवाते रहें, जिससे जल्दी से हमें पता चल जाए। दूसरी, पशु के गर्भ धारण करने के बाद में समस्या जो हो सकती है वो है पशु का सड़ना या गलना, जिसको बोलते हैं पीटल मैसिरेशन। तो इस अवस्था के अंदर पशु जो है वो उसके बच्चेदानी के या योनि द्वार से सड़ा और गंदा जो है स्राव निकलता है, कई बार हड्डियों के कुछ टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। तो इस अवस्था में जल्दी से जल्दी आप पशु चिकित्सक को दिखाइए, जिससे कि बच्चेदानी अंदर से खराब नहीं हो। एक और बीमारी है जो पशु के गर्भित होने के बाद होती है और वो आजकल बहुत ही सामान्य रूप से पाई जाने लगी है, वो है पशु की बच्चेदानी का घुमाव, जिसको बोलते हैं यूट्राइन टोर्शन। इसमें क्या होता है कि सामान्यतया पशुपालक भाई और बहनों, हमें ऐसा लगता है कि पशु सब कुछ सही तरह से है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द महसूस होता है। एक दो बार हम कोई टीका भी लगवा लेते हैं, सही भी हो जाता है, लेकिन जब वो अपने 8वें 9वें महीने में होता है यानी ब्याने की स्थिति में होता है, तब अचानक से उसका जो अयन है या अडर है वो भरने के बजाय भर के सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। तो ये उसके लक्षण है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका पशु दूध जो है वो अपने थनों में, अपने अयन में भरना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश अचानक सूखने लग गया, तो आप इस पशु की जो बच्चेदानी में घुमाव है या फिराव है, इस समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए तुरंत आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि पशु की बच्चेदानी में आटा लग गया, उस आटे को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक वो इलाज संभव नहीं होगा। तो ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो पशु के गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तब ये हो सकती हैं।
1: जी सर, अब डॉक्टर साहब चलता चलता वहाँ का जो पशुपालक है बाने और कोई जानकारी देवा चाहो हो जिसे कि बाने लाभ हुए तो बताओ सर।
0: पशुपालक भाई और बहनों, पशु के ब्याने के बाद मुख्य रूप से जेर की समस्या आ जाती है कि पशु में जेर की समस्या है, वो जेर नहीं गिरी है तो हम क्या करें। तो पशुपालक भाइयों, आजकल 24 घंटे तक यदि जेर नहीं गिरे तो एक कॉमन बात है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीच के दौरान आप अपने पशु को, जैसे मान लो गुड़ का पानी है वो पिला सकते हैं, और बाजार में कई तरह के इकबोलिक एजेंट जो बच्चेदानी को सिकोड़ते हैं वो उपलब्ध हैं, वो आप पिलाएं तो तुरंत ही जेर गिर जाएगी। लेकिन जेर को कभी भी पत्थर से, लकड़ी से या ज़बरदस्ती उसको कभी भी अपने द्वारा नहीं खींचें, क्योंकि इससे बच्चेदानी के अंदर जो है वो जख्म पड़ने की जो है हो जाता है और जो उसकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा, कई बार देखने में आता है कि पशु के बच्चेदानी है वो बाहर आ जाती है, जिसको उड़ांस भी बोलते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए भी पशुपालक भाई और बहनों, उसको कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है वो आप गर्भ की अवस्था में उसको देते रहें, और यदि ऐसी अवस्था हो भी गई है तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। और आखिरी में मेरा पशुपालक भाई और बहनों आपसे यही है कि पशु के प्रजनन से संबंधित जो भी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का मेरा मतलब यहाँ से है कि हमारा पशु कब हीट में या मद में आया, कब हमने कृत्रिम गर्भाधान या वीर्यदान करवाया, कब हमने उसको डिवर्मिंग या पेट के कीड़ों की गोली पिलाई, कौन कौन से टीके वैक्सीनेशन उसको लगवाए, और मिनरल मिक्सर उसको हमें रोजाना उसको देना है, इस तरह की बातों को हमेशा ध्यान में रखना है और फॉलो करना है। और कुछ भी नहीं तो घर के कैलेंडर पे भी ये चीज़ें आप लिख सकते हैं,

0: निवासा।
1: और धन्यवाद तो जैवी कुंभेड़ ने भी देवा आपा,
2: बिल्कुल देवला अपना।
1: और कोरो धन्यवाद देवा कोनी। तो फिर मुजब चौपाल की रीत सुना एक मीठो सो लोकगीत।
2: बिल्कुल सुनो सा।

0: ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੇ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਜਾ ਸੀ ਤੋ ਕਈ ਭਾਵ ਬਾਨੇ ਮਿਲਸੀ ਤੋ ਮੰਡੀ ਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਡਾਲਾਂ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਗੇਹੂੰ ਕੀ ਫਤਿਹਨਗਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਰੋ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹੋ 2693 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਕੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਰੋ ਭਾਵ 2685 ਰੁਪਿਆ ਨਾਰਗੜ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਕੋ ਭਾਵ 2735 ਰੁਪਿਆ ਬੱਸੀ ਕੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਕੋ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹੋ 2566 ਰੁਪਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਕੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ ਰੋ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹੋ 2828 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ
1: ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਮੀਰਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੋ ਨਾਗੌਰ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਭਾਵ ਹੈ 6100 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ तारामीरा जयपुर में बात करा तो 5450 रुपये प्रति क्विंटल। अगर आप मंडा और दोसारी मंडी की बात करा तारामीरा की तो 5700 रुपये प्रति क्विंटल। मालपुरा मंडी में तारामीरा को भाव है 6000 रुपये प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में तारामीरा का भाव है 5849 रुपये प्रति क्विंटल।
0: बठई सोयाबीन की अगर बात करा तो रामगंज की मंडी में सोयाबीन रो भाव रहे हो 7159 रुपया। भवानी मंडी में सोयाबीन रो भाव 7185 रुपया। प्रतापगढ़ की मंडी में सोयाबीन रो भाव 7221 रुपया और सोयाबीन का भाव बारह की मंडी में रहे हो 7270 रुपया और सोयाबीन को ही भाव अंता की मंडी में रहे हो 6940 रुपया प्रति क्विंटल।
1: आप सोप की बात करा तो देवली मंडी में सोप को भाव है 8851 रुपया प्रति क्विंटल और नागौर मंडी की तरफ आप सोप को भाव जाना तो 12000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल साहब। और सौंफ की ही अगर बात कर रहा हो नरपत भाई तो मालपुरा की मंडी में सौंफ को भाव रहे हो 9200 रुपया। ओसिया की मंडी में सौंफ को भाव 7000 रुपया। अंता की मंडी में सौंफ को भाव रहे हो 12100 रुपया प्रति क्विंटल। बात करा सरसों की तो फतेहनगर की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 7605 रुपया। देई की मंडी में सरसों को भाव 7905 रुपया। डीक की मंडी में सरसों को भाव 8062 रुपया। बारा की मंडी में सरसों को भाव 7871 रुपया और गसिंहपुर की मंडी में सरसों रो भाव रहे हो 7923 रुपया प्रति क्विंटल। और चलता चलता मौसम को हाल बता दें। जयपुर को अधिकतम तापमान रहे हो 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोटा को अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जोधपुर को तापमान अधिकतम 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। अजमेर को अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और उदयपुर को तापमान अधिकतम 32 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज कियो गयो। और अब चालबा को टेम हो रहे हो है तो चाला और करा
1: राम राम सा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमेर चैनल है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम री बाट उडीकता सगला श्रोतावा ने ग्रामीण भाई बहना ने काश्तकार भाई बहना ने चंचलो नेह भरियो मीठो मीठो हरियो भरियो सो राम राम और सगला बड़ा बूढ़ा ने ढो गरज है सा और नरपत भाई आपने भी एक बार ओजू घने मानू राम राम सा
1: सारा किसान भाई ने नरपत सिंह रो राम राम और चंचल बहन आपने भी राम राम
0: रामा श्यामा तो कराई आपा लाडला कार्यक्रम में भी बरसात री बात कर रहा पानी री बात कर रहा बरसात में पानी तो बरसे ही है इके सागे सागे बहुत सारी खरपतवार भी उग जावे है और खेती बाड़ी आला लोग काश्तकार जाने हैं कि खरपतवार तो एक सिरदर्द होवे है।
1: बिल्कुल, क्योंकि बरसात होली तो जो भी खरपतवार में जो अपना फालतू जो फसल के साथ में उग जाए थे वह अगर बिना बोया भी उग जाए थे क्योंकि आप खेत की दृष्टि देखा तो वह अपने लिए बहुत ही लाभदायक रहे हुए
0: बिल्कुल हानिकारक रह वह है। लेकिन आज आपा बात करा बरसात का मौसम में जो अशी खरपतवार है जी में औषधीय गुणा की भरमार हो वह है जो आपने बहुत फायदों दे सके है बाने आपा जाना भी हाँ पहचाना भी हाँ पर कई बार भूल जावा हाँ या आलस में काम में कोनी लेवा। जैया से पहले आपा बात करा भूई आंवलारी एक छोटो सो पौधो जी की किनारी किनारी छोटे छोटा सा मणक्या सा लाग्या रहवे जी ने आंवला कहवा हाँ थोड़ो सो तीखो सो खट्टो कसैलो सो स्वाद इको होवे है और आपकी सेहत के लिए लीवर के ताई शुगर के ताई बहुत चोखो रहवे है यो भूई आंवलो।
1: साथ ही अपन गिलोय की बात करें गिलोय अक्सर आपने जो बरसात की ऋतु में बहुत ही तेजी से बढ़े थे आप भी एक आयुर्वेद थे जिन आप अमृता भी कहो था
0: जी
1: ये अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जिन्हें बिना बढ़ावा में काम आओ और आपने जो बुखार हो जाए भी मैं बहुत ज्यादा काम आओ और अपने शरीर ने बहुत ही ज्यादा स्फूर्ति भी प्रदान करे नीम गिलोय।
0: नीम गिलोय की आप बात कर रहे हैं जिन्हें अमृता भी कहवे नरपत भाई बताया अभी का नाम में ही सार्थकता है अमृता जो अमृत प्रदान करे है और ई अमृता का गुण गिलोय की जो देन है बिना आपा कोविड की जो लहर आई थी भी मैं घर घर में टाबर टाबर जान बला गया। एक और खरपतवार है जिन्हें आपा कहवा है साठी या साठो है ना और ई को अगर आयुर्वेदिक नाम आपा देखा तो बिना कहवे है पुनर्नवा पुनर यानी फेर ओजू और नवा यानी नयो कर देनो यानी कि यो आपका शरीर ने मायने सु एकदम नयो कर देवे है। अब अगर पुनर्नवा या साठी की बात करा तो इको आप रस काढ़र ले सको हो उबाल और काढ़ो बनार पी सको हो आप जैया मेथी का पालक का आप पराठा बनावा अया इका पराठा बनार भी खा सको हो आटा में गूथर इको साग बना सको हो जैया आप दाल पालक बनावा दाल चौलाई बनावा बैया भी आप खा सका। जठे तक साठी की बात है तो या लीवर के ताई वरदान है पीलिया रोग रोधी है और आपके लीवर की कितनी भी जटिल समस्या हो भी मैं या जो साठी है या पुनर्नवा है यो बहुत काम आवे और मजेदारी की बात यह है कि यो जो बरसात को मौसम है ई में या अय बिना लगाया उग जावे है जिन्हें आप खरपतवार समझ पाड़ फेंक दिया।
1: बिल्कुल इसके साथ एक मकोई भी हो चाहे एक झाड़ी के समान रजी हो
0: बिल्कुल
1: इका भी फल पत्तिया जने जो इका भाग पारंपरिक जो आपने चिकित्सा से भी में उपयोग कर सका जो आपने पाचन सुधार के काम आओ चे
0: बिल्कुल
1: लीवर की कार्य क्षमता भी न बढ़ा हो चे और शरीर में जो गर्मी चे भी न कम कर बाम सहायक रहती हो।
0: मकोई मुंह में अगर छाला हो जावे या कट लाग जावे तो थोड़ा सा इका पत्ता चबा लियो ला तो भी फायदो करे है यो अत्तो काम को है मकोए और कामा की बात वे और मने लागे है कि अपना जो गांव ढाणी में रहबाड़ा लोग है वे परिचित भी है चाहे वो साठी वे मकोए है भूमि आंवलो होवे या और भी कई तरीका की जो खरपतवार है जामे औषधीय गुण होवे है और वे काम में लेता भी वेला और अगर नहीं ले रहा है तो अब सु मने उम्मीद है कि वे काम में ले देखेला और देख पर दिखावा की बात है तो अठे तो आपा हिंडो ला को नहीं सका दिखा को नहीं सका पर हिंडो झूलबा को जो आनंद है वो गीता के माध्यम आप ले सका।
1: बिल्कुल सुनाओ सो गीत
0: बिल्कुल रामलाल माथुर की आवाज में एक मीठो सो गीत सुना सा।

0: शाम झूले हिंडोला मधुबन में कुंजन वन में। बहुत ही चोखो सो रामलाल माथुर और साथियों की जो या संगत रही, बहुत चोखो गीत आप सुनया। और जड तक संगत की बात आवे है तो जद आपने भी सारा अपना भाई बंद आप संगत करा और जद विशेषज्ञ सो बात करा तो कोई ना कोई लूठी जानकारी आपने मिली जावे है। जयान की अब अश्विनी भाई आया है और सागे पावना ने ले आया है
1: तो दिलाओ जानकारी,
0: तो फिर दिला दियो सर।
2: किसान भाइयों, आज अपने बीच पधारा है डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता, जो छे प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में आए। जैसा आज आप जानकारी ले रहा पादप वृद्धि नियामकों का कृषि और बागवानी में काय काय उपयोग आप कर सका था, तो सबसे पहले तो आपको स्वागत करा, राम राम साहब।
3: राम राम किसान भाइयों।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं किसान भाई ने बताओ कि पादप वृद्धि नियामक काय चीज वजह,
3: पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं, उसके पहले मैं चर्चा करूंगा कि हम जानते हैं कि पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसान खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया देते हैं, DAP देते हैं, SSP देते हैं। इसके अलावा पौधों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी थोड़ी सी मात्रा भी पौधों के शरीर के सभी क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करती है। आज वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि ये जो रसायन है उनको कृत्रिम रूप से ही बनाया जा सकता है और इनके छिड़कने से या इनका उपयोग करने से पौधों में बढ़वार होती है और उपज अधिक होती है। तो इन्हीं रसायनों को हम पादप वृद्धि नियामक बोलते हैं।
2: बिल्कुल साहब, यह पादप नियामक की जो बात कर रहे थे, आपको फसलों में काय काय उपयोग हो सके जे?
3: इसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे विशेष रूप से जो बागवानी फसलें हैं, जैसे हमारे फल हैं, हमारी सब्जियां हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। इनके उपयोग से फलों का आकार बढ़ जाता है, फलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, फलों को टूटने से बचाया जा सकता है, और इसी तरह जो सब्जियां हैं, हमने जो सब्जियां पैदा की हैं उनको हार्वेस्टिंग के बाद ज़्यादा लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। वृद्धि नियामकों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका उपयोग सही समय पर करना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव रहते हैं। नहीं तो उनका प्रॉपर यूज अगर करना है तो हमें उनकी मात्रा और सही समय उनके प्रयोग की विधि जानना अति आवश्यक है।
2: बिल्कुल साहब, आप बात करा प्रकृति की, तो प्रकृति में मुख्य रूप से कत्ते प्रकार का पादप नियामक पाया जाए छे?
3: पौधों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से तीन तरह के पादप नियामक पाए जाते हैं, जिसमें है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक अम्ल और इथाइलिन। इनमें से जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये पादप वृद्धि के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन एब्सेसिक अम्ल और इथाइलिन ये पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, वो भी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक है।
2: बिल्कुल साहब, कृषि और बागवानी में ऑक्सिन को उपयोग आप काय तरीका से कर सका?
3: ऑक्सिन का उपयोग, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। आजकल जितने भी पादप नियामकों की हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख रूप से ऑक्सिन ही काम में लेते हैं, और एक्चुअली बहुत पुराने जमाने में इसकी खोज हो चुकी थी। 1962 में F.W. बेंट नामक के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ऑक्सिन से क्या होता है, ये जड़ों के और तनों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जो शीर्षत कलिका होती है, अपेक्स जो होती है, उसमें की जो वृद्धि होती है वो ऑक्सिन से ही प्रभावित होती है। इसी तरह से जो हम कलम से पौधे लगाते हैं, उन कलमों में जो जड़ें निकलती हैं वो ऑक्सिन के प्रभाव की वजह से ही निकलती हैं। इसीलिए जो भी किसान कलम से पौधे लगाते हैं, विशेष रूप से जो फल वृक्ष लगाते हैं, वो ऑक्सिन यानी IBA के रूप में जो बाजार में मिलता है उसका उपयोग करते हैं। और कुछ प्रैक्टिकल यूज मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सिन प्राकृतिक रूप से IAA यानी इंडोल एसिडिक एसिड के रूप में मिलती है, लेकिन बाजार में भी ये कृत्रिम रूप से तैयार ऑक्सिन IBA के नाम से या NAA के नाम से मिलती है। इससे भी ज़्यादा एक 2,4-D नाम के ऑक्सिन आती है और किसान इसका बहुत यूज करते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं, ऑक्सिन चाहे वो NAA डालें आप, चाहे 2,4-D डालें, चाहे IBA डालें, तो जो फल होते हैं उनको पकने से पहले कई बार फल गिर जाते हैं, उनको गिरने से रोकता है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू के फल हैं, उनमें क्या होता है कि जब फल खूब आते हैं तो बहुत सारे फल झड़ जाते हैं, तो अगर अपन 2,4-D का उसमें छिड़काव करें तो उनको फलों को झड़ने से रोका जा सकता है। इसी तरह सेब और नाशपति की अगर बात करें, उसमें अगर हम NAA का छिड़काव करें तो उनमें भी वृक्षों से फलों को गिरने से रोका जा सकता है। बस ध्यान देने वाली एक ही चीज़ है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सही समय और सही कंसंट्रेशन, सही मात्रा का उपयोग करना अति आवश्यक है।
2: बिल्कुल साहब, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये नियामकों को काय भूमिका वचे और अन्य काय तरीका से आप काम ले सका जा।
3: ऑक्सिन के बाद जो इम्पोर्टेंट पादप नियामक हैं उनमें है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन का एक्चुअली क्या है कि इसकी खोज जापान में हुई थी। वहाँ पर क्या हुआ कि जो चावल के जो पौधे थे वो एकदम बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, किसान बड़े खुश हुए कि बहुत अच्छी फसल है, लेकिन उसके अंदर दाना नहीं था और इसकी वजह से एक नई डिजीज़ वहाँ डेवलप हुई जिसका नाम बोलते हैं बकानी डिजीज़। बाद में पता लगा कि ये एक हार्मोन होता है जिसका नाम है जिब्रेलिन, उसकी कमी की वजह से ऐसा हुआ। तो आज वैज्ञानिक सब पता लगा चुके हैं जिब्रेलिन का जो प्रमुख कार्य होता है पौधों की लंबाई में वृद्धि करना, और उसका जो बौनापन है ना उसको तोड़ना होता है कई बार, तो जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। इसका ज़्यादा उपयोग फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, फूलों वाले पौधे, उनमें किया जाता है। इसी तरह कई बार हमारे कुछ बीज सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, जैसे आलू वगैरह में, तो उनका जब डोरमेंसी या सुषुप्तावस्था को तोड़ना होता है तो जिब्रेलिन का यूज करते हैं। जिब्रेलिन का समय से उपयोग करने में पुष्पन की संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह जो भ्रूण होता है उसमें अल्फा एमेलेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उसकी वजह से अंकुरण बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह से जो कलम लगाई जाती हैं उसमें जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स, उनके निर्माण में भी जिब्रेलिन सहायक होता है। क्या आपको पता है अब तक कम से कम 125 तरह के जिब्रेलिन खोजे जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया जिब्रेलिन जो बाज़ार में उपलब्ध है उसका नाम है GA3, जिब्रेलिक एसिड 3।
2: देखो कई बार आपके सामने आवाज है कि पादप निरोधक, वो पादप निरोधक काय वजह और आप इन्हें कृषि और बागवानी में काय तरीका से काम में ले सका जाए और अपनी कृषि और बागवानी में काय तरीका से ये उपयोगी हो सके।
3: पादप निरोधक से पहले एक और है साइटोकाइनिन।
2: जी,
3: साइटोकाइनिन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हम अपने के जो पौधे हैं जो हरे देखते हैं उसका कारण होता है साइटोकाइनिन। इसी तरह जो पौधों में बढ़वार होती है, पौधे के अंदर कोशिकाएँ होती हैं, तो कोशिकाओं का जो डिवीजन होता है एंड विभाजन होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। तो हम जिन पौधों की बात करते हैं विशेष रूप से राजस्थान की परिस्थितियों में, तो पौधे जितने ग्रीन रहेंगे उतना ही भोजन बनाएंगे और उतनी ज़्यादा उपज होगी। तो साइटोकाइनिन नाम का जो नियामक है वो पौधों को हरा रखने में सहायक होता है और इस तरह से ये ज़्यादा उपज देने के लिए जिम्मेदार है। साइटोकाइनिन पौधों में भी पैदा होता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, और बाजार में ये बेंजाइल एडेनिन के नाम से उपलब्ध है।
2: जी, थे इतना पादप नियामक बताया, आँख अलावा भी कोई कौन सा पादप नियामक हो जाए?
3: हाँ, देखो एक चीज़ और है कि पादप नियामकों की जो हमने बात की ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इसके अलावा पादप अवरोधक भी होते हैं। जैसे मान लो हमारे लिए डोरमेंसी भी आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, तो दाने बनेंगे और बैंक में उनका अंकुरण हो जाएगा। इन सब को रोकने के लिए पौधों के अंदर वृद्धि नियामक के साथ साथ वृद्धि को रोकने वाले भी नियामक होते हैं, इनको बोलते हैं हम एब्सेसिक अम्ल। ये जैसे पौधों में गर्मियों में राजस्थान की परिस्थितियों में पत्ते झड़ते हैं, वो एब्सेसिक अम्ल की वजह से झड़ते हैं। तो वो हमारे लिए लाभदायक इसलिए है कि वो हमारी जो पानी की कमी होती है गर्मियों में वो होने नहीं देते, क्योंकि पत्तियाँ झड़ जाती हैं और उनकी पौधों की पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। इसी तरह एक और है इथाइलिन। आप सबने नाम सुना होगा कि हमारे यहाँ कुछ फल ऐसे हैं जो पेड़ों पर नहीं पकते हैं, उन्हें बाद में पकाया जाता है, और उसका नाम है, वो भी एक नियामक का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है इथाइलिन। इसके अलावा जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा और भी कौन कौन से वृद्धि नियामक हैं, बहुत सारे नए नए वृद्धि नियामक बाजार में आ रहे हैं, वैज्ञानिक खोज भी कर रहे हैं। तो प्रमुख रूप से जो इन दोनों खोजे गए हैं उनमें हैं ट्राइकेंटनॉल, सैलिसिलिक अम्ल, जैस्मोनिक अम्ल, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ये सभी बहुत नए ग्रुप के पादप नियामक हैं जो कि आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले।
2: ये जो थे पादप नियामक बता रहे हैं जो आपको प्रयोग आप काय तरीका से अपनी फसल में कर सका जा।
3: बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली पादप नियामक किसी भी तरह से उपयोग में किए जा सकते हैं, जैसे पाउडर के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में या ले के रूप में, लेकिन ज़्यादातर जो पादप हार्मोन है छिड़काव विधि से द्रव के रूप में उपयोग किए जाते हैं। और इनका जो घोल होता है ना वो PPM में बनता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन, अर्थात 10 लाख में एक भाग। यानी अगर आपको 1 PPM का घोल अगर रिकमेंड किया गया है तो आपको 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम पादप नियामक डालना होगा, और इससे आप 1 PPM का घोल तैयार करके पौधों पर छिड़क सकते हैं।
2: बिल्कुल, फसलों में आपा पादप नियामक को आपा काम में लिया था। एक अलावा जो बात करा आपा फला की, तो फला में मुख्यतः कौन कौन सा पादप नियामक आपा काम में ले सका जा?
3: हम बहुत सारे फल हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पादप नियामकों का उपयोग होता है। हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से फल होते हैं, जैसे नींबू, लीची भी, अंगूर भी, आम, इन सब में इंडोल एसिटिक एसिड या नेफ्थलीन एसिडिक एसिड का उपयोग करते हैं, जो कि ऑक्सीजन ग्रुप का है, और इनमें ये कलमों से जड़ें निकालने के लिए काम में लिए जाते हैं। इसी तरह नींबू, आम, अंगूर, संतरा आदि में 2,4-D का 10 PPM की मात्रा में उपयोग करते हैं, और संतरा में नेफ्थलीन एसिडिक एसिड का 200 PPM का अगर उपयोग करें तो हम फलों को गिरने से रोक सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, आप बात करा सब्जियां की, तो सब्जियां में प्रमुख रूप से काम आवाड़ा वृद्धि नियामक और बाकी मात्रा आपने कत्ती डालनी चाहिए जी, या मका किसान भाई ने बताओ?
3: हमारे यहाँ बहुत सारी सब्जियां होती हैं, तो मैं कुछ उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जैसे हम मिर्च की बात करते हैं, मिर्ची में नेफ्थलीन एसिडिक एसिड 10 से 25 PPM अगर हम डालें तो इससे फसल को बढ़ाने और फलों को झड़ने से रोकने में मदद मिलती है
2: जी।
3: भिंडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भिंडी में अगर आप इंडोल एसिडिक एसिड डालें 20 PPM का, तो इससे बीजों का अंकुरण बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी पौधे अच्छी साइज ले लेते हैं और आप अर्ली मार्केटिंग पकड़ सकते हैं। इसी तरह से तोरई में नेफ्थलीन एसिडिक एसिड 25 से 100 PPM, खरबूजा या खीरा में इथरल 150 से 200 PPM, करेले में मैलिक हाइड्रोजाइट 150 से 200 PPM, और कद्दू में इथाफोन 600 PPM अगर हम उपयोग करें तो उसमें फलों की साइज बढ़ाई जा सकती है और फलों को अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है ताकि उनकी बाजार में कीमत अच्छी मिल सके। हमारे प्याज भी खूब होता है, प्याज में भंडारण में बड़ी समस्या आती है, किसानों को पता होगा कईयों को, मैलिक हाइड्रोजाइट 2000 PPM का अगर हम स्टोरेज के टाइम छिड़काव करें तो उनमें जो जड़ें निकलती हैं ना, उनको निकलने से रोका जा सकता है, क्योंकि जब प्याज में जड़ निकल जाती है तो उसकी बाजार में वैल्यू कम हो जाती है, कम पैसा मिलता है, तो आप उन चीज़ों से बचाया जा सकता है।
2: बिल्कुल साहब, किसान भाइयों आपने भी जानकारी दे रहा है डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता जो से प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर अपना प्रोग्राम में आया और इतनी बढ़िया जानकारी दिया, इसलिए आपको घनो घनो धन्यवाद साहब।
0: बिल्कुल अश्विनी भाई, आपने भी घने मानो धन्यवाद, क्यों भाई नरपत भाई?
1: बिल्कुल,
0: और धन्यवाद कहीं को रोई देती हो ला?
1: नहीं नहीं, एक चोकोसो आने लोक गीत भी सुनाऊं
0: तो निकालो फिर, ताकि पोटली सु कोई चोकोसो गीत।
1: बिल्कुल, साउंड कोई लियो
0: जी।

0: सावन तो आयो पण आपने तो चाल बाकू टेम हो गयो सा।
1: बिल्कुल
0: तो अब ज्यादा बाता चीता कोनी कराला आपा, क्योंकि कहवे है ना कि बगत का बाया मोती निपजे है। और आपा चाला ला जदी तो कार्यक्रम आगे बढ़े लो, क्योंकि आपना तो श्रोता अपना रेडियो स्टेशन सु रात भर ताने जुड़िया रहे वे है। तो फिर बांध लिया पोटली समेट लिया
1: बिल्कुल समेट
0: कार्यक्रम,
1: रहा।
0: तो फिर चाला और करा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को देश उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाईं, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजेपी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है।
उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है, विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम?
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। अब हम सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत फिल्म सरफरोशी से जगजीत सिंह की आवाज़ में गाने के बोल लिखे हैं निदा फजली ने और गाने को संगीत दिया है जैतिन और ललित ने। आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म सरफरोशी का गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म चक दे इंडिया से सुखविंदर सिंह की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत। गीत के बोल लिखे हैं जयदीप सहानी ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने। आइए सुनते हैं।

0: ही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: पापा लाइए 3000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म साइबो शोर इन द सिटी से। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से स्पोर्ट्स स्कैन। प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात के अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए। इसके बाद कार्यक्रम में बात होगी भारतीय दल के प्रदर्शन की, जिसने सीमित अवसरों पर बड़ी सफलताओं में बदलकर 39 पदक देश के खाते में जोड़े और ध्वस्त किया है कई स्थापित कीर्तिमानों को। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, जिसका कल भव्य समापन हुआ नई दिल्ली में। और अंत में नजर डालेंगे दक्षिण कोरिया में भारतीय चुनौती रखने जा रही देश की बैडमिंटन टीम पर। सबसे पहले कार्यक्रम में आज बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, जिनका कल भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक मेजबानी सौंप दी गई है। इस भव्य समापन समारोह के दौरान भारत के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जहां भारतीय गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से ग्लासगो में शानदार समा बांधा। सुनते हैं अतर सईद की ये रिपोर्ट।

दर्शकों से खचाखच भरे ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में कल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। वंदे मातरम, शिव स्तोत्र और मशहूर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों पर हजारों भारतीय दर्शक अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ लिया इस दौरान राष्ट्रमंडल मशाल स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने के समय स्टेडियम का दृश्य देखने लायक रहा। इस शानदार समारोह ने खेलों के 11 या

0: यादगार दिनों का समापन किया और राष्ट्रमंडल अभियान के एक नए अध्याय का आगाज किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा प्रतीकात्मक रूप से सौंपे जाने के साथ ही 2030 में अहमदाबाद में खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की दिशा में भारत की यात्रा की भी शुरुआत हो गई। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी CWG ध्वज थमाया गया।
1: अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष सांगवान।
0: समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति की भी बड़ी झलक देखने को मिली। मशहूर रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, डांस ग्रुप डाइवर्सिटी और कई मशहूर स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए OVO हाइड्रो में धूम मचाई। इसके बाद भारतीय संगीतकार ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर पूरे अरीना में समा बांध दिया। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया ने तिरंगा थामा और सभी 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने दोस्ती, एकता और खेल कौशल के जश्न में एक साथ मार्च किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया, जो मेजबानी की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक था। 2030 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी खेल और आतिथ्य की संस्कृति की शानदार झलक पेश करेगा।

0: तो आपने अतर सईद की ये रिपोर्ट सुनी, और अब अहमदाबाद भी कह रहा होगा कि अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 नू माटे तैयार छे। तो इसी के साथ भारत ने मेज़बानी की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की निगाहें इस अहमदाबाद की तरफ मुड़ गई हैं, जो 2030 में विश्व के इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की मेज़बानी करेगा। ग्लासगो में खेलों के भव्य समापन समारोह में औपचारिक राष्ट्रमंडल मशाल हाथ में थामने के साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर श्री संघवी ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है।
1: In 2030, the Commonwealth will celebrate its centenary. 100 years of bringing the world together through sport, and India been entrusted to host the historic edition. That is a sacred responsibility we embrace with deep gratitude. Ahmedabad is ready. Our city is compact, well-connected and vibrant with possibility.
0: तो कहा जा सकता है कि तमारू स्वागत छे, अहमदाबाद बिल्कुल तैयार है स्वागत करने के लिए। और इस दौरान श्री सांघवी ने कहा कि भारत बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए उत्साहित है, और वैश्विक खेल राजधानी के रूप में भारत अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अहमदाबाद 2030 इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ लार्जर एस्पिरेशन। इंडिया इज कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ अ ग्लोबल स्टेज। वी एस्पायर टू होस्ट द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन अहमदाबाद इन 2036। द कॉमनवेल्थ गेम इज अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एट स्केल इंडिया इज रेडीनेस टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स, फॉर स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
0: तो भारत ने तो अपनी पहचान विश्व में बनाई ही पहचान बनाई है। उन भारतीय खिलाड़ियों ने जो जब जब ग्लासगो के मैदान पर उतरे तो उनकी नज़र थी किसी पदक पे, किसी रिकॉर्ड पे, और वो सब कुछ ध्वस्त होते नज़र आए एक के बाद एक। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।

23 जुलाई से 2 अगस्त तक चले इस आयोजन में कुल 39 मेडल के साथ चौथा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने हर खेल में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए और देश का गौरव बढ़ाते हुए पोडियम पर तिरंगा लहराया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में देश के नाम 16 पदक रहे, इनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक है। लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़

0: में रजत और 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। जबकि स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक भारत की झोली में डाला। मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक भी शामिल है। भारत ने जूडो में भी अपना भरपूर दमखम दिखाया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने इस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जूडो में भारत ने कुल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य से समेत कुल 4 पदक जीते। भारोत्तोलन में भारत की झोली में कुल 8 पदक आए। मीराबाई चानू इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकलौती भारतीय रही। पुरुषों ने 4 रजत पदक अपने नाम किए, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत के लिए पदक जीतकर पदक तालिका में देश का पर्दापण कराया। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी भारतीय खिलाड़ी उतरे, उनकी नजर थी पदक पर। और इस खेल आयोजन से पहले लगातार ये चर्चाएं थी कि कई खेलों को सूची से हटाया गया है, भारत कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और देश दुनिया से, राजनीति से, सिनेमा से, हर जगह से आज इन खिलाड़ियों को, अपने इन स्टार्स को शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्लासगो के इस यादगार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सभी पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश को एक और गौरवान्वित करने के मौके दिए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का बेमिसाल प्रदर्शन अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया है और उनकी ये कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खेल मंत्री ने कहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4th स्थान भारत ने हासिल किया है। श्री मांडविया ने कहा कि हमें हर उस एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। संसद के दोनों सदनों ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, सुनते हैं।
2: On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance.
1: वहीं दूसरे सदन लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गई। 25 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
4: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
1: तो एक शानदार आयोजन और जिसकी भारत ने मेजबानी की है। और अब बात की जाए बैडमिंटन की, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत इस

0: BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे।
1: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वही पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनीत दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जापान में शुरू होने जा रहे अगले महीने एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा मंच जहां वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। और अब बात की जाए कुश्ती की, जहां अजरबैजान के बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की फ्री स्टाइल टीम ने 13 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। सितेंद्र मलिक ने कल चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में रूस के सर्गेई कार्मिलियन को 3-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और 2025 के अपने अंडर 17 विश्व खिताब को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी की आगामी सीजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। तो श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
3: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।

0: इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
2: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
3: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
5: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
6: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
8: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
8: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
9: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमरीका के इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar. BJP retains Manjalpur in Gujarat. Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इंट्रोड्यूस द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026. द राज्यसभा टुडे पास द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल एमिड रकर्स. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. Our correspondent has more details.
11: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during a student's protest over the NEET issue. Lok Sabha was adjourned thrice, while the Raj Sabha was

0: 40% वोट हासिल करके दूसरे मकाम पर रहे, जबकि आरजेडी की रेखा कुमारी को 10.45% ही वोट मिले। इस सीट से बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद जिमनी इंतखाब हुआ है। बीजेपी को 35 साल में बांकीपुर असेंबली हलके में पहली मरतबा हार का सामना करना पड़ा। जिमनी इंतखाब में मजमुई तौर पर 34.31% वोट डाले गए थे, जो साल 2010 में इस हलके के बनने के बाद से सबसे कम औसत रहा। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दातिया सीट बरकरार रखी है, जहां जिमनी इंतखाब में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपने करीब तरीन हरीफ बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों के औसत से हरा दिया। इन तीन हलकों में जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। कर्नाटक में गवर्नर थावर चंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के राजभवन में 19 कानून साजों को ओहदे का हलफ दिलाया। वजीर आला डी के शिवकुमार, जिन्होंने 3 जून को अपने 13 वजीरों के साथ वजीर आला का ओहदा संभाला था, को काबीना की तौसी के लिए 2 महीनों का इंतजार करना पड़ा। इस तौसी के बाद कर्नाटक काबीना अराकीन की तादाद बढ़कर 33 हो गई। कुछ कानून साजों की जानिब से काबीना में शामिल न किए जाने पर मायूसी जाहिर करने पर वजीर आला डी के शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को जगह देना मुमकिन नहीं है। वजीर आला ने इन कानून साजों को मुस्तकबिल में मौका देने की यकीन दहानी कराई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफाई इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए वजारत दिफा की फौजी और सिविलियन शाखों के दरमियान वसी तर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में 85वें मुसल्ला अफवाज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज के दिन की तकरीबात से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर दिया कि इससे उभरते हुए सिक्योरिटी और तकनीकी चैलेंजों पर मौसर तौर से तवज्जो मरकूज की जा सकेगी। वजीर दिफा ने कहा कि फौजी और सिविल सर्विसेज दोनों मुल्क सबसे पहले के एक अहद पर यकीन रखते हैं, तो जब मकसद कोई वाहिद हो तो निजाम का हर एक जुज्व कौमी इस्तेहकाम में तब्दील हो जाता है।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: भारतीय रेलवे ने इस साल जुलाई के महीने में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में माल बर्दारी में 9% की नमो रिकॉर्ड की है। जुलाई 2026 के दौरान रेलवे ने 141.3 मिलियन टन की माल बर्दारी की, जो कि पिछले साल जुलाई में 129.7 मिलियन टन थी। ये कारकर्दगी मईशत के कलीदी शोबों में पायदार मुतालबे, नीज माल बर्दारी की लॉजिस्टिक और ऑपरेशन जाती कारकर्दगी को बेहतर बनाने की जारी कोशिशों की अक्कासी करती है। ईरान ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की तर्दीद करते हुए कहा है कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सालिसकारों के जरिए आज ईरान के साथ मुजाकरात का प्रोग्राम है। अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन पर सवार सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती मसरूफियात की वजह से उन्होंने अपने असल मंसूबे को रोक दिया। इससे पहले जनाब ट्रंप ने इंतहाई शदीद हमले का इंतबाह दिया था। इस दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत जारी नहीं है और किसी तरह की मुलाकातों का कोई मंसूबा नहीं है। मकाई ने मजीद कहा कि वजीर खारजा अब्बास अराकची को छोड़कर, जो मजहबी दौरे पर इराक गए हैं, के अलावा सभी ईरानी मुजाकरातकार फिलहाल मुल्क में ही मौजूद हैं। जनाब मकाई ने मजीद कहा कि फिलहाल सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुरमुस के इंतजाम से मुतालिक मुजाकरात जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आसाम, मेघालय, जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल के कायम रहने की पेशगोई की गई है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 2 से 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, साहिली कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में जुमेरात तक शदीद बारिश होने का इम्कान

0: है। आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, लक्षद्वीप, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और शिमाल मशरकी खित्ते में कल गरज चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सूरत हाल रात में अबतर हो गई, क्योंकि एहतजाजियों ने तितर पितर होने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाज करने वालों पर गोली चला दी। POJK से आने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आधी रात में एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें रावलकोट में गोली चलने की खबर दी गई है। नौउम्र भारतीय साइकिलिस्ट हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड के टूर डी फ्रांस फेम्स का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय खातून बनकर तारीख रकम की। 19 साला हर्षिता ने कल दूसरे मरहले के रस्मी आगाज के दौरान सबर आजमा रेस में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, चिली, एथियोपिया के 2 साइकिलिस्ट, नामीबिया और युगांडा के खिलाड़ियों समेत 8 होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 33 से बढ़ाकर 37 करने के बिल को मंजूरी दे दी है। बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनतों की तरक्की के तरमीमी बिल को राज्यसभा ने पास कर दिया है। असेंबली जिमनी इंतखाबात में जन सुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात के वडोदरा की मंजलपुर सीट पर अपनी जीत बरकरार रखी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दातिया सीट पर फिर जीत हासिल की। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, ओटीपी का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहाँ मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगाकर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं,
0: जी
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है।
0: जी
1: जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है
0: जी
1: वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: तो आप तक पहुंच नहीं पाएगी,
0: पहुंच नहीं पाएगी।
1: और साइबर क्रिमिनल मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा और तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
0: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
1: तीन रेड फ्लैग।
0: जी
1: पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है
0: जी
1: तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है।
0: जी
1: और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए,
0: जी
1: क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन यह है कि आज हमारा जो ना COVID-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें COVID-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है।
0: जी
1: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय नमस्कार।
1: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
1: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
0: जी।
1: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
0: जी।
1: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
0: उसके बारे में
1: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
0: जी।
1: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
0: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
1: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
0: जी,
1: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज्ड बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
0: जी,
1: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए करीबन 12,300, तो
0: पहले ही काट लिया।
1: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
0: इंटरेस्ट।
1: तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है, अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं। प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरिद्वार से रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
4: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
0: जी सवाल पूछिए।
4: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
1: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
0: जी
1: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूट में उसको सर्कुलेट करके बना दिया था, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा।
1: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी। तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूल मंत्र रहेगा।
0: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
6: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी।
6: और सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती है, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से, या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं। क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग, ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये?
1: देखिए, बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए, इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है। तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए, ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी, थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नज़र नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज़्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
0: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा
1: जी।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
7: नमस्कार
0: जी।
1: जी नमस्कार,
7: मैं विजय कुमार स्वामी, गाँव बस्तवाड़, तहसील जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी
7: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%
0: जी।
7: मेरा बटन का फोन है।
0: वेरी गुड।
7: अरे बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
1: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
1: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं। और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं, और फिर यही कारणवश है। देखिए, मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फ़ोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फ़ोन पर ये एडवर्टीजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फ़ोन होता है। फीचर फ़ोन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फ़ोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
0: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? और 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
1: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
0: जी,
1: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला है, बैंक जाते
0: हैं। में जाना चाहिए
1: भाई, बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका?
8: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
0: जी नमस्कार।
8: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
1: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिलाएं हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
0: जी,
1: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो हैं, ये इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व तो उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
0: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
9: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
0: जी जी सवाल पूछिए।
9: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
1: जी,
9: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
1: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपका मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे OTPs आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
0: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
10: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
0: जी।
10: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
1: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत। अब आप सुनेंगे खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे दो भेंट वार्ताएं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का अंशदान है।
1: श्रोताओं, इस समय हमारे साथ हैं बास्केटबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अभिषेक चौधरी। अभिषेक जी, हम आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
2: थैंक यू सर।
1: अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब शुरुआत की आपने खेलने की, तो बास्केटबॉल ही क्यों चुना? क्या खास लगा आपको, या अन्य खेलों को भी आपने ट्राई किया था, आप इसमें कंफर्टेबल थे, तो कैसे शुरुआत हुई?
2: सर, जब मैं छोटा था तब मेरे भैया बास्केटबॉल खेलते थे, तो मैं उनको देखता था। जिस अकेडमी में खेलने जाते थे मैं उनके साथ जाता था, देखता था बस। फिर मैं क्रिकेट में गया, बैडमिंटन में गया, मैंने थोड़ी दिन बास्केटबॉल भी खेला। फिर मेरे को बास्केटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया, मज़ा आता था मतलब। तो मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन करने का सोचा कि यही खेलते हैं एक ही गेम। पढ़ाई भी थी उस टाइम, फिर मेरे को किसी ने बताया कि इसमें फ्यूचर भी होता है, अपन बास्केटबॉल में आगे भी बढ़ सकते हैं।
1: अच्छा, शुरुआत में जब हम ऐसे ही खेलते हैं मतलब एक शौक के तौर पर, और फिर जब अच्छा लगने लगता है, फिर कहीं कोई जैसे बड़े बुजुर्ग या हमारे स्कूल के टीचर देखते हैं कि ये बच्चा अच्छा खेल रहा है, तब सलाह देते हैं कि आप इसको ट्राई करो और अच्छा प्रशिक्षण लेके आगे जाओ। तो पहली बार आपको किसने देखा अच्छा खेलते हो, किसने सलाह दी कि इसको करियर के रूप में ले सकते हो?
2: ये सर, मेरे भैया खेलते थे, फिर उनने मैं उनके साथ खेलने लग गया थोड़ी दिन बाद। फिर उनको लगा कि मैं इसमें खेल सकता हूँ, मेरे को ही मज़ा आने लग गया था। फिर मेरे को उनने बताया कि उनको थोड़ी नॉलेज थी इस बारे में, तो उनने मेरे को बताया कि इसमें ये होता है वो।
1: मतलब आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही पहले से, इस खेल के बारे में आपको जानकारी थी, और इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, जो बच्चे जिनको कुछ भी पता नहीं होता, परिवार में कोई खिलाड़ी भी नहीं रहा होता और कोई सलाह देने वाला नहीं होता, तो वो बच्चे यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, अकादमी में कैसे अपना एडमिशन ले सकते हैं?
2: सर, आजकल सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, तो जब भी ट्रायल्स होती है अकेडमी की, ये बहुत बेस्ट एकेडमी है राजस्थान की बास्केटबॉल की, बहुत मेडल्स लगते हैं यहाँ पे। तो फ़ोन पे जैसे ही अपना सेशन ख़त्म होता है स्कूल का, तो फ़ोन पे सब कुछ अपलोड हो जाता है कि कौन सा बच्चा किस गेम में जाना चाहता है, वो उसकी ट्रायल दे सकता है। हर गेम की एकेडमी है, क्राइटेरिया पता चल जाता है क्या क्या चाहिए अपन को ट्रायल देने के लिए। अगर वो है तो अपन ट्रायल दे सकते हैं। जयपुर में SMS स्टेडियम में ट्रायल होती है।
1: जो ट्रायल होती है वो पात्रता क्या है, जो पढ़ने वाले बच्चे देते हैं, या जो मान लो कभी स्कूल गया ही नहीं, गांव में रह रहा है या कोई काम कर रहा है, क्या वो भी ट्रायल दे सकता है?
2: नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाला भी दे सकता है, जो गांव में रहता है वो भी दे सकता है, बस उसको खेलना आना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी तो सीख जाएगा वो।
1: और उम्र का क्या रहता है, कितना होनी चाहिए मिनिमम और अधिकतम क्या है
2: उनका? सर, बास्केटबॉल एकेडमी में तो अंडर 14 से सर लेते हैं, अंडर 14 के बच्चे लेते हैं, और हाईएस्ट अंडर 19 जूनियर तक के बच्चे लेते हैं।
1: अच्छा, यानी जो पहली बार अगर बच्चा कोई आ रहा है एकेडमी में, तो 14 साल से कम
2: सर,
1: होना चाहिए
2: 14 साल,
1: और मान लो जूनियर स्तर पर है तो 19
2: से कम होना चाहिए।
1: अच्छा, जैसे कि आपने वहाँ पर ट्रायल पास करने के बाद में पास कर लिया, और आप किसी दूसरे क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे थे, और उसके बाद में जो मान लो आपको जैसलमेर मिल गया, तो फिर यहीं पे एडमिशन लेना पड़ता है क्या पढ़ाई?
2: यस सर, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन होती है, स्पोर्ट्स, खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो सर यहाँ पे जैसलमेर में एडमिशन दिलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना इसलिए ज़रूरी क्योंकि स्कूली, स्टेट, नेशनल जो भी होता है वो जैसलमेर अकेडमी से खेलना होगा, जैसलमेर से।
1: अच्छा, सेशन क्या रहता है स्पोर्ट्स का, और पढ़ाई का तो फिक्स रहता ही है, लेकिन स्पोर्ट्स का जो सेशन क्या रहता है?
2: स्पोर्ट्स का सेशन सर, अभी जैसलमेर अकेडमी में तो सुबह ट्रेनिंग होती है सर हमारी, 2 and 2.5 hours।
1: सुबह कितने बजे शुरुआत होती है?
2: सुबह सर हम उठते हैं 4:30 बजे, 5 बजे ग्राउंड टाइम होता है हमारा, क्योंकि अभी स्कूल्स ओपन है, और जैसे जैसे हम थोड़े दिन हो जाते हैं, अभी एकेडमी खुली ही है, तो जैसे टाइम हो जाता है तो 4:30 भी ग्राउंड टाइम हो जाता है। अगर टूर्नामेंट्स क्लोज आते हैं तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो 4:30 बजे आते हैं फिर ग्राउंड।
1: और शाम को?
2: शाम को सर जैसे जिसको पर्सनल प्रैक्टिस करनी है, इंडोर हमेशा अवेलेबल है 24/7, कभी भी जाके कोई प्रैक्टिस कर सकता है। जिसको दिन में प्रैक्टिस करनी है वो सेल्फ प्रैक्टिस कर सकता है। शाम को जो सर की तरफ से कोचिंग होती है वो 5 बजे से होती है, और टूर्नामेंट क्लोज होते हैं तो 4 बजे से होती है। और दिन में भी अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है तो सर बता देते हैं।
1: अच्छा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तब क्या ये सुबह की और शाम की प्रैक्टिस बंद हो जाती है?
2: बंद तो नहीं होती सर, बिल्कुल बंद नहीं होती, क्योंकि रेगुलर रहना तो ज़रूरी है गेम में भी। मतलब ग्राउंड टाइम जैसे पहले हम 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको सर 2 घंटा कर देते हैं, बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस वजह से प्रैक्टिस कम करनी पड़ती है एग्ज़ाम के टाइम।
1: अच्छा, स्पोर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक रूप से और यूँ कहें कि मानसिक रूप से भी एक स्ट्रांग हो जाते
2: स्ट्रांग
1: हैं,
2: होते हैं।
1: और जो यूँ कहें कि उनको समय भले ही कम मिलता हो पढ़ाई का, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना
2: यस
1: होता है,
2: सर।
1: लेकिन फिर भी अच्छा आजकल परफॉर्म कर रहे हैं। आपने भी 10th में 60% जो अंक हासिल किए, ये
2: यस
1: बहुत
2: सर।
1: बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो देखिए, अगर आप बच्चा हमारे स्पोर्ट्स के साथ साथ फर्स्ट डिवीज़न ला रहा है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो जो
2: यस सर।
1: बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स में हमको जाएंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारी अंक प्रभावित होंगे, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे?
2: सर सबसे पहली चीज़ है सर, मेरे हिसाब से एजुकेशन ज़रूरी है थोड़ी बहुत। अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो एजुकेशन भी ज़रूरी है, सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, एजुकेशन भी ज़रूरी है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन सिर्फ स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स में हैं तो एजुकेशन के लिए अपने पास टाइम नहीं। टाइम है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए थोड़ा बहुत फोकस। अब बस लोग बोलते हैं कि ऐसा कठिन है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे, पर टाइम अवेलेबल रहता है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, और मेरे हिसाब से मेरे परसेंटेज कम है।
1: नहीं देखिए, स्पोर्ट्स आप इतना राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हो और 60% ला रहे हो तो एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं उनका अतिरिक्त नौकरी में किसी में जाओगे तो उनको कोटा होता है,
2: यस सर, स्पोर्ट्स कोटा होता
1: हाँ,
2: है।
1: तो उसमें आपको ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाती है।
2: यस सर।
1: तो आप राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बार खेलने गए हैं?
2: सर मैं राष्ट्रीय स्तर पे 5 बार खेला हूँ, उसमें से मेरे पास 2 में मेडल है, एक में सिल्वर मेडल, एक में ब्रॉन्ज मेडल, 3 नेशनल पार्टिसिपेट।
1: अच्छा, जब पहली बार गए थे मतलब आपकी टीम में, तो जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं पहली बार खेल रहे होते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी किस प्रकार उनको मोटिवेशन करते हैं कि देखो आपको जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतियोगिता होती हैं उनमें खिलाड़ी पूरे इंडिया से मतलब अच्छे लेवल के
2: यस
1: आते
2: सर।
1: हैं, तो क्या कुछ वहाँ पर स्ट्रेटजी होती है आपकी, क्या सलाह दी जाती है आपको, किस प्रकार से जो मतलब अच्छा खेल के लिए प्रेरित करते हैं
2: यस
1: वो?
2: सर। सर मैं फर्स्ट नेशनल खेला था हिमाचल प्रदेश में, उसमें मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल था, वो मेरा फर्स्ट नेशनल था। जो भी हमारी स्ट्रेटेजी होती है, कोच की अलग होती है, बच्चों की मेंटलिटी अलग होती है, तो मेरा मानना यह है कि सबको यूँ मानना चाहिए कि अभी अपन अपने स्टेट से खेल रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं, हम कोई डिस्ट्रिक्ट से या कोई खुद की पर्सनल टीम से नहीं खेल रहे, हमें राजस्थान को रिप्रेजेंट करना है, तो सबको यूनिटी बना के रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से खेलना है, खुद का सेल्फ नहीं खेलना चाहिए। और जैसे ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर्स आते हैं तो कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो कोच कोच भी देखता है, हम भी देखते हैं बैठ के कि वो क्या कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोई अच्छे प्लेयर होता है तो उनसे पूछते हैं कि भाई कोई ये चीज़ में कमी है तो इसको कैसे फुलफिल करें, कोच से सीखा जाता है बहुत सारे। कोई इंडिया लेवल का कोच होता है तो उससे सीखते हैं कि सर अगर कोई कमी हो तो कैसे पूरी करें।
1: देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता आप पार्टिसिपेट कर लेते हैं उसके बाद संभावना बढ़ जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने की।
2: यस सर।
1: तो आपके साथियों में से जैसे हमारे जैसलमेर अकादमी से अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं?
2: सर मेरे आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 या 5 प्लेयर खेले, उससे पहले भी खेल रखे हैं। मेरे आने के बाद अभी करंट में मोहम्मद रजा खान एंड संस्कार सैनी खेल के हैं, स्कूली इंडिया एंड मोहम्मद रजा फीबा साबा अंडर 17 में खेल के हैं।
1: अच्छा, जैसे कि इनका किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम में सिलेक्शन होता है, जैसे आपका भी यहाँ पर जैसलमेर में प्रैक्टिस कर रहे हो अकादमी, तो उनको क्या राष्ट्रीय स्तर की अकादमी में प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है?
2: नहीं सर, वो यहीं प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे, मैं उनके साथ नेशनल भी खेला हूँ। नेशनल में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इंटरनेशनल हो। अब जैसे वो इंटरनेशनल खेल के आए तो उनने बाहर का एक्सपीरियंस लिया, आउट ऑफ इंडिया कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग खेल रहे, तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो वापस यहाँ पे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन इंटरनेशनल खेले तो नेशनल लेवल की अकेडमी हो, अपन जैसे जैसलमेर में अकेडमी हो तो यहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर बहुत सारे खेल रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अच्छे कोच हैं हमारे पास।
1: अच्छा, शारीरिक रूप से स्पोर्ट्स में जो बच्चे आते हैं उनकी फिटनेस के लिए वो क्या अतिरिक्त एनर्जी के लिए क्या कुछ खाते हैं, या जैसे आम बच्चा जो पढ़ाई करता है उसकी डाइट अलग होती है, आपकी
2: यस
1: कितना
2: सर।
1: फर्क होता है?
2: सर जो सिर्फ स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है, और जो स्पोर्ट्स में उनके बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डाइट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले कैलोरीज ज़्यादा बर्न करते हैं वो कम करते हैं, तो हमें उस हिसाब से डाइट लेनी पड़ती है। हमारे कोच अच्छे हैं तो वो हमें बता देते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए तुम्हें, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, नॉन, जो नॉन वेज खाते हो नॉन वेज, जो वेज खाते हो वेज, स्प्राउट्स एंड एग वेग।
1: फ्यूचर में स्पोर्ट्स में ही आप रहोगे, कैरियर इसमें बनाना है या कोई कुछ और सोचा आपने?
2: सर मैंने अभी आगे का कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मेरा गोल है मेरे को इंटरनेशनल खेलना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद मेरा सपना है कि मैं इंडियन नेवी या एयरफोर्स में।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। आप इंडिया को रिप्रेजेंट भी करोगे और एयरफोर्स या
2: थैंक यू
1: नेवी
2: सर।
1: ज्वाइन करके आप भारत की सेवा करते रहोगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिषेक चौधरी से श्यामवीर सिंह की बातचीत। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान है।
3: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजया राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
4: नमस्कार सर।
3: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
4: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफ़र जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट, गोल वाला स्लाइगर, बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
3: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
4: जी।
3: और लगभग हर युवा चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
4: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं सर।
3: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
4: जी जी जी
3: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
4: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े। पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कुछ कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ, जितने भी साथी रहे मेरे, वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे
3: जी
4: को
3: जी
4: अच्छा
3: जी
4: लगता था सर।
3: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहाँ और कैसे खेला और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
4: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो
3: जी
4: उसमें
3: जी
4: मैं, हमारी टीम ने पार्टिसिपेंस किया था हमने, तो
3: हुँ।
4: वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था। जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, कुछ हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो कि बॉल
3: जी जी
4: स्विंग हो रही है, इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो थोड़ी खुशी भी हुई। तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया
3: जी।
4: जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने नाइन्थ सीनियर खेला।
3: जी जी जी
4: फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा मैंने बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था सॉफ्टबॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया। उसमें हमारी टीम विनर रही, फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए।
3: जी जी
4: तो
3: जी
4: पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी।
3: जी
4: तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम।
3: जी
4: उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित तो हुआ था, तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी सर। फिर सर जैसे बढ़ता था तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
3: जी जी जी देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले। आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
4: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
3: जी जी जी।
4: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है। पहले एक्चुअली में क्या है, सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में। तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला। तो बेसबॉल में नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया, उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
3: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
4: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है। एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर नाइन खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होम रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर। तो मजे आए कॉमन गेम, तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
3: जी, जी।
4: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
3: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
4: सर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है। इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में, तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
3: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
4: सर अभी जो अपने गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया।
3: जी जी जी।
4: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है,
3: जी जी,
4: तो उनके लिए पास चैंपियन एथलेटिक के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए उसके तहत आप लोग को गेम मिला था शॉर्ट बॉल।
3: जी।
4: तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को उन भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर को वहाँ पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
3: जी जी जी।
4: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं, अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सर मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
3: और इस समय जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां, यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
4: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
3: जी जी
4: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे भी, हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया है, झालावाड में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे गर्मियां, बड़ी छुट्टियां लगी, तो बच्चे आ रहे हैं।
3: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्टबॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
4: भारतीय सॉफ्टबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है।
3: जी जी।
4: और इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हर अभी तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल नहीं गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
3: झालावाड़ के लिए वास्तव में ये गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्टबॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
4: जी।
3: प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
4: सर किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब ऑफ द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग, फिर एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसका डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है, तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के, वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है, उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें।
3: जी जी जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग, हिटिंग, फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
4: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स,
3: जी जी।
4: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनालाइज करने गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको हम बच्चों पे अभी धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा। तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
3: जी जी जी। सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी नई नई आई है, तो कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
4: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं, तो क्या अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े खड़े पिचिंग करना होता था। तो भी इंडिया में से नई आई जंप करके, ऐसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्ले प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते, पीछे रखे तो जंप करते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। उनको बताते हैं जैसे हमें सिखाया गया कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पेन थे उसके पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती, ग्रिप्स वगैरह जिसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रीस पकड़ के।
3: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
4: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं, ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीज़ें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहता हूँ कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ हमने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप को सबको पता है कैसा क्या होता है।
3: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं?
4: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से शूटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं इसमें इनको मेडिटेशन करवाता हूँ। दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन शूटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवनेशन आता है। और गेम ऐसा गेम है ये तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट

0: फुटबॉल में कई बार नेशनल खेला है
1: जी,
0: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपके रहे?
1: सर मेरे करियर के में सर सबसे सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा भी जीतने के बाद, बट एक हमारा मैच था 2017 में हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था उस मैच में, लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4-5 से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो उसमें उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम, इतना खेलने इतना टाइम था, लंबा मैच चला फिर हम हारे, तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियाँ रह गई तो उस पर मेहनत करी, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन रहा। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था कि इतनी भीड़ इतनी गेदिंग झालावाड़ और भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मुझे आए।
0: जी जी जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है, तो क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमज़ोर सा रहता है?
1: मेरे मेजर जनरल जानकारी से हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छी इक्विपमेंट्स, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं हो पाया, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
0: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं, और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहाँ पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
1: सर इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य है, किस किस हर चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है किसको कहाँ थ्रो करना है, अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है किस बेस पे थ्रो करना है, थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग हटके हैं थोड़ा रूल्स, तो वो भी है और ठीक है अपना गेम है तो, और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन जो नौ प्लेयर खेलते हैं हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है कब किसके पास बॉल आ रही है अच्छे से बॉल पहुँच पा रही है।
0: विशाल आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहां तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
1: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूं तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा, आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूं कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे, साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा संघ सर जो खेल अधिकारी उनका मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे पे, साथ साथ विनोद सर हैं हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग मेरे से ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ तो ये लोग चाहते हैं, तो साथ साथ ये भी आज जिस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूं, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
0: विशाल आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से की गई बातचीत, ये आकाशवाणी झालावाड़ का अंशदान था, अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेल जगत। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, अब आपका मनोरंजन करते हैं फिल्म संगीत के साथ। श्रोताओं, बारिश की बूंदें जब खामोशी से जमी को छूती है तो दिल भी किसी पुरानी याद की धुन गुनगुनाने लगता है। इसी भीगी भीगी फिजा के नाम सुनिए एक प्यारा सा गीत, रिमझिम गिरे सावन, फिल्म मंजिल से।

भीगी रात, ठंडी हवा और चांद की हल्की सी रोशनी, ऐसे मौसम में संगीत की सबसे खूबसूरत जुबान बन जाता है। पेश है ये रात भीगी भीगी गीत, फिल्म चोरी चोरी से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ और हसरत जयपुरी के बोल। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बारिश की बूंदें जब मोहब्बत का पैगाम बन जाए तो हर छतरी के नीचे एक कहानी जन्म लेती है। इसी के साथ सुनते हैं अगला गीत, प्यार हुआ इकरार हुआ, फिल्म श्री 420 से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में। बोल हैं शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकृष्ण का। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बरसती रातें अक्सर अधूरी बातों को पूरा कर देती हैं और कुछ गीत उम्र भर दिल में महकते रहते हैं। इसी के साथ पेश है फिल्म वो कौन थी से गीत लग जा गले, लता मंगेशकर की आवाज़ और संगीत है मदन मोहन का। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बारिश का मौसम हो और किसी अपने की याद हो तो हर धड़कन एक मीठी सी धुन बन जाती है। इसी के साथ पेश है फिल्म जब वी मेट से एक प्यारा सा गीत तुमसे ही, मोहित चौहान की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आइए सुनते हैं।

दोस्तों, फिल्म संगीत की महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। उम्मीद है कि बारिश भरी इस रात में इन सदाबहार गीतों ने आपके दिलों को छुआ होगा। इसी के साथ सुनिए इस सेगमेंट का आखिरी गीत।

हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर के आमेर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया।

0: गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।